सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

होगी शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न हुआ। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समय रहेगा 6:05 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण। प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली। दिल के तराने गाने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 9 बजे से। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 10 बजे। दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। वेस्टर्न संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 से। मेरा वाला सॉन्ग ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:05।

5 मिनट पर होगा कार्यक्रम सिटी लाइट्स। मैसेज मसाला मिक्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। रंगे महफिल कार्यक्रम होगा रात्रि 11:05 पर। कुछ कार्यक्रमों की जानकारी हम एक बार फिर दे दें आपको, तो अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण आप सुन सकेंगे 6:05 पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, माफ कीजिए, FM रेनबो चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आप समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत

व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुप्रभात, आकाशवाणी के एफएम रेनबो के सभी श्रोताओं को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात और अपनी पसंदीदा दोस्त गीतांजलि के साथ। नई सुबह, नई उम्मीदें और फ्रेश वाइब्स के साथ आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। उठ जाइए, मुस्कुराइए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए एक पॉजिटिव नोट के साथ कि आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हो। यही हमारी भी शुभकामना है आपके लिए। एक प्यारा सा गीत और आगे बढ़ते हैं।

एफएम रेनबो का कार्यक्रम सारेगामा का जो एक तारा है वो अपनी मध्यम मध्यम धुन में जो है बजना शुरू हो चुका है। और हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा होता है कहानियों का, तो दोस्तों क्यों ना मैं आपके साथ साझा कर लूँ एक ऐसी ही कहानी, एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। हर सुबह वो अपने पापा के साथ अखबार बांटने जाता था। लोग उससे कहते, इस काम से तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत छोटा काम है। लेकिन राहुल ने कभी किसी की नहीं सुनी और कभी भी हार नहीं मानी। वो पढ़ाई भी करता, पापा के साथ मेहनत भी करता। आज वही राहुल एक सफल आईएएस ऑफिसर है। दोस्तों कहते हैं, मेहनत छोटी हो या बड़ी, अगर लगातार की जाए तो जिंदगी बदल सकती है। तो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है और कभी किसी की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है, सबसे बड़ी बात।

FM Rainbow 102.6 पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम सुप्रभात, गीतांजलि है आपके साथ। और दोस्तों, एक और छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है यहाँ पर। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक स्कूल की टीचर हर बच्चे को रोज एक स्माइली स्टिकर देती थी। खुश हो जाते हैं ना बच्चे वो स्माइली लेकर, वो स्टिकर देती थी। एक बच्चा था जो कभी भी मुस्कुराता नहीं था। मैम स्टिकर देती थी तब भी नहीं मुस्कुराता था। एक दिन टीचर ने उससे पूछा कि तुम हंसते क्यों नहीं हो। बच्चा बोला, घर पर बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियां हैं। टीचर ने उसके हाथ पर उस दिन 2 स्टिकर लगाए और कहा, कल है ना दुगनी मुस्कान लेकर आना। और अगले दिन सच में वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, कभी कभी छोटी सी दया, छोटा सा प्यार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला सकता है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जिंदगी में हंसते रहें तो वो सारी मुश्किलें जो हैं दूर हो जाती हैं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सब

0: सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम सारेगामा और अब समय है सारेगामा कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। याद रखिए दोस्तों, हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर दिन एक नया मौका। मैं हूं आपकी दोस्त गीतांजलि, फिर मिलेंगे नई कहानियों नई गीतों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और FM रेनबो सुनते रहिए।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया था कि विभिन्न अधिकार के विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा है। अगर कोई सुंदर शरीर चाहता है तो उसके लिए एक विशेष देवता की पूजा है, वो कर सकता है। अगर वो अच्छी पत्नी चाहता है तो उसके लिए फिर वो किसी देवी देवता की पूजा कर सकता है। फिर ये भी कहा था सुखदेव जी ने कि बहुत जो सुबुद्धिमान है वो अपनी हर कामना के लिए या मोक्ष के लिए या फिर भक्ति के लिए यानी भगवान की तुष्टि के लिए वो पुरुषोत्तम भगवान की ही सेवा करता है, परम पुरुष की सेवा करता है, वो देवी देवताओं की तरफ नहीं मुड़ता है। तो ये कह करके सुखदेव जी ने अपनी वाणी को जब विराम दिया था तो सूत जी ने सुखदेव जी की इस वाणी को शौनक जी को बताया। शौनक जी और भी उत्कंठित हो उठे। उन्होंने कहा कि सूत जी देखिए, भगवान की वाणी, भगवान की कथाएं वो एकमात्र अमृत हैं हम जैसे जीवों के लिए। और परीक्षित महाराज और सुखदेव जी के बीच में और भी बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत बातचीत हुई होगी, बहुत कथाएं हुई होंगी और उनकी बातचीत में भगवत कथा रसामृत का प्रवाह हुआ होगा। वो रसामृत जो बहा है उस रसामृत का पान हमें भी कराइए, क्योंकि सूत जी बात तो ये है कि जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं वास्तव में वही जी रहे हैं, बाकियों की आयु तो व्यर्थ जा रही है। और फिर शौनक जी स्वयं आश्चर्यचकित होकर के ये कहने लगे कि ये जो बाकी लोग जीते हुए दिखते हैं तो ये तो ऐसी ही बात है कि जैसे कि वृक्ष भी जीते हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? अरे जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी भी नहीं पड़ी वो नर पशु कुकर, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। और जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी भी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वो मेंढक की जीव के समान टर टर करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है।

और जो सिर कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वो रेशमी वस्त्र से चाहे क्यों ना सजा हो, चाहे वो मुकुट से ही क्यों ना सजा हुआ हो, वो तो बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। और अब 22वें श्लोक में और भी सुंदर बात कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो भगवान की तरफ नहीं मुड़ते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान को जानना भी नहीं चाहते हैं, उनके नयन कैसे हैं। तो कह रहे हैं, बरहायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्ना निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यो। अर्थात जिन सब व्यक्तियों के नयन भगवान विष्णु के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते, श्री कृष्ण के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते, श्री कृष्ण के श्री विष्णु के प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते, तो उनके जो नेत्र हैं वो मयूर पुच्छ पर अंकित चक्षु की तरह हैं। मोर की पूंछ या मोर का पंख देखा है ना आपने, उसमें जो एक आकृति बनी होती है देखने में आंख जैसी लगती है, तो वो मोर पुच्छ पर अंकित आंखों की तरह ही हैं ऐसे व्यक्तियों की आंखें जो भगवान के शिव विग्रह का दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि तब वो अपने अपने उद्धार का रास्ता नहीं देख पाते हैं और ऐसे सारे व्यक्ति संसार रूपी कंटक क्षेत्र में ही गिर जाते हैं, यानी संसार रूपी जो कटीला क्षेत्र है उसी में वो गिर जाते हैं। और जो लोग अपने दोनों पैरों से भगवान की लीला भूमि या तीर्थ समूह पर नहीं जाते हैं, वहां विचरण नहीं करते हैं, तो उनके दोनों पैर वृक्ष जैसे स्थावर हैं, अर्थात वो यमदूत के कुठार या कुल्हाड़ी के द्वारा छिन्न हो जाते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर श्लोक कहा है शौनक जी ने। शौनक जी बड़े ही आश्चर्यचकित हैं कि भाई भगवान की कथामृत को सुनने में इतना नानुकुर क्यों। जिस कथामृत से व्यक्ति बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकता है, बहुत जल्दी शुद्ध हो सकता है, उसकी चेतना उसका जो चित्त है वो शुद्ध हो सकता है, क्योंकि चित्त के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, चित्त में ही भगवान आकर विराजते हैं, चित्त ही है वो वस्तु जिसे भगवान ने हमें कृपा करके दी है, और चित्त जब भक्ति के संस्कारों से रंजित हो जाता है, भक्ति के रंग में रंग जाता है, तो वो भगवत प्राप्ति करा देता है। तो आंखें तो हैं और हम कहते भी हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि हम तो अज्ञान रूपी अंधपन के शिकार थे, अंधे थे पूरी तरह से, और उसमें भी ऐसे दृष्टिहीन थे कि जैसे बहुत अंधेरा भी हो और नेत्र भी ना हो तब तो और भी भयंकर बात हो जाती है। आंखें अभी खुली ही नहीं थी, लग रहा था सब कुछ देख रहे हैं परंतु ज्ञान था नहीं, वो नेत्र नहीं खुले जिससे भगवान को जान पाए, अपने आप को जान पाए, कर्म जान पाए, माया जान पाए, संसार को जान पाए और भगवान की महिमा को जान पाए। वो नेत्र तो है ही नहीं हमारे पास, परंतु नेत्र दिख रहे हैं कि वो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो देख रहे हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि ये जो नेत्र है ना, जो भगवान के शिव विग्रह का ही दर्शन करने नहीं जाते, जगह जगह पर भगवान के शिव विग्रह हैं, परंतु हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम वहां जाएं उनका दर्शन करें। कोई कहता है अजी मूर्ति ही तो है, पर उत्तर है ना ना ना ना, मूर्ति ही वो नहीं है। अरे मूर्ति वो तब होते हैं जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, तब वो मूर्त है, लेकिन जब उन्हें मंदिर में पधराया जाता है, उनका अभिषेक होता है, वैदिक मंत्रों से उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो शिव विग्रह हो जाते हैं।

है ना, वो तब बात करने लगते हैं। ये जो हम इस समय अपने आसपास वृंदावन धाम देख रहे हैं, जहाँ इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है और इतने लोग वहाँ जा रहे हैं, इतने लोग वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं कि वृंदावन बिल्डिंग वन जैसा बन गया है, ये अवस्था हो गई है, यानी इतनी डिमांड है, ये कैसे हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों को कहा था कि हे लोकनाथ, हे भूगर्भ जी, आप लोग जाइए और जाकर के लुप्त वृंदावन का उद्धार कीजिए, खोजिए, लीला स्थली को खोजिए। तो लोकनाथ प्रभु आए और उनको यहीं पर मिले श्री राधा विनोद जी। श्री राधा विनोद जी ने स्वप्न में आकर के कहा कि आप मेरी सेवा कीजिए, और राधा विनोद जी किसी बहाने से उनके पास आ गए। राधा विनोद जी ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे लुप्त तीर्थ उद्धार में। तो श्री लोकनाथ जी राधा विनोद जी के श्री विग्रह को एक झोले में लटकाते थे और उस झोले को गले में लटकाते थे, और वो जहां जहां जाते थे तो कहां कौन सी लीला हुई, क्या हुआ, राधा विनोद जी उनको बताते थे। तो ऐसे हमारे राधा विनोदी लाल जी श्री लोकनाथ जी के हृदय से चिपके रहते थे, और जब उनको रात को वापस लाया जाता था तो एक वृक्ष की कोटर में उनको पधराया जाता था, क्योंकि हमारे जो गोस्वामी हैं वो तो पेड़ों के नीचे ही रहते थे, निष्काम थे, भगवान की आज्ञा के अनुसार आए हुए थे। ऐसे ही रूप जी थे, रूप जी ने प्रकट किया गोविंद देव जी को, गोविंद देव जी साक्षात बातें करते थे। मदन मोहन जी को प्रकट किया सनातन गोस्वामी पाद जी ने, सनातन गोस्वामी पाद जी से खूब बातें करते थे मदन मोहन जी, रोज रोज उनको भोग लगाया करते थे सनातन गोस्वामी जी। तो चूंकि अपना सारा वैभव छोड़कर आ चुके थे, प्रधानमंत्री थे कभी वो बंगाल के, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के आ चुके थे, महाप्रभु का आनुगत्य स्वीकार किया था, और चूंकि वो तो नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, तो उनकी कृपा तो थी ही उन पर, और रूप सनातन जी भी लुप्त तीर्थ उद्धार कर रहे थे। तो मदन मोहन जी की जब वो सेवा करते थे तो कैसे सेवा करते थे, वो आटे के घोल का ऐसे ही टिक्कड़ बना लेते थे चूल्हे पर, और बिना नमक डाले ही उसे भगवान को देते थे और वही वो पा लेते थे, और सारा समय ग्रंथ लेखन, लुप्त तीर्थ उद्धार, यानी वृंदावन धाम में कहाँ क्या क्या है, रूप सनातन जी भी खोजते थे। और आज हम श्री वृंदावन धाम में, श्री गिरिराज जी में, श्री राधा कुंड में, ब्रज 84 कोस में जितनी भी लीला स्थलियाँ देखते हैं, वो सब श्री रूप सनातन, श्री लोकनाथ जी, श्री भूगर्भ जी, इन सब गोस्वामियों के द्वारा प्रकटित हैं। स्वयं महाप्रभु भी यहाँ आए और श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड को प्रकट किया, यानी कि ये तो पहले से ही थे लेकिन लुप्त हो गए थे, तो उन्होंने दिखाया कि ये श्री राधा कुंड है और यहाँ पर श्री श्याम कुंड है। तो मदन मोहन जी को जब चूंकि सनातन गोस्वामी जी ऐसे ही देते रहते थे बाटी, तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हमको देते हो भाई, थोड़ा नमक तो डाल दिया करो। तो मदन मोहन जी ने कहा भाई मैं तो भजनानंदी बाबा जी ठहरा, आज नमक मांग रहे हो, कल मक्खन मांगोगे, परसों 56 भोग मांगोगे, मैं तो भजन करने के लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ, इतनी डिमांड्स, इतनी मांग मैं आपकी नहीं सह सकता। तो मदन मोहन जी ने कहा ठीक है, तो मैं कुछ इंतजाम कर लूँ, तुम कहो तो। तो फिर सनातन जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कर लीजिए, इंतजाम करिए, किसने मना किया है आपको। बस फिर क्या था, अगले दिन एक सेठ की नैया जो जा रही थी व्यापार के लिए, वो जमुना जी में रेत में फंस गई, आगे बढ़े ही ना, वो बड़े परेशान हो गए। तो किसी ने कहा जाइए, बहुत बड़े गोस्वामी हैं यहाँ पर सनातन जी, आप उनके पास जाइए, उनके चरणों में पड़ जाइए, वो कोई मार्ग बताएंगे। सनातन जी के पास आए तो सनातन जी समझ गए कि अरे मदन मोहन जी ने अपना काम कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ कुछ भी जी, मैं तो इनका दास हूँ, आप इन्हीं के

0: बस अपनी फरियाद रखी है। तो वो सेठ जी गए और मदन मोहन जी के पास, उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई और ये भी वायदा किया कि अगर मुझे इस बार फायदा हुआ, लाभ हुआ व्यापार में, तो मैं यहाँ सुंदर मंदिर बनाऊंगा, आपके भोगराग की व्यवस्था करूंगा, 56 भोग की व्यवस्था करूंगा, बहुत कुछ कहा। और फिर क्या था, उनकी नैया रेत से बाहर आ गई और खूब व्यापार में लाभ हुआ और फिर मदन मोहन जी का बड़ा ही भव्य विशाल मंदिर बना। तो ऐसे शिव विग्रह खूब बात करते हैं अपने निज जन के संग, उन्हें प्रेम चाहिए होता है, प्रेममयी सेवा चाहिए होती है। कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, प्रेम बस। तो ये जो शिव विग्रह हैं, जिनमें एक साक्षी गोपाल जी की भी कथा आती है, साक्षी गोपाल जी वृंदावन से पहुंच गए उड़ीसा, उड़ीसा में साक्षी गोपाल जी हैं, वो यहाँ से पहुंच गए अपने भक्त के प्रेम में, उनके पीछे चलते चलते साक्षी देने के लिए, गवाह होकर के, गवाही देने के लिए। तो इस तरह से शिव विग्रह साक्षात हैं, वो झूठ नहीं है, वो कोई बुत नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात हैं। तो शिव विग्रह का जो दर्शन नहीं करता हमारे शास्त्र, वो भी भागवत जी जैसे शास्त्र बड़े ही कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की आंख वो तो होकर भी नहीं है, वो तो मयूर के पुच्छ पर जो नयन है उसके जैसी है, जिसके द्वारा कुछ देखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो उन दोनों नेत्रों के द्वारा अपने उद्धार का मार्ग ही नहीं देख सकता है। और संसार रूपी कंटक क्षेत्र में, यानी कांटों से भरे क्षेत्र में बेचारा गिर जाता है। बेचारा इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। मनुष्य देह अगर सुलभ होती, सहज होती, आसानी से मिलती, वो भी भारत देश में, जिसके लिए इंद्र जी भी कामना करते हैं, ब्रह्मा जी भी बड़े त्रिषित रहते हैं कि हमें यहाँ मनुष्य देह मिल जाती तो भजन करके ही प्रभु हम आपको प्राप्त कर लेते, वो मनुष्य देह हमें मिली हुई है और हम कैसे उसको व्यर्थ कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर भाव यहाँ व्यक्त हो रहा है, जिस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक पर, जहां पर शौनक जी बड़े ही आश्चर्य के साथ कह रहे हैं सूत जी से कि बरहायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यौ। देखिए आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और आश्चर्य होने की बात भी है क्योंकि भगवान ने हमें जो इंद्रियां दी है ना, वो इंद्रियां इसलिए नहीं दी हैं कि उनसे हम सुख उठाएं अपने आप में और मत इतने हो जाएं कि भगवान को कभी भी याद ना करें। वस्तुतः ये इंद्रियां दी हैं भगवान की सेवा करने के लिए, आंखें दी हैं भगवान की शिव विग्रह का दर्शन करने के लिए, है ना। इसलिए देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है। कई लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी भगवान के अर्चा विग्रह की पूजन के बारे में नहीं बताया गया है, भगवान का अर्चा विग्रह कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ साफ तौर पर बड़े ही कड़वे शब्दों में धिक्कारते हुए

हमें बताया गया है बरहाई ते नयने नाराणाम लिंगानी विष्णु ना निरीक्षित हो ये, कि जिनकी आंखें भगवान के शिव विग्रह का दर्शन नहीं करती हैं, उनकी आंखें मोर के पंख पर छपी हुई आंखों की तरह है, जो कुछ भी नहीं देख पाती। और अब बता रहे हैं पैरों के बारे में, पादौ निणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। पादौ निणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रज तो हरियो। हरि का जो क्षेत्र है, भगवान जहां पर लीला करते हैं, लीला भूमि, ठाकुर जी की तो बहुत सारी लीला भूमि है। पूरे भारत में भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की हैं, कभी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, हर जगह भगवान की लीलाएं हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की लीला भूमि पे नहीं जाता है, अपने इन दो पैरों से भगवान की लीला भूमि पर नहीं जाता है, तीर्थ समूह पर नहीं जाता है, तो उनके जो दोनों पैर हैं वो वृक्ष के जैसे स्थावर हैं। यानी वो वर्ल्ड टूर पे जाता है, वो अपने काम पर जाता है, वो कहीं भी क्यों ना जाए, देखने में लगेगा कि अरे मेरे पैर तो चल पा रहे हैं, तो मैं तो चलता फिरता इंसान हूं। हाँ ठीक है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आपके पैर वृक्ष जैसे स्थावर हैं। जैसे वृक्ष होते हैं ना, एक जगह पर गड़ जाते हैं, गड़े हुए होते हैं, उगे हुए होते हैं, बेचारे चल ही नहीं पाते, वृक्ष चल ही नहीं पाते, हालांकि वो भी जीवात्मा है, वो भी सांसें लेते हैं, वो भी बढ़ते हैं, जो भी चीज बढ़ती है उसमें जीवात्मा है। तो वृक्ष मगर चल नहीं सकते, इसलिए वो स्थावर कहलाते हैं। ऐसे ही जो लोग भगवान की लीला भूमि पर नहीं जाते हैं, उनके तीर्थ समूहों पर नहीं जाते हैं, भगवान ने वृंदावन में कितनी अच्छी लीलाएं की हुई हैं, भगवान ने श्री अयोध्या धाम में कितनी प्यारी लीलाएं की हैं, काशी में, नवद्वीप धाम में, दक्षिण भारत में, कहाँ भगवान ने लीलाएं नहीं की हैं। और हर जगह जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं, उनके विग्रह हैं, तो कोई भगवान की लीला भूमि पे जाए तो क्यों जाए। तो उत्तर ये है कि भाई भगवान की लीला भूमि का आश्रय करते हैं संत लोग। संत लोग आसानी से ऐसी जगह नहीं मिलते जहां पर इंसान अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए व्यस्त हो, ऑफिसेस में, होटल्स में, यहाँ वहाँ संतों का मिलना दुर्लभ है, लेकिन तीर्थों में संत मिल जाते हैं, क्योंकि वो भी भगवान की लीला भूमि का आश्रय लेकर के वहाँ भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं उनकी लीला भूमि पर रहकर। तो उससे उनका जो भजन है वो कई कई गुना बढ़ जाता है, और धाम की भी कृपा हो जाती है उन पर, क्योंकि धाम साक्षात चिदानंदमय है। भगवान जैसे चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है, उनमें कुछ भी प्राकृत अंश नहीं है, वो माया के बने हुए नहीं है, ऐसे ही जो भगवान की लीला क्षेत्र हैं, धाम है, वहाँ कोई भी माइक वस्तु नहीं है, माया का कुछ भी नहीं बना है। धाम कृपा करके दृश्यमान प्रकाश में रहते हैं, यानी ऐसा प्रकाश जो सबको दिखाई दे, जहाँ सब लोग आ सकें, क्योंकि अगर धाम अपने सच्चिदानंदमय तत्व को उभार दें, सच्चिदानंदमय रूप को उभार दें, तो हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो तो माया का बना हुआ है। तो धाम कृपा करके एक ऐसी पोशाक को पहन लेते हैं जिससे कि वो हमें एकदम एक आम रूप में नजर आए, जहाँ हमें जाने में कोई परेशानी ना हो। वहां पर भी हमें बैंक्स दिखते हैं, होटल्स दिखते हैं, वहां पर भी हमें इंटरनेट कैफे हाउसेस दिखते हैं, बहुत चीजें दिखती हैं, तो लगता है कि हाँ यहाँ रहा जा सकता है, यहाँ पर भी अच्छी चीजें मिलती हैं, अच्छी शॉपिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन वास्तव में वो लीला क्षेत्र अक्षुण रहते हैं, उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती। भगवान का वो जो दृश्यमान प्रकाश है वो संदनी शक्ति से ही प्रकटित है, भगवान की संदनी शक्ति से, है ना।
क्योंकि भगवान की

स्वरूप शक्ति है उसकी तीन वृत्ति है, संधिनी शक्ति, संविद शक्ति और अलादिनी शक्ति। तो जो संधिनी शक्ति है जिससे भगवान अपने धाम को प्रकट करते हैं, तो वो संधिनी शक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, वहां माया का अधिकार नहीं हो सकता, वहां माई का कुछ भी नहीं है। तो इसलिए धाम के महत्व को समझ करके जो वहां जाते हैं और वहां वास करते हैं, धाम की महिमा को समझते हुए, महिमा ज्ञान के साथ, तो उस व्यक्ति पर धाम की कृपा होती है। तो वहां अगर कोई जाए और वास करे रहे तो उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वहां वो किसी में भी दोष ना देखे, दोष दिखे भी तो भी वो लीला मात्र ही समझे, दोष तो वहां किसी में है ही नहीं। अपनी नजरों को जब हम ऐसा कर लेते हैं, निर्दोष बना लेते हैं, दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है। होगी दोष दृष्टि समाप्त सिर्फ भजन से ही, भक्ति करेंगे, भगवान की कृपा होगी, भगवान की लीलाओं के स्मरण में हमारा आवेश होगा, तो फिर हृदय में किसी के भी प्रति कोई दोष दृष्टि जन्म ही नहीं लेगी, है ना। सब हरि के दास नजर आएंगे, भगवान के दास नजर आएंगे। तो इसलिए भजन की सिद्धि के लिए, संतों से मिलने के लिए, संतों के सत्संग को प्राप्त करने के लिए, हरि कथा को श्रवण करने के लिए, धाम की कृपा को प्राप्त करने के लिए, संतों की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भजन की सिद्धि के लिए, सब चीज़ के लिए धाम का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। और देखिए, मनुष्य जीवन तो हमें, और वो भी इस प्रकार का मनुष्य जीवन तो एक ही बार मिलता है ना, जहाँ पर हम धाम का आश्रय कर पाए, है ना, सत्संग कर पाए, सत्संग में बैठ कर भगवान की कथाओं का आस्वादन कर पाए, तो ऐसा जो अवसर है वो बारंबार नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा अवसर मिल जाता है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, यही कह रहे हैं यहाँ पर हमारे आचार्य। कह रहे हैं कि जो मनुष्य दो पैरों का होके भी, उनके पास दो पैर हैं, इन दो पैरों से वो कहाँ नहीं जा सकते, पर वो सब जगह जाते हैं। ऐसे मैंने अनेक लोग देखे हैं जो सब जगह गए पर उन्होंने आज तक भगवान के धामों को नहीं देखा, वो गए ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं हुई। तो उनको तो नॉर्मल लगेगा, बाकी लोगों को भी सामान्य लगेगा, लेकिन शास्त्र बड़े ही कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र याद रखिए हमारी माता के समान है, और माँ जो है अपने बच्चे को प्यार करती है, दुलराती है, हृदय से लगाती है, दूध पिलाती है, पर वो पिटाई भी कर देती है, है ना। तो शास्त्र हमारा भला चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जाओ, धाम में जरूर जाओ, धाम की भी सेवा करो, धाम में हरि कथा जाकर के सुनो, धाम से दूर मत रहो। तो इसलिए जब हम नहीं जाते हैं तो शास्त्र हमारे इन पैरों की वृक्ष के साथ तुलना देते हैं। तो हमें अपना भला स्वयं करना होगा, शास्त्रों की वाणी को बहुत सीरियसली लेना होगा, है ना, शास्त्र की वाणी को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि धाम में जाना बहुत आवश्यक है, तीर्थों में जाना बहुत आवश्यक है, उससे हमारे पाप भी समाप्त होते हैं और पापों की वृत्ति समाप्त हो जाती है जब हमें भगवान के किसी प्यारे भक्त का संग प्राप्त हो जाता है। तो वृत्ति ही समाप्त हो गई तो फिर संसार में रहने की जो वृत्ति है हमारी वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि भजन प्रारंभ हो जाता है, भजन से भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम की प्राप्ति होती है और संसार बंधन समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कृपा पूर्वक हमें बता रहे हैं कि आंखों से हमें भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, और इन पैरों से हमें भगवान की लीला स्थली में जरूर जाना चाहिए। तो बहुत सुंदर चर्चा हुई आज, और इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हम सुनते रहिए समर्पण, इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार, मेरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना

स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 एफएम रेनबो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह। एक खूबसूरत सुबह में खूबसूरत सा गीत हो जाए तो फिर क्या ही कहने, और इस सफर की हो गई शुरुआत। तो चलिए आज के दिन को और खूबसूरत बनाते हैं इस प्यारे से खूबसूरत गीत के साथ, जिसके बोल भी हैं खूबसूरत।

हाँ जी, तो क्या कहने हैं सुन मेरे भाइया। और इसी के साथ शुरू हो चुका है ये सफर, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का, जहां पर आपको बहुत सारी बातें तो बताई जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी शख्सियत से भी मिलवाया जाता है यार, उनके बारे में बात की जाती है जो दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके होते हैं। कहते हैं कि भाई अगर हम अपने जज्बे के साथ काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी आसान हो जाती हैं। दूर से तो बड़ी कठिन लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो आसान होती चली जाती हैं। तो और ख़ासकर तब जब हम बात करते हैं किसी जेंडर की, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि ऐसी महिला की जो प्रेरणा का स्रोत बन गई, तमाम मुश्किलें उनको झेलनी पड़ी, तमाम संघर्षों का दौर उनके साथ रहा, और उनके दौर में जिस तरह की बातें की जाती थी उन बातों को भी दरकिनार करते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंची, वो मुकाम उन्होंने हासिल किया। दंगल फिल्म तो आपने देखी होगी, दंगल फिल्म की जो स्टोरी थी दोनों बच्चों की, और वो जब बड़े होकर कठिन परिस्थितियों से, संघर्षों से गुजरते हुए एक मुकाम हासिल करते हैं, तो फिर ना सिर्फ उनके परिवार को खुशी होती है बल्कि पूरा देश उन पर गर्व करता है। ऐसी एक महिला की हम बात करने जा रहे हैं जिसने अपने शुरुआती संघर्ष में बहुत कुछ किया, और आज जब उन्हें जाना जाता है तो एक श्रद्धा की नज़र से, एक अलग नज़र से उन्हें देखा जाता है, और कई लड़कियां उनसे प्रेरणा लेती हैं। और ये जन्मी थी उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव नकुरी में। बचपन से साहसी थी, जिद्दी स्वभाव था इनका, ये पहाड़ों के बीच पली बढ़ी और बचपन से ही इन्हें ऊंचाइयों को छूने का शौक था। लेकिन उस दौर में लड़कियों का एक ऐसा काम करना, वो भी पर्वत के ऊपर चढ़ना, बहुत कठिन माना जाता था और बहुत आसान नहीं था उस दौर में। तो परिवार और समाज की कई चुनौतियों के बावजूद वो एक ऐसी शख्सियत बनी, उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में से प्रशिक्षण हासिल किया। कुछ परेशानियां आर्थिक थीं, कुछ परेशानियां सामाजिक थीं, और ये रास्ते में रोड़े की तरह तो आए, लेकिन उनका सपना उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। और जब सपने बड़े होते हैं तो फिर सिर्फ मंजिल दिखाई देती। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो प्रथम भारतीय महिला बन गई, पहाड़ों की रानी, नाम है बशेंद्री पाल जी। पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की पांचवीं महिला पर्वतारोही बनी। उन्होंने ये जो कारनामा था 23 तारीख को करा था 1984 के दिन, और 1:07 पर यह कारनामा उन्होंने कर दिखाया था। और भारतीय अभियान दल के सदस्य के रूप में माउंट एवरेस्ट पर आरोहण के कुछ ही समय बाद उन्होंने इस शिखर पर महिलाओं की एक टीम के अभियान का सफल नेतृत्व किया था, और 1994 में बछेंद्री पाल जी ने महिलाओं के गंगा नदी में हरिद्वार से कलकत्ता तक 2500 किलोमीटर लंबे नौका अभियान का नेतृत्व किया। हिमालय के गलियारे में भूटान, नेपाल, लेह और सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर समाप्त होने वाला 4000 किलोमीटर लंबा अभियान उनके द्वारा इस दुर्गम क्षेत्र में प्रथम महिला अभियान का प्रयास था। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जन्मदिन है, उनको ढेरों शुभकामनाएं, और आपकी जो उपलब्धियां हैं ना जाने कितनी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर आज भी उन्हें राह दिखाती हैं। हम आपकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। आपका यह संघर्ष मेहनत और आत्मविश्वास एक ऐसी मिसाल है जो आज भी युवाओं और खासकर महिलाओं को अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन ये काम वही कर सकता जिसके अंदर जज्बा हों।

0: तो ये जज्बा जो जगा लेता है उसे कोई भी मंजिल आसान लगने लगती है, और ये जज्बा अगर आपके अंदर है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी अपनी मंजिल को पा लेंगे। लेकिन इस मंजिल के को पाने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, जो कि आकाशवाणी ने भी तय किया है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के बारे में।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी दिल्ली में प्रथम टेलीविजन प्रसारण के बारे में। 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक शैक्षिक टेलीविजन सेवा का शुभारंभ किया गया। आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टिंग हाउस दिल्ली में एक अस्थायी स्टूडियो और छोटे ट्रांसमीटर के साथ इस प्रयोग की शुरुआत हुई। इस विजुअल माध्यम को दूरदर्शन नाम दिया गया, जो शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो के ही एक अंग के रूप में कार्य करता रहा। इसका प्रसारण सप्ताह में केवल 2 दिन एक एक घंटे के लिए होता था, जिसका मुख्य केंद्र शिक्षा और सामुदायिक विकास था। इसी ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत कृषि दर्शन, चौपाल और कल्याणी जैसे कार्यक्रमों की नींव पड़ी। 1 अप्रैल 1976 को टेलीविजन सेवा को आकाशवाणी से पूर्णतः अलग कर दूरदर्शन को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।

0: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
1: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

ये खूबसूरत सा गीत उदित नारायण की आवाज में जब आपके दिलों में उतरता है तो फिर बजाना तो बनता है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये गीत क्यों बजाया, तो हम बता दें कि संगीतकार जो रहे हैं इस गीत के वो हैं राजेश रोशन जी, और आज चूंकि उनका जन्मदिन है तो उनके बारे में थोड़ी बहुत बात हो जाए। दरअसल भारतीय सिनेमा के ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं और अपनी मधुर धुनों के लिए ये लोगों के दिलों में उतरते रहे, और बॉलीवुड संगीत जगत में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। 24 मई 1955 को मुंबई में आपका जन्म हुआ था, और वे महान संगीतकार रोशन के पुत्र हैं और अभिनेता निर्देशक राकेश रोशन के छोटे भाई हैं। कहते हैं संगीत तो उन्हें विरासत में मिला और बचपन से ही उनका जो रुझान रहा है वो सुरों की दुनिया की ओर रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1974 में फिल्म कुंवारा बाप से की थी, और पहली फिल्म में उनके संगीत को काफ़ी सराहना मिली थी और उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने जूली, याराना, खून भरी मांग, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया और क्रिश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत देकर लोकप्रियता हासिल की, और आप उनके गीतों को सुनते हैं जिस तरह से। अब चाहे भारतीय संगीत का और जो भावनात्मक गहराई है वो उनके संगीत में देखने को मिलती है, और उन्होंने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और उदित नारायण जैसे दिग्गज गायकों के साथ काम किया है। फिल्म नटवर लाल का संगीत भी राजेश रोशन ने दिया, और इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, और ये मौका उन्हें एकमात्र राजेश रोशन ने ही दिया था। गाना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाए, है ना, और ये गीत सच में लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और बच्चों की जुबान पर तो था ही। आज भी अमिताभ बच्चन के सुपरहिट गीतों में से ये एक माना जाता है। 70-80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन और कल्याण जी आनंद जैसे जोड़ियों का बोलबाला था, जबरदस्त उस वक्त उनका सुरूर, उनका जो संगीत था लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, उस दौर में एक नए संगीतकार ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और वो

था राजेश रोशन, और उन्होंने जिस तरह से दर्शकों का दिल जीता, इंडस्ट्री में एक अपनी अलग पहचान बनाई और धीरे धीरे करके वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप और भी खूबसूरत गीत देते रहेंगे। एक और गीत उनकी फिल्म से। वैसे गीत का म्यूजिक सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे गीत कौन सा है, और इसके हीरो थे अक्षय कुमार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.org

0: cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अब चूंकि बात रिश्तों की जब होती है तो रिश्ता जुड़ता है कभी कभी उन लोगों से जो जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दशकों क्या जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं और हमें प्रेरणा देते रहते हैं, चाहे फिल्म जगत से हो, चाहे वो हस्तियां हों, चाहे क्रांतिकारी हों या फिर इतिहास के पन्नों की कोई बात, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में जुड़ा रहता है। और ऐसे एक नाम जो फिल्म जगत के साथ जुड़ा हुआ है वो है मजरूह सुल्तानपुरी साहब का। वो आज भले ही हमारे बीच में ना हो लेकिन उनके द्वारा लिखी गई शब्द जो हैं, अल्फाज हैं, वो आज भी हमारे दिल दिमाग पर छाए रहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 1945 में सब्बो सिद्दीक इंस्टीट्यूट ने एक मुशायरे को संचालित किया था जिसमें मजरूह सुल्तानपुरी साहब पहुँचे थे मुंबई, और जो पहले बम्बई जिसको कहा जाता था, उस मुशायरे के कार्यक्रम में उनकी शायरी सुनकर मशहूर निर्माता A.R. कारदार उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी से अपनी फिल्म के लिए गीत लिखने की पेशकश की थी। मजरूह साहब ने कारदार साहब की इस पेशकश को उस वक्त स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उस दौर में फिल्मों के लिए गीत लिखना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन जिगर मुरादाबादी ने मजरूह सुल्तानपुरी साहब को तब सलाह दी कि फिल्मों के लिए गीत लिखना कोई बुरी बात नहीं है, गीत लिखने से जो धनराशि आपको प्राप्त होगी उससे वो अपने परिवार का खर्च निकाल सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। धीरे धीरे करके संगीतकार नौशाद साहब ने मजरूह सुल्तानपुरी को एक धुन सुनाई और उनसे उस धुन पर एक गीत लिखने को कहा। मजरू साहब ने उस धुन पर गेसू बिखराए बादल आए झूम के गीत की रचना की और उस गीत लिखने के अंदाज से नौशाद साहब काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने की पेशकश की। अब मजरू साहब ने वर्ष 1946 में आई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखा जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करें, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसके बाद मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद साहब की जोड़ी सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद जो फिल्में आई अंदाज, साथी, पाकिजा, तांगे वाला, धर्म कांटा और गुड्डू जैसी फिल्मों में एक साथ इन्होंने काम किया। फिल्म शाहजहां के बाद महबूब खान के अंदाज और एस फाजिल की मेहंदी जैसी फिल्मों ने अपने रचित गीतों की सफलता के लिए मजरूह सुल्तानपुरी साहब को बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी नए पहचान बनाने में वो सफल हो गए। इसके बाद सिने करियर की जब बात करें तो उनकी जोड़ी संगीतकार SD बर्मन के साथ भी खूब जमी। SD बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी वाली जो फिल्में हैं वो है पेंगेस्ट, 9-2-11, 16 साल, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता बम्बई का बाबू, पातिक रात की, तीन देवियां, जेल थीफ और अभिमान जैसी सुपरहिट फिल्में इन्होंने दी हैं। और मजरूह सुल्तानपुरी साहब के जो महत्वपूर्ण योगदान था उसको देखते हुए 1993 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको नमन करते हैं। 24 मई 2000 को वो हमारे बीच से हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके एक प्यारा सा गीत जो है उससे आपको रूबरू कराते हैं। और ये उस दौर का इतना सुपर गीत था, आज भी इस गीत को याद किया जाता है और कभी नहीं भुलाया जा सकता।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार

जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार जी, एक बार फिर से वापस आ गए हैं आपके स्वागत के लिए। और कहते हैं कि भाई वक्त कुछ कह रहा है, घड़ी की सुई लगातार चलती चली जा रही है, तो हम कुछ आपको बता देते हैं क्योंकि जिंदगी एक रंगमंच है जब कहा जाता है, और रंगमंच में हम एक कलाकार की तरह काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी क्या होता है जीवन में, सबसे जरूरी होता है खेल। तो चलिए कुछ खेल के बारे में बता देते हैं, और इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण है और इसका जो आयोजन स्थल है वो है ग्लासगो स्कॉटलैंड, और 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ये चलने वाले हैं। इसमें 74 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो कि लगभग 2.5 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इंतजार करिए इन खेलों का, क्योंकि कहते हैं कि खेल के मैदान से बहुत कुछ मिलता है, गोल्ड गोल्ड मिलता है। और ख़ास ये रहेगा कि इस बार जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ के बाद और राजा चार्ल्स तृतीय के राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रमंडल खेल होंगे, और इसमें 10 खेल शामिल किए गए हैं, एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स, तैराकी और पैरा तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन और पैरा पावर लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जूडो, बॉलिंग और पैरा बॉलिंग, 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। और इसमें से कुछ खेल हटाए भी गए हैं, 12 खेलों को यहां से हटाया गया है, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, मैराथन, रग्बी, सेवेंस और समुद्री तट वॉलीबॉल, माउंटेन बाइकिंग, स्क्वैश, गोताखोरी और ट्रायथलॉन, ये खेल इस बार नहीं दिखेंगे आपको। फिलहाल जब शुरुआत इनकी होगी तो इंतजार कीजिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में सोना मिलता है हमारे खिलाड़ियों को। और कुछ तो खास करके आएंगे, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो चैंपियन पाएंगे भाई साहब। इसके साथ साथ इजाजत लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे 1 घंटे बाद।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप और मैं अब आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, आपकी दोस्त गीतांजलि। नई सुबह की नई उम्मीदें, नई ऊर्जा, ढेर सारी पॉजिटिविटी और प्यारे प्यारे गीत। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल।

दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आज दिल्ली में मौसम कैसा रहने वाला होगा, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में मौसम बहुत ज्यादा गर्म और तेज धूप वाला रहने की संभावना है। तो दिन के समय तापमान जो है 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे कि हीट वेव्स का असर भी महसूस हो सकता है। हर तरह की परिस्थिति जीवन की जो है, उससे हमें निपटने का साहस अपने अंदर रखना चाहिए। इसलिए कुछ चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखकर अपनी दिमाग से गर्मी को हटा सकते हैं। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचिए, खूब पानी पिए और खुद को हाइड्रेट रखें, हल्के और ढीले कपड़े पहने। हल्के रंग के कपड़े जो हैं हमें गर्मी से बचाते हैं। धूप में निकलते समय टोपी या छाता जरूर अपने पास रखें। हालांकि इन सब बातों से आप भली भांति परिचित हैं, फिर भी दोस्त हैं इसलिए चिंता रहती है, इसलिए साझा कर लेते हैं आपके साथ ये सब जानकारी। कुल मिलाकर आज का दिन जो है काफी गर्म रहेगा, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है और हमारे दोस्त सावधानी रखेंगे और खुद को हेल्दी रखेंगे, क्योंकि एक हेल्दी जीवन जो है ना, वही हमें पॉजिटिव रखता है और आगे बढ़ने में मदद करता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूं आपकी दोस्त गीतांजलि। आपके लिए मेरे पास है एक खास जानकारी। भारत की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मकता से जुड़ी एक शानदार पहल से करते हैं शुरुआत। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम 150 राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य दोस्तों देश की आत्मा को दर्शाने वाले इस अमर गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को एक नए और आधुनिक अंदाज में मनाना है। इस प्रतियोगिता में देश भर के नागरिक भाग ले सकते हैं और अपनी रचनात्मकता को रील्स, AI आधारित फिल्म और शॉर्ट फिल्म में, जी हाँ शॉर्ट फिल्म के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रतिभागियों को अपनी कला दिखाने का सुनहरा मौका तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 50 लाख तक के आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है बल्कि ये एक अवसर है अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने दिखाने का। तो अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी से कुछ अलग करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो अपनी एंट्री भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। वेबसाइट है vandematram150.in, वेबसाइट vandematram150.in। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। तो तैयार हो जाइए, कैमरा ऑन कीजिए और अपनी सोच को दीजिए उड़ान, क्योंकि ये है वंदे मातरम 150। और अंतिम तिथि फिर से बता दूं 31 मई। तो जो समय के साथ चलते हैं दोस्तों वही ऊंचाइयों को छू पाते हैं।

0: Akashvani at 90.
1: जी हाँ, ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मेरे साथ यानी आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ। और दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह के सफर में अब वक्त है दिल्ली की एक ऐसी खबर का जो हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। हमारे शहर के बहुत से परिवारों को काफी समय से इस खबर का इंतजार होगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने पूरे 13 साल के बाद एक बार फिर से नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के मुताबिक करीब 8.25 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसमें एक बहुत राहत की बात यह भी है कि राशन कार्ड के लिए जो सालाना पारिवारिक आय की सीमा थी वो पहले 1 लाख रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि अब और भी ज्यादा जरूरतमंद परिवार इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप या आपके जानने वाले इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसके लिए परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास स्थान का प्रूफ होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस जानकारी को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस सुबह को और खूबसूरत बनाने के लिए एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, बहुत प्यारा सा गीत, बहुत प्यारी सी आवाज़।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों, सुबह का समय जो होता है वो सिर्फ दिन की शुरुआत का नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों को फिर से याद करने का समय होता है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि मैं अपना आज बेस्ट दूंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी और हर मौके को बेहतर बनाने की दिल से कोशिश करती रहूंगी। क्योंकि दोस्तों, हर छोटा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। और इस खूबसूरत सुबह के सफर में अब बात करते हैं हमारी दिल्ली की लाइफलाइन यानी दिल्ली मेट्रो की। हम में से ज्यादातर लोग रोजाना मेट्रो में सफर करते हैं और अक्सर स्टेशन पर टिकट लेने के लिए कभी लंबी लाइन होती है, कभी कार्ड में पैसे नहीं होते, तो लगता है कि कुछ ना कुछ और होना चाहिए था और अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। लेकिन अब आपकी इस यात्रा को और भी आसान और आरामदायक बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा लेकर आई है। जी हाँ, अब मेट्रो स्टेशन पर विशेष सेल्फ सर्विस मोबाइल टिकटिंग कियोस्क यानी मशीनें लगाई जाएंगी। यहाँ आपको टिकट लेने के लिए कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा, बस मशीन के पास जाइए, स्क्रीन पर अपनी मंजिल चुनिए और अपना व्हाट्सएप नंबर दर्ज कर दीजिए। आपके नंबर पर तुरंत एक पेमेंट लिंक आएगा और भुगतान करते ही आपका मेट्रो क्यूआर टिकट जो है वो सीधे आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। दोस्तों, फिलहाल ये सुविधा जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली के 12 मुख्य मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है और आने वाले समय में इसे पूरे नेटवर्क पर लागू किया जाएगा। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा दोस्तों, बल्कि कागज के टिकट की बर्बादी भी थोड़ी सी कम होगी। तो अगर अगली बार आप मेट्रो स्टेशन पर जाएं तो इस आधुनिक और आसान सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और प्यारे प्यारे गीत मेरे साथ।

दोस्तों गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला जारी रखते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत सी जानकारी। लगता है कि अब स्कूलों की क्लासरूम में बंजौर और हौला थोड़ा कम सुनाई देंगे। जी हाँ, उसकी जगह गूंजेगा नमस्ते संस्कृतम स्वागतम। जी हाँ, शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नई शिक्षा नीति यानी NEP के तहत CBSE स्कूलों में अब संस्कृत को ज्यादा प्राथमिकता देने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं अब धीरे धीरे रेगुलर पाठ्यक्रम से जो है हटाई जा रही हैं और कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत जो विषय है वो कंपलसरी हो जाएगा। 9 और 10 में भी एक जरूरी विषय के रूप में संस्कृत जो है वो पढ़ाई जाएगी। दोस्तों अब सोचिए, एक तरफ विदेशी भाषाएं जो बच्चों को ग्लोबल दुनिया से जोड़ती हैं और दूसरी तरफ संस्कृत जिसे हमारी संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान की जड़ माना जाता है। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि अपनी भाषा और अपनी विरासत से जुड़ना बहुत जरूरी है और वाकई में सच भी है कि हमें अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जिस देश की नई पीढ़ी अपनी जड़ों को समझती है दोस्तों, वही देश आगे चलकर अपनी पहचान को सबसे मजबूत बना पाता है। और संस्कृत केवल वैसे भी एक भाषा नहीं दोस्तों, भारत की आत्मा की आवाज है। अपनी संस्कृति और संस्कृत से जुड़ना, अपनी पहचान से जुड़ना है, तो एक बहुत अच्छा कदम, एक बहुत अच्छी पहल कि जो देश और दुनिया के बच्चे हैं वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृत को जानेंगे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आज सारे दिन में आप FM रेनबो चैनल पर क्या कुछ सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में दिल के तराने गाने नए पुराने पेश करेंगे रविंद्र सिंह। सुबह 11 बजे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम सुन सकते हैं आप गोपाल भट्ट के साथ। विषय होगा प्रकृति का संरक्षण। अतिथि होंगे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अग्रमुख्य वन संरक्षक एवं बल प्रमुख वन विभाग गुजरात, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ वन विभाग गुजरात। दोपहर 1:05 पर मेरा वाला सॉन्ग कार्यक्रम सुनिएगा गोपाल भट्ट के साथ। दोपहर आशियाना कार्यक्रम लेकर आएंगी हिना मौज 2:00। 3:00 का समय रहेगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, सुन सकते हैं आप राजेश के साथ। 4:05 पर अल्फाजन कार्यक्रम सुनिएगा हिना मौज के साथ, और 5:05 पर सिटी लाइट्स कार्यक्रम पेश करेंगे राजेश कुमार। शाम 6:05 पर भगवती के साथ सुन सकते हैं आप कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। उसके बाद म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम के साथ भगवती जुड़ेंगी आपके साथ रात 8:00। और गजलों कव्वालियों की महफिल रंगे महफिल का लुत्फ आप उठा सकते हैं रात 11:05 पर जरीन नाच के साथ। फिलहाल गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR कार्यक्रम जो है यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। इजाजत लेने का समय

आपसे आ गया है। मैं आपकी दोस्त गीतांजलि FM रेनबो पर आपके साथ फिर जुड़ूंगी। याद रखिएगा, हर सुबह जो है वो एक नया अवसर लेकर आती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है दोस्तों। तो आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप? दिल के दराने गाने नए पुराने, अगर आपको संगम चाहिए नए और पुराने गीतों का तो जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे रविंद्र सिंह के साथ। और प्रोग्राम तो आपको पता ही है,
2: दिल के तराने गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: देखा तो आपको इंतजार है इस पल का, इस प्रोग्राम का। तो हम आगे लेकर और प्यारे से गीत के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो सब कुछ बदलने दो और उसी बदलाव के साथ हमें जीना है। ये आवाज है मोहित चौहान की और सयान देखिए। गीत के बोल भी कुछ ऐसे ही हैं, सब कुछ बदल गया।

तो भैया गीतों का संगम तो यूं ही जारी रहेगा। प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? दिल के तराने, गाने नए पुराने। और चलिए अब लौटते हैं पुराने दौर की तरफ। अब इस गीत को सुनकर आप पुरानी यादों में चले जाएं, क्योंकि ये फिल्म जो ये जो गीत है फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
3: तो दिल के दराने गाने नए पुराने चल रहा है, आपका दोस्त रविंद्र सिंह आपके साथ है। और अभी जो आपने गीत सुना था कुछ देर पहले, फिल्म धर्मकांटा से था, जो कि 1982 में आई थी और इस फिल्म का निर्देशन सुल्तान अहमद ने किया था। इसमें राजेश खन्ना, जितेंद्र, रीना राय ने मेन किरदार निभाया था। और क्लासिक और जोशीले युगल गीत को जो आपने सुना उसको गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और आशा भोसले ने। तो इस गीत के साथ ही बढ़ते हैं वापस, लौटते हैं मतलब नए दौर की तरफ, और कुछ नया हो जाए भाई साहब। अरे म्यूजिक बता देता है कि भाई सब कुछ नया नया है, तो नया है लुत्फ उठाइए, बस पुराने गीतों का संगम दिल के तराने गाने नए पुराने।

तो भैया सीधे पॉइंट पे आते हैं और फिर से हम संगम करते हैं पुराने गीतों के साथ। तो आपको रहना है जुड़े हमारे साथ, बस इतनी सी तो बात है और ये बात और साथ जो है ना चलता रहेगा। चलिए पुराने गीत की तरफ चलते हैं और ये गीत भी आपको पुरानी यादों में ले जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: तो गीत आपने सुना, पसंद आया है, बहुत अच्छा लगा। और ये गीत जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, ऐसे संगीत प्रेमियों द्वारा आज भी पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले दी ने, और संगीतकार इसके रहे हैं आर जी बर्मन और गीतकार रहे हैं साहिर लुधियानवी। और इस फिल्म में जो मेन किरदार के रूप में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है वो है धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र और नीतू सिंह, और इस दौर की फिल्म गजब की थी। चलिए बढ़ते हैं फिर से वापस आज के दौर में, और फिर से जैसे इस खनखनाहट के साथ पायल की झनकार के साथ गीत शुरू हुआ, वैसे इस गीत की शुरुआत भी हम उसी खनक के साथ करते हैं, यानी वापसी करते हैं इस टाइम मशीन में, दिल के तराने गाने नहीं बनाने, और आपका मित्र रविंद्र यहाँ पर आपके लिए प्यारे प्यारे गीत बजा रहा है।

0: come on.
1: तुषार कपूर की आवाज में
2: हाँ जी, तो गीतों का लुत्फ उठाते रहेंगे और नए पुराने गीतों का आनंद भी लेते रहेंगे, क्योंकि हम जुड़े हैं दिल के दरारें गाने नए पुराने के साथ। तो नए गीतों का संगम तो है ही, अब चलते हैं पुराने दौर की तरफ। ये धुन कहीं ना कहीं आपके दिलों में पहले भी उतरती रही होगी और एक बार फिर से ये आपके दिल में वो स्थान पाने जा रही है जो हमेशा जिसके लिए आप तैयार रहते हैं। और आवाज इसमें भी मोहम्मद रफी साहब की। और जब इस गीत को, इस कव्वाली को आप सुनेंगे तो एक बार फिर से पुरानी यादों में आप चले जाएंगे। आइए सुनते हैं।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: अब भैया हम तो नहीं गा सकते इतना ऊंचा, लेकिन मोहम्मद रफी साहब इतना ऊंचा गा लेते थे, क्या सुर लगाया उन्होंने पता है। मेरे से भी एक बार कहा गया ऊंचा सुर लगाइए, मैं तो ऊपर जा सबसे ऊपर छत पर खड़ा हो गया फिर सुर लगा रहा था। बोले भाई साहब सुर ऊपर लगाना, आपको ऊपर नहीं जाना है, कोई बात नहीं है, आप जानते हैं क्या सुनना है, सुनिए।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने।
0: तो भैया इस टाइम मशीन में हम वापस लौटते हैं, हैं, चलते हैं फिर से अपने उसी दौर में लौट आते हैं। लेकिन कहते हैं कि लेजेंडरी लेजेंडरी होते हैं, कोई सानी नहीं। फिल्म कौन सी थी? अमर अकबर एंथनी, 1977 में बनी थी, है ना, और मनमोहन देसाई साहब द्वारा निर्देशित यह फिल्म है। इसके किरदार जो मेन थे किरदार इसमें विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, शबाना आजमी, परवीन बॉबी, नेता सिंह। सोचिए क्या फिल्म थी भाई साहब, हमें तो अभी भी बसी हुई। और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने, आनंद बख्शी ने इसके गीत लिखे थे, और जो आपने सुना वो तो कहने ही क्या। लौट चले वापस अपने दौर में। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, एक और खूबसूरत सा मेहमान हमारे स्टूडियो में आ गया, प्यारी से आवाज लिए, अच्छे गीत, अच्छा माहौल, अच्छे लोग, दिन भी अच्छा बनेगा।

0: ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Yes, the Qawwali. It's actually a forgotten genre. We don't see it or we don't hear this kind of music in our films anymore. I wonder why. Anybody knows? Do let me know. We would love to know. And well, talking about that particular song, it was from the 1958 film, sorry, film Sadhna, and lighting up the screen with their presence were Vaidyathimala and Sunil Dutt, and voices of Mohammed Rafi and Balbir. And yes, I will be bringing more of these kind of songs later on in the show, but right now it's time for me to take a teeny weeny little break.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: Absolutely, always the number one, always the leader, always the pioneer. In just about 2 weeks from now, Akashvani is all set to celebrate its grand 90th birthday. So we can say that the countdown begins. Well, numbers wise, 90s is definitely grand, but life wise, we are still young at heart.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: The beautiful Nutan lighting up the screen and Asha Bhosle adding to the feel with her voice. From the 1963 film Dil Hi To Hai, that was another Qawwali, and M. Rajkumar from Trichy and Dolly both are loving the Qawwalis that we are playing out. Thank you very much for the appreciation. Time for me to take the last break, and of course, we still have some time to go.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अराध्य।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जाने, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जाने। तो आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय

0: जीवंत हो जाती हैं। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहां आते हैं, पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं, वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी घोड़ावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
1: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
3: नमस्कार श्रोता मित्रों।
2: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराती ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराती क्या है सर?
3: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और

0: वहीं पे अपना प्रजनन करते हैं, वहां पे एक एक पूरा जो है अंडा दे के बच्चे पैदा करके, और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखा मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं, तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो वाइट कलर की ड्रेस होती है, और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं, तो पूरा गुलाबी और वाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
1: ये तो बहुत खूबसूरत बात है। फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखा फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते हैं?
0: नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे, और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं, तो पूरे कंट्री से, पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां है, हैबिटेट ऐसा है, तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं, तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है, जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है, और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं, पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं। और गुजरात के अन्य भागों में भी ये, जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का छोटा जो रन है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं, और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है, वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं, एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कच्छ के भाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस, माइग्रेटरी बर्ड्स। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोस?
1: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहां पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
0: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो इनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
1: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवम्बर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
0: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
1: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है, तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
0: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था,
0: कच्छ के महाराव ने
2: जी, फिर महाराव खेंगा 3 इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर

0: 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जो मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
1: सबसे पहले तो श्रोता को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
0: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक एक्चुअली एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन। इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है। तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
1: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है। और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है।
0: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है एंड हाल में ये संख्या अंदाजित 3 से 4 लाख हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं।
1: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है।
0: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सौ प्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है। तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे, एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है, शैलो वाटर की वजह से क्या होता है एल्गे क्रस्टेशियंस डायटम्स और ये उनकी मेन खुराक बनती है फ्लेमिंगोस की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोस होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है। जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो अब देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो है साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताए फ्लेमिंगोस सुरखाब की संख्या, तो ये सुरखाब की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है।
2: जी, जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं, साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ

0: डॉक्टर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
1: श्रोताओ, फ्लेमिंगो सुरखाब के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
0: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
1: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: पोस्टबॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकल रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनकी भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
0: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोले शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या है आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है, तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाए और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
0: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगो के अंडा कम होते जा रहे थे,
2: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
0: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा साइड

0: के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को यह भी बताए कि यह कूड़ा एक ऐसा एरिया है जहां पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है
1: जी।
0: और इसे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंद का एक गीत भी आप बताइए।
1: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,

श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराते और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड़ के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह।

0: प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है और साथ ही मैं कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वह हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं कि जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है। और कुछ अन्य परिबल, बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है तो वो भी एक उसका कारण होता है।
0: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराट की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड़ है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहां पर जो मादा घोराड़ है तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन सी सावचेतियां रखनी पड़ती है?
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, इसको

0: बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट सीजेडए की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
1: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है, और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
0: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराड़ है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
1: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई। डॉक्टर जयपाल सिंह साथ में बताए थे कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: नहीं, इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था, और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है, अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्ड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्स सीटू भी चल रहा है। एक्स सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें, और कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है, जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एसओपी भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी है वो केवल फीमेल है तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती है, तो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे, पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास हैं वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह आपने बहुत अच्छी तरह से बताया जंप स्टार टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घोराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन से है?
2: जैसे कि मैंने

0: पहले बात क्या था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूस पैच जो घास के हुए वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं, उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं, उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाएं, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाएं उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड है, जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लेमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, तो साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए, जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में है, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं। वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारीडंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं।

117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: वेलकम बैक, दिस शो इज कॉल्ड प्ले इट कूल एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग ब्रदर्स डे। Once a brother, always a brother. No matter the distance, no matter the difference, and no matter the issue. Well, yes, human relationships are, of course, we are born with some and we make some. But differences do creep up. But irrespective of that, the bond always remains. And in case you have any issue with your brother and you have, you know, fallen out with each other, don't you think today is a brilliant day to catch up? Whatever happened or whatever will happen or whatever the issue is, I understand they are, they cannot be overlooked or they cannot be undermined, but still, that bond, those times you spent together, the understanding, the love, why not bring it back into the relationship? So just go pick up that phone, send a message or just probably a call and see if you can sort it out. And I'm receiving messages here. And yes, this is Vikram Jagdish Chandra from Ghaziabad. And he says, I think you're talking about siblings. Yes, brother and sister or brother and brother. Such a beautiful bond. And then the next message is from Simi Singh from Meerut. Oh, okay.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक, यू आर विद अस ऑन आकाशवाणी रेनबो एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ब्रदर्स डे ऑन द शो।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों

योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल्ली एनसीआर के आबोहवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीडीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों, इस घड़ी वक्त हुआ है 1:05 यानी कि जेठ की दोपहर जो है वो पूरी तरह से अपने शबाब पर है और ऐसे में कुछ ना कुछ कूल कूल होना चाहिए। तो प्ले इट कूल के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर हिंदी सॉन्ग्स और वो भी बिल्कुल प्ले इट कूल अंदाज में। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नक में सुनाता रहूं। ये शो है मेरा वाला सॉन्ग जहां पर हम बजाते हैं आपकी पसंद के गीत एकदम लाइव समय। मैं दिल्ली स्टूडियो में हूं और आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूं। हर वो गीत बजेगा जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया है तो रेडियो का रोमियो करता है वादा, जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज्यादा। जी हाँ, ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन, मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप दिल्ली दसवड़े रंगले मुंडे आरजे गोपाल के साथ। और जहां तक बात मुझ तक पहुंचने की है तो बिल्कुल मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगले एक घंटे व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल मेरा पर्सनल रहेगा और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर 9868107070 वो नंबर है जो आपको और हमको कनेक्ट करता है और आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है मुझ तक। तो बंदा हाजिर है जी आपकी खिदमत में और आपके पसंदीदा गीतों का मैं कर रहा हूं इंतजार। शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में इस ट्रैक का, इस ट्रैक से जिसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंची। शो शुरू होने से पहले लोग जो है उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया था। जयराम

सचिन अमन दीपांशु हैं, ये सुनना चाहते हैं आज से सारी गलियां तेरी मेरी हो गई पैडमैन फिल्म का ट्रैक। दोस्तों अगर आप भी इस ट्रैक को सुनना चाहते तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन लेट्स किक ऑफ द शो विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन। ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो, आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग रेडियो के मित्र आरजे गोपाल के साथ।

और आपका मुझ तक पहुंचना बहुत ही आसान है 9868107070। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। एकदम लाइव इस समय स्टूडियो में हूं मैं दोस्त, और आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूं। हालांकि इतने सारे मैसेजेस ऑलरेडी मेरे पास हैं कि आई एम कंफ्यूज कौन सा वाला गाना लिया जाए और कौन सा वाला गाना ना लिया जाए। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम एक ही तरह के जॉनर जो है उस तरह के ट्रैक्स बजाएं। एक बार जो मूड सेट किया उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। बहुत सारे सॉन्ग्स हमें बहुत ही पैपी म्यूज़िक की रिक्वेस्ट आती है, कभी कभी बहुत पुराने ट्रैक्स की रिक्वेस्ट आती है, कभी कभी तालमेल नहीं खाते ऐसे वाले सॉन्ग्स की भी रिक्वेस्ट आती है। तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम मैसेजेस ऑन एयर करें, लेकिन सॉन्ग्स ज़्यादा से ज़्यादा वो प्ले करें जो आप में से ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पुराने ट्रैक्स के आ रहे, तो आई विल रिक्वेस्ट अगेन कि इन दिस शो वी ट्राई टू प्ले सॉन्ग्स पोस्ट 90s और आई शुड से 90 ऑनवर्ड्स। तो आप उनमें से अगर कोई मुझे ट्रैक्स भेजेंगे तो मुझे बहुत बहुत आसान हो जाएगा उन्हें चुनना दोस्तों। इसके साथ साथ ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है फरुखाबाद से हर किरण सिंह जी का, और कह रहे हैं कि सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, ये गाना इन्हें सुनना है। बड़ा मुश्किल है ट्रस्ट मी, क्योंकि सूरज अभी भी इतना जल रहा है, बिल्कुल मध्यम नहीं हुआ है। और आई एम नॉट श्योर रियली सूट द वेदर विच इज़ देयर अक्रॉस द कंट्री एट दिस मोमेंट, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा। लेकिन येस, इफ आई गेट द मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर दिस सॉन्ग देन आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू प्ले दिस। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे पैडमैन आज से तेरी जो ट्रैक है वो अगर सुनना चाहते तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। शिवाजी नगर से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बीपी गौतम साहब हैं, सरिता गौतम जी हैं, ये यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। और ये है पवार फैमिली, थैंक्स कह रहे हैं, आई एम श्योर दिस इज फॉर मोनालिसा, बोले तो हिमानी के लिए, तो आई सर्टनली कन्वे दिस। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास भानु जी का है, और ये थ्री इडियट्स का ट्रैक सुनना चाहते हैं। चेतना है मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है, मोहरा फिल्म का ट्रैक ये सुनना चाहती हैं। कंचन हमारे साथ जुड़ी हैं सोनिया विहार से, लेट मी ट्राई इफ आई कैन रियली प्ले दिस ट्रैक फॉर यू सोनिया। इसके साथ साथ ये वाला मैसेज हमारे पास आया है विशाल और निशा का, गांधीनगर गुजरात से मिस्टर नटवरलाल का ट्रैक सुनना चाहते हैं। अंकित निलेश ये बिहार से हमारे साथ दोस्तों जुड़े हैं। डॉली बेबी पूजा अजय हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। ये मैसेज मेरे पास आया है मेरठ से मनोज जी का, गोपाल भाई प्लीज़ प्ले अ ट्रैक विच इज़ द ओल्ड वन, आई ट्राई एज आई सेड माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू द सॉन्ग्स जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और आई शुड से 90 ऑनवर्ड्स हैं। लेकिन मनोज भाई आपने मुझे भाई बोला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड वेरी हैप्पी ब्रदर्स डे टू यू एज वेल। इसके साथ साथ झारखंड से हमारे पास मैसेज है कल्पना का, मनोरमा का और मनमोहनी का, साथ में तुलसीदास जी भी हैं, सो थैंक यू सो मच इतने सारे मैसेजेस हमें भेजने के लिए। बहुत सारे मैसेजेस फाइनली मेरे पास पहुंचे हैं जहां पर लोग सुनना चाहते हैं ये वाला ट्रैक। एट द सेम मॉर्निंग टाइम पुनीत उत्तराखंड ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए आप सभी के लिए ये बेहतरीन वाला गाना अरिजीत सिंह साहब की आवाज़ में। इसी के साथ वो सभी लोग जो अरिजीत सिंह साहब की आवाज़ में कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं उनके लिए भी निकल चुका है ये वाला गाना। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, दिल्ली तो सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल आपके साथ है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, गुड आफ्टरनून, प्यारे पनाते नमस्कार आप सभी को। और आपको बता दूं कि घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:16, यानी आपकी हमारी भाषा में संडे दोपहर के 1:15 हो चुका है।

मेरा पिनकोड तो नहीं भैया, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका हो सकता है? बिल्कुल साहब, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। प्लीज डोंट शेयर इट विथ एनीवन एल्स, जस्ट किडिंग। दिस इज द नंबर जहां पर आप मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं। एक से दो के बीच की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ, मेरा वाला सॉन्ग आप सुन रहे हैं जहां पर आपकी पसंद के ट्रैक्स हम बजाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात, एक सवाल मेरे जहन में आता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं रेडियो पे मैं ट्राई करूंगा तो पता नहीं मेरा मैसेज एयर होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा वाला गाना कभी आरजे प्ले करेंगे या नहीं करेंगे? अगर ऐसा कुछ है ना तो आज अपने दोस्त को और सो कॉल्ड भाई को ट्राई करके देखिए। हैप्पी ब्रदर्स डे है जी, और ये भाई आपसे वादा करता है, ये ब्रदर आपसे वादा करता है कि आपका मैसेज अगर पहली बार मेरे पास पहुंच रहा है तो आई विल फिल्टर और आई विल आस्क, आई विल रिक्वेस्ट माय कंप्यूटर टू फिल्टर दोज मैसेजेस और उन्हें मैं जरूर एयर करूँ। आज ट्राई करके देखिए, रेडियो करोमियो करता है वादा, जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज़्यादा। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:22। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं और ब्रदर्स डे की बात हो रही है भाई, और लोग कह रहे हैं कि ब्रदर्स डे का जो गाना है वो कोई ना कोई प्ले होना चाहिए। तो प्लीज़

मुझे बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप। एक बड़े भैया है मेरे, इनका नाम पढ़ सकता हूँ, यस अंश करण जी हैं। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, मैं इनके डीपी से इनका नाम देख रहा हूँ, और इन्होंने मुझे 35 मैसेजेस एक साथ भेजे और उसमें लिखा है पागल बनावे प्लीज चला दीजिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फिगर इट आउट कि कौन से पागल बनावे की आप बात कर रहे हैं अंश भाई, प्लीज टेल मी। जेठ की दोपहरी में पांव जले, आई वाज आल्सो थिंकिंग टू स्टार्ट द शो विद दिस ट्रैक, फिर मुझे लगा कि लेट मी वेट फॉर मोर रिक्वेस्ट ऑन दिस, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर इस ट्रैक को प्ले करूंगा। मेरे भैया अनीता जी ने मुझे दिल्ली से मैसेज किया, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज, और इन्होंने हैप्पी ब्रदर्स डे कहा, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच फॉर लवली विशेज। और इन्होंने एक गाना सजेस्ट किया है जो हम ब्रदर्स डे पर चला सकते हैं, हम फिल्म का गाना, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। अगर आप इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज भेजिए 9868107070 पर, मैं आपका मैसेज तो एयर करूंगा ही करूंगा, और पब्लिक डिमांड पर बोले तो आपकी फरमाइश पर ये गाना भी मैं जरूर बजाऊंगा। आई वेट फॉर सम मोर टाइम दोस्तों। इसके साथ साथ डॉली है, कह रही है कि तुम्हारे सिवा जो सॉन्ग है इससे शुरुआत इन्हें पसंद आ रही है। एंड यस, देखिए हुक में आपका लोग सुनना चाहते हैं इस ट्रैक को बार बार, तो हम बजाते हैं। एंड यस, आई लव दिस ट्रैक एज वेल एट द सेम पॉइंट इन टाइम, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। गजल सुनना चाहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करते हैं, सूरज को थोड़ा सा और ढलने देते हैं तो गजल का मजा बहुत बेहतर रहेगा दोस्त। इसके साथ साथ जादू तेरी नजर, डर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। ये राहत है हमारे साथ नेहा और बिजनौर से, अगर मैं सही पढ़ पाया हूँ उस लोकेशन का नाम दोस्तों। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर जादू तेरी नज़र आप सुनना चाहते हैं डर मूवी से तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा। तनिष्क मुझे मैसेज लिख रहे हैं, दो बार हेलो हेलो किया है इन्होंने, आई एम श्योर इज यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, और लेट मी वेट फॉर सम मोर टाइम। अगर आप इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, हम फिल्म का ट्रैक, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड द सेम पॉइंट इन टाइम कोई और ट्रैक आप सुनना चाहते तो वो भी रिक्वेस्ट आप मुझे भेज सकते हैं। एकदम लाइव इस समय स्टूडियो में हूं, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूं मैं, एंड व्हेन आई से छोटा सा ब्रेक, ट्रस्ट मी आई मीन इट, एग्जैक्टली 60 सेकंड्स में वापस लौटूंगा मैं, सिर्फ एक मिनट का ब्रेक, इतना छोटा ब्रेक आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: And I'm back, 102.6 megahertz पर जो वादा हम करते हैं ना उसे जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया है तो आज रेडियो पर ट्राई करके देखिए, एक मैसेज मुझे भेज के देखिए। रेडियो का रोमियो करता है वादा, जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज़्यादा, मैं बार बार कहता हूँ। और जितने भी लोगों ने मुझे आजमाया ना, हमेशा खराब आया दोस्त। और ये मैसेज मैं यहाँ पर लूँगा तनिष का, ये गाना सुनना चाहते हैं, समथिंग विच आई रियली कांट प्ले, आई एम रियली सॉरी तनिष्क, मैं सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक यहाँ पर प्ले कर पाऊंगा। तो अगर वहाँ से कोई ट्रैक आपके जहन में है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। रेशमा है हमारे साथ और ये जुड़ी हैं अलीगढ़ से, सलीम जी भी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं और ये सुनना चाहते हैं जिस ट्रैक की हम बात कर रहे थे, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। सुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हैं शालीमार बाग से, थैंक यू सो मच। गुड्डू भाई हमारे साथ जुड़े हैं और ये भी सुनना चाहते हैं द सेम ट्रैक एक दूसरे से। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अंश नाउ गिविंग मी द हिंट कि ये जो पागल बनावे ट्रैक है वो कहाँ से ये मुझे रेफर कर रहे हैं, बट एज आई सेड आई विल बी एबल टू प्ले ओनली द फिल्म म्यूजिक। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप मुझे वही सॉन्ग्स दीजिए जो कि फिल्म म्यूजिक से हों, और स्पेशली अगर 90s के बाद हो या 90s

और उसके बाद के हूँ तो मैं उन्हें प्ले कर पाऊंगा। ये मैसेज मेरे पास है बोधराज, कमला और भानु का, और ये भी सुनना चाहते हैं, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। दानिया हमें नूरपुर बिजनौर से लिख रही हैं, हैप्पी ब्रदर्स डे कह रही हैं, थैंक यू सो मच। और दानिया, आई विल बी प्लेइंग द ट्रैक, फाइनली नाउ इट्स डिसाइडेड, एग्रीड कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, इस ट्रैक को मैं यहाँ पर बजाने वाला हूँ। रेलवे कॉलोनी से भी सिमिलर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है नीलम, स्वाति और किशु की, किशन जी के साथ। और फाइनली जैद जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों गाजियाबाद से, एंड ही इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर द सेम ट्रैक। एंड फाइनली द वन मोर, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, गन्नौर यूपी से हमारे साथ फारूक भाई, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान जो हैं जुड़े हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा अनुप्रास अलंकार है नाम में, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया एंड फैजी, बट अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए, आप सभी ने इस ट्रैक पर मोहर लगाई है, तो मैं इस ट्रैक को ज़रूर यहाँ पर प्ले करूँगा दोस्तों आपके लिए। साथ ही साथ कोमल है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और कह रहे हैं जादू तेरी नज़र सुना दीजिए। अगर आप भी सुनना चाहते हैं ट्रैक तो मुझे बताइए 9868107070 पर। बहरहाल सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण की आवाज़ में हम फिल्म का ये ट्रैक आप सभी के लिए, हैप्पी ब्रदर्स डे।

बिल्कुल जी, और हम भी आपके लिए बहुत ही बेकरार रहते हैं, आपके मैसेजेस के लिए बहुत ही बेकरार रहते हैं। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:33, यानी कि आपकी हमारी भाषा में जेठ की दोपहरी, संडे का दिन और 1:30 बज चुका है। मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप, मेरे यानी आपके मित्र, आपके बंधु, आपके सखा, आपके दोस्त आरजे गोपाल के साथ, जिसे सारा का सारा शहर दिल्ली से सोने रंगीले मुंडे आरजे गोपाल के नाम से जानता है दोस्तों। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंच रहे हैं। एंड फाइनली नाउ द रिक्वेस्ट, मूविंग अराउंड जादू तेरी नज़र, बजरंग भाई हैं, बजरंगी भाई जान हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं, और ये भी सुनना चाहते हैं जादू तेरी नज़र, डर फिल्म का ये ट्रैक। अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैसेज हमारे पास है मुकेश गौरव और गरिमा का, भिलाई छत्तीसगढ़ से। थैंक यू सो मच हमें मैसेज भेजने के लिए। और एके पांडे जी हमारे साथ पन्ना मध्य प्रदेश से, इन्होंने हमें मैसेज लिखा है, और एक दूसरे से करते हैं प्यार हम ये ट्रैक सुनना चाहते थे जो हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। खारगांव मध्य प्रदेश से हमारे पास मैसेज आया है, ये भी हम का ट्रैक सुनना चाहते थे, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ हैप्पी संडे कह रहे हैं, नाम नहीं लिखा, सिर्फ हैप्पी संडे बोल के लिखा है, तो आपको भी हैप्पी संडे, हैप्पी जेठ का महीना, हैप्पी गर्मी, हैप्पी ब्रदर्स डे मेरे दोस्त। नूरबी खान हमारे साथ जुड़ी हैं खीरी उत्तर प्रदेश से, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, और शुभ दोपहर ये कह रहे हैं, क्या बात, आपको भी शुभ अपराहन। और गुरु रंधावा की आवाज़ में कोई ट्रैक ये सुनना चाहते हैं, तो अगर आप भी गुरु रंधावा की आवाज़ में कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं या फिर जादू तेरी नज़र सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। I'll try to play, you know, both of these track one after another. लेकिन depend करता है कि आप में से कितने लोग इसे सुनना चाहते हैं। Otherwise, I'll have to shift the request somewhere else. तो दो songs की यहाँ पर request में आपको बता रहा हूँ, choice में आपको बता रहा हूँ। पहला है जादू तेरी नजर, डर फिल्म का ये track दोस्तों, और दूसरा है गुरु रंधावा की आवाज़ में कोई ट्रैक अगर आप सुनना चाहते हैं तो। मैं एक बहुत ही छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जा रहा हूँ और उसके बाद वापस लौटूंगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है उन्हें मैं एयर करूँगा। बस आप कहीं जाएगा नहीं, रेडी किसी बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, क्योंकि जब हम छोटे एड ब्रेक्स बोलते हैं ना तो वी मीन इट, सिर्फ 90 सेकेंड्स बोले तो 1.5 मिनट में वापस लौट रहा हूँ मैं, एंड आई प्रॉमिस दैट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: इसी के साथ मेरे पूरे 90 सेकंड जो यहां पर पूरे हो चुके हैं दोस्तों, और जैसा आपसे कमिट किया था

वापस लौट चुका हूँ मैं। 102.6 MHz ये मैजिकल फ्रिक्वेंसी है, आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो सुन रहे हैं आप। शो है मेरा वाला सॉन्ग, जहाँ पर हम बजाते हैं आप ही की पसंद के ट्रैक्स। 9868107070 नंबर है जिसके द्वारा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एकदम लाइव इस समय स्टूडियो में बैठकर मैं आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रैक्स बजाऊं जो आप में से ज़्यादा लिसनर्स को पसंद आए। हालांकि जो रिक्वेस्ट है, जो चॉइस है, इज कमिंग फ्रॉम द मैसेजेस जो मुझे मेरी स्क्रीन पर इस समय नज़र आ रहे हैं। आदर्श कुमार जी हैं भाई साहब, ये जुड़े हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। More than 57 मैसेजेस ये मुझे भेज चुके हैं। ओह माय गुडनेस, मेरा सिस्टम जाम हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दीजिए मेरे भाई। इसके साथ साथ ये वाला और ये हालांकि सुनना चाहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ आदर्श जी की, ये जादू तेरी नज़र सुनना चाहते हैं और इतनी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि आई हैव टू प्ले दिस ट्रैक, नो अदर चॉइस, सो आई प्रॉमिस। छैया छैया सुनना चाहते हैं खारगांव से दोस्तों। ये मैसेज मेरे पास मीना जी का आया है, आदाब मुझे भेजा है, थैंक यू सो मच। ये झारखंड से हमारे पास गिरडीह से ये मैसेज आया है, यासिन भाई का, साइमा है, हसन है, इसके साथ साथ बेबी चाहत और सादिया हैं। थैंक यू सो मच हमें ये मैसेज भेजने के लिए। और प्यार भरा नमस्कार अभिजीत, सरिता, सिद्धांत, एकांश हमें ये मैसेज भेज रहे हैं उमरखेड़ महाराष्ट्र से। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो दोस्तों, हिंदुस्तान पूरा एक नज़र आता है। मैं नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट इंडिया, हर एक जगह से जो मैसेजेस हमारे पास पहुंचते हैं एंड मेनी ऑफ द टाइम्स इवन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो डिजिटल इंडिया मोबाइल ऐप के थ्रू हमें सुनते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई रियली रियली रियली लव। ये मैसेज मेरे पास इस समय ऑस्ट्रेलिया से आया है और दिल दे चुके सनम का एक गाना सुनना चाहती हैं। जोया है मेलबॉर्न से, रहने में मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच, आई एम रियली रियली थैंकफुल आप इतनी दूर से हमें इस समय सुन रहे हैं। और मैं ज़रूर कोशिश करूंगा जोया कि हम आपको निराश ना करें। आई श्योरली ट्राई टू प्ले दिस ट्रैक, जस्ट बी विद मी फॉर सम मोर टाइम। ये मैसेज हमारे पास है सैफी भाई का, अमरोहा से इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। इसके साथ साथ मेरठ से हमारे पास मैसेज दिग्दर्शन और कविता जी का है और ये मैसेज हमारे पास लाल सिंह जी का है, लोक रंग इन्होंने कहा। और इनके साथ साथ मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू, साथ ही साथ राजेश, प्रीति और कार्तिक आर्यन भी हमारे साथ जुड़े हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। थैंक यू सो मच इतने सारे मैसेजेस हमें भेजने के लिए दोस्तों। यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ डर फिल्म से ट्रैक आप सभी के लिए और साथ ही साथ आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ रिक्वेस्ट कि आप गुरु रंधावा का कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं या फिर हम दिल दे चुके सनम का ट्रैक जो है झोंका हवा का, मुझे ज़रूर बताइए। दोनों में से जो भी ट्रैक आप सुनना चाहते हैं उसके रिक्वेस्ट मुझे भेजिए। दिस इज़ द पोल, जो ज़्यादा वोट्स पाएगा वो गीत ऑन एयर जाएगा मेरे साथ। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:40 मिनट।

और मैं हूँ आपका गोपाल जी। हाँ, दिल दा सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल आपके साथ जुड़ा हुआ है लेकर आप ही की पसंद के गीत। बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में, एकदम लाइव हूँ स्टूडियो में। और अब तो मौज भी आ चुकी है स्टूडियो में। आई एम नॉट श्योर विल पीपल अंडरस्टैंड दैट और नॉट। मैं बोल रहा था कि हिना मौज है वो स्टूडियो में आ चुकी है और लगभग 15 मिनट का समय मेरे पास अभी और बाकी है और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पर एंटरटेन कर सकूँ। दोस्तों, झारखंड से हमें मैसेज अंकित ने भेजा हैप्पी ब्रदर्स डे, तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। और टेबल नंबर 21 का गाना सुनना चाहते हैं, लेट मी ट्राई। आई रियली नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रॉमिस एट दिस मोमेंट बिकॉज नाउ आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द शो, लेकिन पूरी कोशिश होगी मेरी तरफ से दोस्त। इसके साथ साथ राधे श्याम, इंद्रा, सचिन, नंदिनी हमारे साथ जुड़ी हैं सिरसा से। झोंका हवा का इस FM रेनबो करंट प्रोग्राम कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये लाइव शो है, तो बिल्कुल ये लाइव शो है। अब्दुल्ला बिन मुनस्सर साहब हमें ये मैसेज लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और ये हमारे साथ हसनपुर रामपुर यूपी से जुड़े हैं मनमोहन सिंह जी और मल्टीपल सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी है। बहुत सारे लोग मुझे वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टिकर्स भेज रहे हैं। समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू रियली एंटरटेन ऑल दैट, बट थैंक यू सो मच। शान हमारे साथ है, साथ ही साथ आनंद जी हैं टोंक राजस्थान से, प्लीज प्ले झोंका हवा का। इसके साथ साथ राजेश भल्ला जी हैं, कह रहे हैं झोंका हवा का। मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस और ये भी कह रहे हैं झोंका हवा का। ये हमारे साथ हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से नीलेश सैनी और ये भी सुनना चाहते हैं हम दिल दे चुके सनम का ट्रैक। और साथ ही साथ ये मैसेज हमारे पास है राजेश, प्रीति और कार्तिक का यूपी से और ये भी सुनना चाहते हैं झोंका हवा का। हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, बेहतरीन अदाकारी ऐश्वर्या रॉय और सलमान खान, हम दिल दे चुके सनम। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:47 यानी आपकी हमारी भाषा में संडे दोपहर के 1:45 हो चुके हैं, निकल चुका है ये बेहतरीन गाना आपके लिए और उसके उस पार कुछ और मैसेजेस जिसका मैं कर रहा हूँ इंतजार। एंड एज आई सेड अर्लियर, अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया है तो आज ट्राई करके देखिए। ब्रदर्स डे पर ये भाई आपसे वादा करता है जरूर आपका मैसेज ऑन एयर करूंगा। आई रिक्वेस्ट माई कंप्यूटर स्क्रीन टू फिल्टर दोज मैसेजेस और

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। अभी भी कुछ पल बाकी हैं और आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपने कभी भी रेडियो पे ट्राई नहीं किया है तो। बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है। एक मैसेज पहुंचा मेरे पास कि भैया वो ट्रैक लगा दीजिए, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। और जब मैं इसको रिवर्स करके सोच रहा था कौन सा गाना है तो मुझे पता लगा ये वही गाना है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। अलग अलग अंदाज में मेरे पास अलग अलग तरह से रिक्वेस्ट पहुँचती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। ये डाली का था हमारे पास। और ये मैसेज हमारे पास आया है, ये है प्लीज प्ले हवा का झोंका, जो हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं आनंद जी, थैंक यू सो मच। महावीश सैफी साहब हमारे साथ हैं, अंदाज फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। रेडियो के साथ ही उठता हूं मैं। रवि, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द जी हैं, ये बहुत सारे नाम हैं। इनमें से कौन है जो रेडियो के साथ उठते हैं वो मुझे स्पेसिफिकली बताए, बिकॉज एवरी वन इज यू नो रेडियो के साथ उठ रहे हैं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है। ये वाला मैसेज मेरे पास बहुत बहुत बहुत समटाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट, इतने सारे मैसेजेस एक साथ आप लगातार सेम मैसेज को प्ले वापस रिपीट करते जाते हैं ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पूनम दिल्ली से कच्चे धागे सुनना चाहती है और बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अरिजीत सिंह साहब के एक और ट्रैक की, और कुछ सुनना चाहते हैं सुष्मिता सेन का ट्रैक। तो मैं यहाँ पर दो ट्रैक्स आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। पहला है मुस्कुराने की वजह तुम हो, सेटेलाइट्स जो मूवी है उसका ये ट्रैक है दोस्तों। और एक सुष्मिता सेन की पहली मूवी दस्तक का गाना जादू भरी आंखों वाली, उदित नारायण की आवाज़ में। इन दोनों में से कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइए। दिस विल बी द लास्ट सॉन्ग ऑफ द शो फॉर श्योर। और मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जल्दी से बताइए क्योंकि मैं जल्दी से एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूँ, और ब्रेक के उस पर I'll take this final request of the day. Kagaz

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: बिल्कुल जी, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए। मेरे जाने का वक्त भले ही आ चुका हो, लेकिन मैंने कहा ना कि मौज जो है वो स्टूडियो में आ चुके है, बोले तो हिना स्टूडियो में आ चुके है। वेरी गुड आफ्टरनून हिना।
3: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू। और आज आशियाना में जैसे कि सबको पता है कि छोटे उस्ताद यानी छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड हम बात करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।
2: बिल्कुल जी, और पूरी मौज जो है वो स्टूडियो में रहेगी, पूरी तरह से आप एंजॉय करते रहिए हमारे साथ। मैं अभी के लिए आपसे अनुमति लूंगा, जो फाइनली रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, वहां पर चुनाव जीता है जादू भरी उदित नारायण जी की आवाज में, और ये जो हमारे पास

एक्सप्रेस पहुंची है दोस्तों। ये हेमलता जी हैं जिन्होंने श्री गंगानगर राजस्थान से, इंदौर से ध्रुव ने हमें ये मैसेज लिखा है, नूबी खान ने हमें मैसेज भेजा है, साथ ही साथ टोंक राजस्थान से आनंद ने, प्रकाश ने हमें भेजा है ये मैसेज, दिल्ली से अंकित कुमार ने झारखंड देवघर से हमें मैसेज भेजा है, डॉली ने रिक्वेस्ट किया है फॉर द सेम रिक्वेस्ट दस्तक जो है इस मैसेज, ये मैसेज चेतन कुमार जी का हमारे पास आया दोस्तों। और साथ ही साथ फाइनली द फाइनल मैसेज ऑफ द डे किशन जी है जिन्होंने हमें आनंद विहार से मैसेज लिखा है और सभी ने रिक्वेस्ट किया है जादू भरी आंखों वाली। तो निकल चुका है आपके लिए ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रेनबो की सतरंगी दुनिया में कुछ और सतरंगी सपनों को बुनता हुआ। फिर मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए बस यूं ही चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और दिल में हिंदुस्तान बनाए रखिए। शुभ दिवस, नमस्कार, जय हिंद।

दो बजकर एक मिनट 41 सेकेंड हिना मौज जैसे कि वादा किया था आ गई हूँ प्रोग्राम आशियाना लेकर आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। आज हम बात करेंगे किसकी किसकी किसकी छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों की, क्योंकि है प्रोग्राम आज आशियाना में छोटे उस्ताद। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर 102.6 पर। ये सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमारा, और आज बच्चों से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम करेंगे, उन हुनर जो बच्चों के अंदर होता है उनसे रिलेटेड बात करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बचपन में आती हैं लेकिन गौर दिए बगैर हम आगे बढ़ जाते हैं या हमारे बड़े उन पर गौर नहीं देते, उन सब से रिलेटेड आज हम बात करेंगे आशियाना में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए, प्यारा सा ट्रैक आपके लिए।

बजकर 5:30। नमस्कार एक बार फिर दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे बच्चों की जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, यानी के नन्हे कलाकार बड़े हुनर। जिनकी उम्र भले ही कम होती है दोस्तों, लेकिन उनके हुनर दुनिया को हैरान कर देते हैं। दोस्तों हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई ना कोई खास प्रतिभा लेकर पैदा होता है। किसी को गाना पसंद होता है, कोई शानदार पेंटिंग बनाता है, तो कोई नृत्य में सुगढ़ होता है, कोई कविता लिखता है। अभिनय और खेल से रिलेटेड भी बहुत बच्चे हैं जो कमाल करते हैं, लेकिन उनके कमाल को किस तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं या फिर उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर आज बात होगी। प्रोग्राम आशियाना में, बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर।

बिल्कुल सही बात है कि जब चल पड़ी तो अपनी ये नाव है, और चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं दोस्तों। और अगर बचपन की बात की जाए तो इस वक्त के बच्चों के लिए कहना गलत ना होगा कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। जी हाँ, आजकल के बच्चे पहले के बच्चों के मुकाबले में वाकई बहुत समझदार, कहना ज्यादा सही होगा, हैं। लेकिन अगर बचपन का वक्त याद किया जाए तो बचपन वो समय होता है दोस्तों जब कल्पनाएं खुलकर उड़ान भरती हैं। एक छोटा बच्चा जब पहली बार रंगों से खेलता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो रंग उसे अट्रैक्ट करते हैं, और जब सुरों में गुनगुनाता है या फिर मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है, तब उसके अंदर छुपा कलाकार दुनिया के सामने आने लगता है। लेकिन लेकिन लेकिन अगर उस वक्त पर उसे भरोसा ना दिलाया जाए, उसका साथ ना दिया जाए, या फिर उसकी प्रतिभा को ना पहचाना जाए, तब क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

AIR at 90. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर।

0: 2 बजे रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: FM रेनबो पर हैं आप और सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना हिना मौज के साथ। आज बात हो रही है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की, जिनके अंदर प्रतिभाएं जो हैं वो भरी पड़ी हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए आंखों की ज़रूरत होती है, जो कि उनके घर वालों के अंदर होनी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, हर बच्चे के अंदर एक ऐसी प्रतिभा छुपी होती है जिसको पहचानना और उसे सही दिशा देना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही अवसर या प्रोत्साहन नहीं मिल पाता घर से। माता पिता और शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के हुनर को समझें, उनकी रुचियों को महत्व दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो छोटे उस्ताद में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उन छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभाओं के बारे में, उनके अंदर छुपी हुई कलाओं के बारे में, जिनको पहचान कर अपने ही घर में आपने सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनका साथ देना है, ताकि वो बड़े होकर एक अच्छी फील्ड में जा सकें और अपनी प्रतिभा को निखार कर किसी लायक बन सकें और अपना नाम बना सकें। क्योंकि इनबिल्ट बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाले की तरफ से एक इंसान के अंदर होती हैं, उनको पहचान लेना और उनको पहचान कर संवार लेना, यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारे छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी है जिसको हमें पूरा करना है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए प्रोग्राम आशियाना मेरे यानी हिना मौज के साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, यही जिद चाहिए होती है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए और कुछ भी हासिल करने के लिए। 2:28 और 48 सेकेंड हुए हैं। आशियाना प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हिना मौज के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों, बात चल रही है उन बच्चों की जिनके अंदर बहुत सारे हुनर छुपे होते हैं और उन हुनरों को देखना, उनको सराहना हमारी जिम्मेदारी है। और आज के समय की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चे संगीत, डांस, पेंटिंग, विज्ञान, खेल और तकनीक के क्षेत्र में बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं। कोई बच्चा अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत रहा है तो कोई अपनी कला से समाज को नई सोच दे रहा है। दोस्तों, हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता, ये तो बात बिल्कुल साबित हो चुकी है। और अगर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास साथ हो तो नन्हे कदम भी बड़ी मंजिलें तय कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि बच्चों की कला में मासूमियत होती है, एक सच्चाई होती है जो सीधे दिल को छू जाती है। हम अगर बच्चे के सपनों को सम्मान दें और उनकी कोशिशों को सराहें तो आज के ये नन्हे कलाकार ही कल के बड़े सितारे बनने की पूरी कुव्वत रखते हैं। इनका साथ देना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि ये हैं कल के सुरमा।

आज हम बात कर रहे हैं आशियाना प्रोग्राम में उन छोटे बच्चों की, उन छोटे उस्तादों की जिनके अंदर प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं, लेकिन जब बात आती है बड़ों की तो बड़ों की अक्सर ये कमियां देखी जाती हैं कि बड़े अपनी पसंद जो है वो बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं, अपनी रुचियां उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और अपने आप जो नहीं बन सके वो उनको बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी प्रतिभा को पहचानें, उनके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है उसे सही दिशा देने की कोशिश करें। लेकिन अक्सर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा वही बने जो वो चाहते हैं, लेकिन हर बच्चे की सोच और क्षमता अलग होती है, ये पहचानना, ये जानना हम जरूरी नहीं समझते। बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहने की कोशिश होती है हमारी, होनी चाहिए, और उनकी तारीफ छोटी छोटी बातों पे करेंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको छोटी छोटी बातों पे टोकें और उनको प्रोत्साहित करने की बजाय हताश करने की कोशिश में रहें कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। हालांकि बच्चा खुद बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या बेहतर कर सकता है, उसकी रुचि किस चीज़ में है। बच्चों को सीखने और गलतियाँ करने की आज़ादी भी कम ही माता पिता दिया करते हैं, उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और बहुत ज्यादा बोझ डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि गलतियों से ही उन्हें अनुभव सीखते हैं बच्चे, और अनुभव मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें उनकी सुधरती भी हैं। तो गलतियां करने की आज़ादी हर बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है। हर समय डांटना या किसी और से तुलना करना मनोबल को उनके कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, आज की डिजिटल युग की अगर बात की जाए, डिजिटल दौर में बच्चों को केवल मोबाइल तक सीमित ना रखें। हमेशा कोशिश कीजिए कि मोबाइल में बच्चे वो चीज़ें देखें, इस पर स्ट्रिक्टनेस करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो फजूल की होती हैं, जिनसे सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद होता है और जहन जो है, दिमाग जो है वो भर जाता है, और पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए उनके पास दिमाग में, दिल में ताकत नहीं बचती। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं और मोबाइल में किन चीज़ों पर बच्चे जाकर किन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, इन पर आपका गौर देना और सख्ती करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मोबाइल से और डिजिटल अपनी जो चीज़ें हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। आज के डिजिटल युग की देन अगर कही जाए तो आसानी से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। खेल प्रतिभाएं अगर आपके अंदर हैं तो खेलों से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें उस पर पढ़ सकते हैं। एनसीसी में अगर बच्चों को इंटरेस्ट है तो एनसीसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा बहुत सारी और भी बहुत सारी रील्स वगैरह ऐसी आती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ फजूल की चीज़ें होती हैं, तो उन पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चों को खेल, किताबें, संगीत, कला या रचनात्मक गतिविधियों का शौक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से बच्चे जुड़ें ताकि कुछ और अच्छा सीख सकें। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ जो दोस्ती होती है उनकी स्कूल में या आसपास मोहल्ले में, या फिर अगर आप कहें आजकल बच्चे जब 10th 12th में होते हैं तो वो कोचिंग वगैरह जाते हैं तो बड़ी दोस्तियां हो जाती हैं, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश

कीजिए कि बच्चों के साथ जिनकी दोस्तियां हैं वो बच्चे अच्छे सही होने चाहिए ताकि आपके बच्चों पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, और दोस्त ऐसे हों जो दोस्ती जिंदगी भर निभाएं। ऐसे दोस्तों को तलाशने में हालांकि बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो समझदार होता है और अपनी समझ से बहुत अच्छी चीज़ें ही तलाशता है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों पर माँ बाप की नज़र होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दोस्त दोस्त है और दोस्त के साथ गुजारा हुआ वक्त हर बच्चा, हर बड़ा, हर तरीके की उम्र का इंसान पसंद करता है।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

9:46 हिना मौज के साथ हैं आप और सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, जिसमें हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, उन बच्चों की जिनके अंदर बहुत सारी कला कूट कूट कर भरी हुई है। दोस्तों, बात कर रहे थे हम माता पिता से रिलेटेड और बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास से मुतालिक। अगर हम खेल, किताबें, संगीत, कला जैसी चीज़ों को बच्चों की ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो बेहतर हो सकता है। साथ ही बच्चों के साथ समय बिताना माँ बाप का बहुत ज़रूरी होता है। जब माता पिता बच्चों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं तो बच्चे खुलकर अपनी भावनाएँ और अपना सुख दुख हर तरीके की चीज़ें जो है वो साझा करते हैं। हालांकि इस उम्र के बच्चे जो 9th, 10th, 12th में होते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर माँ बाप की डांट फटकार की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में होने वाली चेंजेस को छुपाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चों के दोस्त बनकर रहिए और बच्चों के साथ समय बिताइए, उनके दिल की बातें जानने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पता चल सके कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है और उनके अंदर क्या पनप रहा है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

2:55 आप सब लोगों को इस खूबसूरत से प्रोग्राम में अलविदा कहने का वक्त आ चला। बस इस प्रोग्राम में चलते चलते आपसे यही कहूंगी कि हर बच्चा एक चमकता हुआ सितारा है दोस्तों, जरूरत है बस प्यार, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन की। और जहाँ तक बच्चों की बात है, अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने का उन्हें मौका दीजिए और अपने सपनों की उड़ान वो जितनी भर सकते हैं उनका साथ दीजिए। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे मिलूंगी अल्फा जैन में। सवालों के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि आज है रेनबो जीनियस। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन आती हूँ 4 से 5 में अल्फा जैन लेकर ये आखिरी ट्रैक आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: ये जितनी भी उबासियां आ रही है ना, इन्हें आप जरा बंद कर दीजिए, क्योंकि अब समय है पूरा आपका ध्यान यहाँ लगाने पर। यहाँ मतलब आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपके साथ हूँ मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, और मेरे साथ आज जो हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। जी दोस्तों, मेरे साथ हैं वो जो पिछले 14-15 साल से इस लाइन पर काम कर रहे हैं, श्री योगेश कुमार जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं।
3: हेलो, नमस्कार।
2: फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा श्री योगेश कुमार जी से, जिन्हें आपको पता है किताबें पढ़ने का बेहद शौक है और साथ ही बहुत अच्छे योगा थेरेपिस्ट भी हैं। उस बारे में भी हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया और योगा का क्या कनेक्शन हो सकता है। पर फिलहाल सबसे पहला सवाल योगेश जी कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है?
3: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से बिल्कुल संबंध टूट जाता है।
2: जी,
3: वो उन सब बातों पे ज्यादा विश्वास करता है जो बिल्कुल सच नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, और उनको जितना ही समझाने की कोशिश करो, उनका ये फर्म बिलीफ रहता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। वो दूसरे की जो बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, और इसमें कई प्रकार के उसे भ्रम रहते हैं जिसे डिल्यूजन्स कहते हैं, और डिल्यूजन्स के साथ हैलुसिनेशंस भी रहते हैं। डिल्यूजन्स ये रहता है कि कहीं कोई उसको प्लॉट तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कभी उनको आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तरह तरह की कमांड सुनाई देने लगते हैं, और उनका जो व्यवहार है और जो एक्शंस है वो जो आवाजें सुनते हैं उसके अनुसार उनका पालन करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है।
2: इतनी जबरदस्त स्ट्रांग होती है कि वो उसको जीने लगते हैं।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और उनके सोचने समझने के व्यवहार करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। और स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में रियलिटी से बिल्कुल संबंध टूट जाता है। वास्तविकता में जीवन कैसा है, स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ क्या है, उनका बिल्कुल आभास नहीं होता है व्यक्ति को, और वो अपनी काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर देता है।
2: योगेश जी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपने कहा एक भ्रमित जीवन

0: कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरा होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो होती हैं इनका कोई ऑर्गेनिक रिलेशंस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनिक डिसीज जो है इसके पीछे नहीं होती है। ये एंजाइटी, डिप्रेशंस और स्ट्रेस से भी ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर हो सकते हैं। और न्यूरोसिस डिसऑर्डर थोड़े माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो साइकोटिक डिसऑर्डर हैं वो बड़े प्रोफाउंड होते हैं, बड़े सीवियर होते हैं, और इनका इसमें व्यक्ति का रियलिटी से बिल्कुल टच चला जाता है। अब जैसे सिजोफीनिया है, साइकोटिक की कंडीशन उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। डिल्यूजन डिसऑर्डर है, साइकोटिक की कैटेगरी में आता है। और पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशंस है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे न्यूरोसिस कैटेगरी में आते हैं।
1: तो दोस्तों आपने जाना कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो क्या चीज है, एक भ्रमित जीवन है। इसके बारे में अब हम और तफसील से बात करेंगे हमारे योगेश कुमार जी से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित है हमारे और आपके हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए। तब तक मैं इनसे अपना प्रोग्राम डिस्कस करती हूँ, आप सुनिए ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगी आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। मेरे साथ है साइकोलॉजिस्ट श्री योगेश कुमार जी। आप पिछले 14-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने योगेश जी ये बताया कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये एक भ्रमित जीवन है
1: जी।
0: आदमी अपनी कल्पना में जीता है, तो क्या सिम्टम्स हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
1: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स।
0: इस पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं?
1: जी जी, पॉजिटिव सिम्टम्स का हम

0: यहाँ वो सकारात्मक एटीट्यूड वाला पॉजिटिव नहीं लेते हैं.
1: ओके.
0: यहाँ पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है कि पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्रीज द नॉर्मल फंक्शनिंग. जो व्यक्ति की नॉर्मल फंक्शनिंग है, दिनचर्या है, वो एक्टिविटीज नॉर्मल सिम्टम्स में बढ़ जाती हैं. जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं तो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी और जो नॉर्मल जो एनर्जी है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है.
1: ओके.
0: तो इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स में सबसे पहले आते हैं हमारे डिल्यूजन्स आते हैं, हैलुसिनेशंस आता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच आती है एंड डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर आता है.
1: डिसऑर्गेनाइज स्पीच का क्या अर्थ हुआ?
0: देखिए, हम अगर श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम शुरू से हम लेके चलते हैं, पहले हम डिलीजेंस को लेके चलते हैं, भ्रम को लेके चलते हैं, फिर हैलुसिनेशंस को लेके चलते हैं, उसके बाद में डिसऑर्गेनाइज स्पीच और बिहेवियर की बात करेंगे.
1: जरूर.
0: तो सबसे पहले डिलीजेंस हम देख लें कि इसमें स्पेसिफिकली 4 टाइप्स के डिलीजेंस होते हैं सिजोफ्रेनिया में. तो सबसे पहले होता है डिलीजन ऑफ रेफरेंस. तो ऐसे व्यक्ति को लगा रहता है कि वो जो है, जो भी व्यक्ति बात कर रहा है उसके बारे में ही बात कर रहा है. अगर ऑफिस में वो जाता है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो उसे ऐसा महसूस होगा कि उसके बारे में ही बात कर रहे हैं.
1: तो ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस हुआ.
0: हाँ, और कभी कभी तो जो सॉन्ग के जो लिरिक्स होते हैं, गानों के लिरिक्स होते हैं, वो भी अपने को पॉइंट आउट कर लेता है कि ये मेरे बारे में गाना गाया जा रहा है, ये मेरे संदर्भ में गाना गाया जा रहा है. और कोई बुक का पैसेज भी होता है, वो भी ये अपने आप में मान लेता है ये मेरे संदर्भ में लिखा गया है.
1: माई गॉड.
0: तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति हो सकती है,
1: कितनी दुविधा है और कितने तकलीफ में है वो.
0: जी. एक फिर आता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल.
1: जी.
0: डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में आदमी को ऐसा लगता है कि उसके फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं है. उसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास है. कुछ कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. उसका कोई पड़ोसी कंट्रोल कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल कर रही है.
1: जैसे अगर किसी स्थिति में गुस्सा बहुत तेज हो तो वो क्या कहेंगे कि ये मैं नहीं, ये उनकी वजह से.
0: जी जी. कोई भी वो ये उसे बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि मैं अब अपने कंट्रोल में नहीं हूं. और मेरा, जैसे एक हिंदी में वर्ड होता है सम्मोहन करना, वशीकरण करना, कि मेरा वशीकरण कर लिया गया है, सम्मोहन हो रहा है मेरे पे. तो ऐसा उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है. फिर होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस. परसिक्यूशंस में क्या होता है, अगर उसकी वाइफ किसी से बात कर रही है तो उसे ऐसा लगेगा कि भाई ये दोनों जो हैं आपस में प्यार करते हैं और ये प्लॉट तैयार कर रहे हैं और ये मुझे जो है मारने की कोशिश करना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं. उसे हमेशा ऐसे लगता है कि कोई पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और कोई मिलकर जो है सारे साजिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ अगर वो कहीं काम कर रहा है. और इवन उसे फैमिली मेंबर्स पे ऐसा शक होता है कि वो सब उसका फैमिली मेंबर्स मर्डर करना चाहते हैं. तो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है.
1: तो ये जो शक करने की, कई बार हम सोचते कि ये तो आदत है, तो वो आदत नहीं है, कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया वहाँ मौजूद है.
0: ऐसी कोई आदत अपने आप कल्टिवेट नहीं हो रही है. हमें बहुत ही सावधान रहना होगा कि कहीं स्किज़ोफ्रेनिया के ये सिम्टम्स तो नहीं है.
1: जी जी जी.
0: और एक होता है हमारा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में क्या होता है कि आदमी को ये महसूस होने लगता है कि वो तो ऑलमाइटी है, वो गॉड है, उसमें सुपर पावर है. और यहाँ तक प्रतीत होने लगता है कि मैं कोई नोबेल पुरस्कार जीत सकता हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ. ऐसी ऐसी वो कल्पनाओं में खोया रहता है. फिर हमारा आता है हैलुसिनेशन. तो सिजोफ्रेनिया में जो सबसे मुख्य होते हैं वो ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं. ऐसे में व्यक्ति को आवाजें सुनाई देती हैं, साउंड सुनाई देते हैं, वॉइस सुनाई देते हैं. इवन उसे ऐसा भी प्रतीत होता है वो डायरेक्ट किसी से बात कर रहा है.
1: ओ, चाहे वो फिगर नहीं दिख रही हो लेकिन ऐसा कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि जैसे कोई सामने खड़ा है और वो बराबर उनसे बातचीत कर रहा है.
0: जी.
1: प्रॉपर जवाबों के सवाल वो दे रहे हैं और सवालों के जवाब उनको मिल रहे हैं.
0: जी जी. इस पे एक मूवी भी आई है, उसमें तमन्ना भाटिया जी भी हैं. तो उसमें यही दिखाया गया है कि उस ये बुराड़ी की घटना पे बनाई गई है, जो दिल्ली में 10 लोगों ने एक साथ जो आत्महत्या की थी. और उसमें यही था कि वो ये सोचते थे कि उनके पिताजी मुझे कमांड दे रहे हैं और उन्होंने ही मुझे ये इंस्पायर किया है. जो उस पे जो भी उन्होंने कार्रवाई की है, जो भी रिसर्च की है,
1: जी
0: इस इंसिडेंट पे जो भी पुलिस के द्वारा रिसर्च की गई है, तो उसमें यही पाया गया है कि वो ये उनका ये मानना है.

0: कि उनके जो बच्चे थे वो ये उनको प्रतीत होता था कि उनके पिताजी ये कमांड दे रहे हैं
1: और एक को नहीं, मतलब जो दोनों तीन जो भी बड़े लोग थे उन सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था।
0: जी जी, ये बुराड़ी की घटना थी नहीं, सुनता एक ही व्यक्ति था पर फॉलो दूसरे भी कर रहे थे उसे।
1: तो ये ऐसा ही एक सवाल हमारे पास आया था सागर का, विजयपुरा कर्नाटका से, कि वो 24 वर्षीय हैं और उनके दो सवाल थे कि एक तो सिम्टम्स क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया।
0: जी, हमने जैसे सिम्टम्स बताए, पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारी बात चल रही है
1: जी।
0: तो हैलुसिनेशंस में हमें ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के बारे में बताया, फिर एक आता है सोमैटिक हैलुसिनेशंस भी होता है जिसमें आदमी को ये प्रतीत होता रहता है कि उसके सर पे कोई इंसेक्ट तो नहीं रेंग रहा, उसके शरीर पे कोई इंसेक्ट तो नहीं रेंग रहा। तो इससे सोमैटिक हैलुसिनेशंस होते हैं। एक गस्टेटरी हैलुसिनेशंस होते हैं जिसमें उसे किसी भी जो भोजन उसने किया नहीं, जो ड्रिंक उसने पिया नहीं, उसका टेस्ट वो फील कर रहा होता है अंदर। और ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशंस भी होते हैं और जिसमें स्मेल आती है उसे, स्मोक की स्मेल आएगी, पॉइजन की स्मेल आएगी, कोई भी स्ट्रेंज स्मेल उसे फील होती रहेगी। तो ये सारे हैलुसिनेशंस होते हैं।
1: ऐसा भी हो सकता है योगेश जी कि एक साथ दो या तीन चीजें चल रही हो, कि हैलुसिनेशन भी हो रहा हो, डिल्यूजन भी हो रहा हो।
0: जी जी, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस तो बहुत कॉमन होता है और ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के साथ कई केसेस में देखा गया डिल्यूजन्स भी पाया जाता है।
1: ओके
0: और अब हम करते हैं डिसऑर्गेनाइज स्पीच की चर्चा
1: जी।
0: इसमें क्या होता है कि बहुत बोल रहा है व्यक्ति पर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस है इसकी कन्वर्सेशंस में। वो कभी एक टॉपिक पे बात करता है, अचानक वो कन्वर्ट कर लेता है अपने टॉपिक को, दूसरे टॉपिक्स पे बात करने लगता है और ऐसे ही कमेंट्री चलती रहती है, तीसरे टॉपिक्स पे आ जाता है। तो अगर कॉन्क्लूजन कुछ नहीं निकलता उसकी जो कन्वर्सेशंस को, हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस कर रहा है। उसका टॉपिक सब्जेक्ट्स हमेशा जो है ऑन द स्पॉट ऑफ मूवमेंट चेंज होता रहता है।
1: जैसे अभी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की बात करते करते अचानक किसी कोई और टीवी के कार्यक्रम की बात करना शुरू कर देंगे या कपड़ों की बात करना शुरू कर देंगे और वो बात खत्म हुई नहीं कि उसके पहले कोई बाजार की बात शुरू कर दी या पेड़ पौधों की बात शुरू कर दी।
0: जी जी, इसे
1: आपस में कोई तालमेल ही नहीं।
0: सही कहा आपने। तो इसे हम क्लिनिकल टर्म में कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। इसमें क्या होता है, सिली एंड बिजारे बिहेवियर। आप गर्मी में भी बड़ा गर्म कंबल पहन के बाहर जा रहे हैं, गरम कोट पहन के जा रहे हैं, आपने बड़ी स्ट्रेंज टाइप के, जैसे स्ट्रेंजर्स कपड़े पहनते हैं, बड़ी विचित्र आपने ड्रेस पहनी हुई है। और कभी कभी पता नहीं चलता है, कोई मेल भी होता है वो भी लिपस्टिक लगा के और किस अंदाज में निकलता है तो वो अलग ही पहचाना जाता है कि ये कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है।
1: हमारे पास अब कुछ सवालों की झड़ी सी लग रही है तो इस गीत के बाद हम एक बार हमारे लिसनर्स के कुछ सवाल ले लेंगे और फिर हमारे कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे।
0: जी, फिर हम नेगेटिव सिस्टम पे चर्चा करेंगे।
1: जी, तो इस बीच हम पहले थोड़े हमारे लिसनर्स के सवाल ले लेंगे। तीन चार प्रश्न मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, इस गीत के बाद हम आपके प्रश्नों को लेंगे और योगेश जी से गुजारिश करेंगे कि वो इन सब प्रश्नों का तरतीबवार हमें सही जवाब दें।

0: स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज बहुत तरतीबवार जाना कि बहुत ही जितने सिम्टम्स मैंने सुने आपसे अभी योगेश जी, तो दिल बहुत दुखा, बहुत तकलीफ हुई और विचलित हुआ मन कि जो इस सब से गुजर रहा है वो तो है ही तकलीफ में, लेकिन जो उसके साथ रह रहे हैं वो भी कितने तकलीफ में हैं, वो भी कितनी परेशानी में
1: जी। फैमिली को भी बहुत परेशानी होती है।
0: देखिए, हमारे पास एक मधुबाला जी का मैसेज आया है कि मेरे पति मुझ पर ज्यादा शक करते हैं और बच्चों पर भी शक करते हैं। मैं जो खाने पीने की चीज उनको देती हूँ उन पर भी उन्हें शक रहता है कि उसमें मैंने कुछ मिला दिया है। उनके पिता भी कुछ कुछ ऐसे ही थे और बहुत ज्यादा इनके जो पति हैं वो बोलते हैं। डॉक्टर से दवाई भी ली है लेकिन वो खाते नहीं है, कहीं मुझे आने जाने नहीं देते, घर से भी नहीं निकलने देते और स्वयं भी घर से बहुत कम निकलते हैं और लगातार सब लोगों से मेरी बुराई करते हैं।
1: जिस हिसाब से आपने वर्णन किया है अपनी स्थिति का, तो उससे तो यही मालूम चल रहा है कि जो एक सिज़ोफ्रेनिया है, जो एक पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत शक करने की आदत है और आप पे भी शक करते हैं और मुझे बाहर भी नहीं जाने देते हैं, और फिर आपने बताया कि मुझे मेरे फादर इन लॉ को भी ये बीमारी थी
0: जी,
1: तो उससे भी ये प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसका जेनेटिकली भी अगर हम देखा जाए, अगर पेरेंट्स में ये बीमारी होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी न्यू जनरेशन में भी वो बीमारी जा सकती है। तो ये सारी चीजें मैं जब देख रहा हूँ, उनको शक करने की बहुत वो है, आपको भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं
0: जी।
1: तो ये पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में आता है और आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: मतलब निराश होने की जरूरत नहीं,
1: नहीं बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अब तो सिज़ोफ्रेनिया क्योरेबल है, बहुत अच्छा एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल फील्ड में, बहुत अच्छी साइकोथेरेपीज हैं, बहुत रिसर्च हो रही है सिज़ोफ्रेनिया पे और आज जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो जैसे उनका तो होगा ही, उनके पति का तो होगा ही ट्रीटमेंट, तो क्या थोड़ी काउंसलिंग इनको वाइफ को भी दी जाएगी कि किस तरह से आपको पेशेंट को हैंडल करना है?
1: देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और इसमें फैमिली साइकोथेरेपी की भी जरूरत होती है
0: जी।
1: क्योंकि हमें जो है उसके सिम्टम्स को, जो मरीज है उसके सिम्टम्स को समझने में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे

0: आप थोड़े जो आप में एक अधीरता थी, आप अधीर थे अंदर से कि मेरे जो एक फैमिली मेंबर में क्या क्या चल रहा है, मेरे फैमिली मेंबर के साथ क्या क्या हो रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सिम्टम्स वो है स्पेसिफिक बताता है, उसके बारे में बताता है, तो आपको थोड़ा तसल्ली हो जाता है कि ये जो बिहेव कर रहे हैं वो किसी बीमारी से कर रहे हैं, किसी दूसरी वजह से नहीं कर रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, निवारण है, आपको पता चलता है, उसके सिम्टम्स पता चलते हैं, और आपको कोपिंग स्किल्स भी सिखाता है कि आपको उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे बिठाना है, आपको खुद अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है।
1: आपकी बात सुनकर उन्होंने अभी लिखा है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, वो दवाई भी नहीं खाना चाहते। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ?
0: देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। अभी WHO की रिपोर्ट आई थी कि साइकोसिस के 3 मरीज में से एक मरीज डॉक्टर की सलाह ले रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है,
1: बाकी जाना ही
0: प्रॉपर
1: नहीं चाहते।
0: ट्रीटमेंट करा रहा है, और जो है बाकी जाना नहीं चाहते। तो ये बहुत गंभीर, यहाँ बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये अगर सिम्टम्स उनको किसी भी तरीके से अगर आप नहीं समझा सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, किसी भी तरीके से मोटिवेट करिए उनको कि ये सारी चीज़ें क्यूरेबल हैं, उनको बताइए आप एक बीमारी से पीड़ित हैं और इसका इलाज है, और जब ये इलाज हो जाएगा तो हमारे जीवन में, हमारे
1: खुशियां
0: पूरी
1: खुशियां
0: फैमिली में
1: होंगी।
0: जो है खुशहाली आ जाएगी।
1: बिल्कुल। मृत्युंजय कुमार ने चेरकी गया बिहार से मैसेज किया है कि मैं एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूं और नवरात्रि की बधाई तो दी है, साथ में वो कहते हैं कि मैं आरोग्य शिक्षक के रूप में भी क्लास लेता हूं। विद्यालय में बच्चों के बीच सिज़ोफ्रेनिया की पहचान मैं कैसे कर सकता हूं?
0: देखिए, आपने कहा अगर बच्चों में थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, हम कभी सोचने लगते हैं कि जैसे एडोलसेंट में हार्मोन्स चेंजेस वैसे ही होते रहते हैं, कभी हम उनको उत्तरदायी समझ लेते हैं कि ये ऐसा बिहेवियर इसलिए कर रहा है कि हार्मोन्स
1: टीन
0: चेंजेस हो
1: टाइम
0: रहे
1: है,
0: हैं,
1: इनका टीनेजर चल रहा
0: टीनेजर हैं,
1: है।
0: इस तरीके की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। पर इसमें, इस स्थिति में हमें सिजोफीनिया की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि इसलिए आपने देखा गया है कि ज़्यादातर सिजोफीनिया की जो पहचान हम कर पाते हैं वो 20 से 40 वर्ष की आयु में कर पाते हैं, किशोर अवस्था में इतनी जल्दी पहचान नहीं हो पाती है। हम उसका जो कॉज जो ढूंढते हैं वही कहते हैं कि हार्मोन चेंजेस की वजह से या टीन एज में ऐसा बिहेवियर होता रहता है, ये कॉमन है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं।
1: जी। सब सवालों में एक सवाल अब बहुत अहम उभर कर आया है कि आखिरकार स्किज़ोफ्रेनिया होने के कारण क्या है?
0: देखिए, सिजोफीनिया के होने के काफ़ी कारण हैं। अगर हम पहले हम जेनेटिक कारण देखेंगे, जेनेटिक्स भी होता है, तो रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि अगर किसी एक पेरेंट्स में है तो चांसेस हैं सिजोफीनिया के उसके बच्चों में 10 या 12% चांसेस बढ़ जाते हैं सिजोफीनिया होने के, अगर एक पेरेंट में
1: और अगर ग्रैंड पेरेंट में हो, दादा दादी नाना नानी में, तो पोतों में
0: वो तो
1: या
0: बात वही रही। अगर ग्रैंड पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स से फिर न्यू जनरेशन्स में आएगा, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो न्यू जनरेशन्स में जब आएगा तो उसके जो चांसेज होंगे, अगर एक पेरेंट में है तो चांसेस जो है 10 से 12% होंगे, अगर दोनों पेरेंट्स में है तो ये चांसेस 40% बढ़ जाते हैं।
1: ये तो हुआ जेनेटिक का।
0: ये जेनेटिक कारण हुआ। अब कई जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे जो मेन है वो डोपामाइन हाइपोथेसिस है। डोपामाइन हाइपोथेसिस में है कि एक्सेस डोपामाइन एक्टिविटी इन द सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन, वो डोपामाइन एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है जिससे सिजोफीनिया होने लगता है। हालांकि दूसरे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जैसे सेरोटोनिन है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है,
1: जी
0: पर डोपामाइन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन सिजोफीनिया। और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है एनलार्जमेंट ऑफ सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। तो जो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स है, सेट ऑफ 4 जो है कैविटीज है जो भरी होती हैं, एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है उससे भरी रहती हैं, और ये जो वेंट्रिकल्स हैं दे प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू द न्यूरल स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन्स। जब हम MRI या दूसरे तरीकों से देखते हैं, ये पाया गया है, रिसर्च स्टडी में भी पाया गया है कि ये ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है वेंट्रिकल्स, तो उनमें भी सिजोफीनिया के चांसेस ज़्यादा हैं।
1: अभी तक तो आपने जो भी कारण हमको बताए हैं वो हैं जो हमारे अपने एफर्ट से परे हैं।
0: जी,
1: हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं
0: है। जी जी,
1: अगर ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी अगर हमें आई है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं।

0: या तो कुछ केमिकल अंदर प्रॉब्लम हुआ है या फिर जेनेटिकल
1: जी
0: हमारे में
1: नहीं,
0: आया
1: ऐसा
0: है।
1: बिल्कुल नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। पहले
0: जी
1: हम
0: मैं यही
1: बायोलॉजिकल
0: जानना
1: फैक्टर्स
0: चाहती थी।
1: को
0: जी
1: थोड़ा और कर लेते हैं। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में एक और चीज़ रह गई, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बच्चे में वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है या बच्चे का जो वेट है बहुत कम होता है, और कभी कभी क्या होता है डिलीवरी के समय जो डिप्राइवेशंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता
0: आहा
1: है, उससे भी जो है सिजोफीनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं
0: अच्छा
1: बच्चे में। अब हम जैसे आपने कहा कि हमारे वश में नहीं है, नहीं
0: जी
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, स्ट्रेस को कैसे कोप अप किया जाए, स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हम सीखते हैं तो हम जो है स्ट्रेस से, सिजोफीनिया से बच सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे कभी क्या होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बच्चे की बच्चा माँ से बहुत प्यार करता है, माँ का अचानक देहांत हो जाता है, या किसी भी पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, या दूसरे कोई इमोशनल ट्रॉमा है, वो भी सिजोफ्रेनिया को जो है बढ़ावा देता है। और अब हम आते हैं फैमिलीज।
0: फैमिलीज पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: जमी और आसमां इस वक्त दोनों जो माहौल है वो ये गा रहा है कि स्ट्रेस जीवन में बहुत ज्यादा है, और आपने कहा कि अगर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही दिशा नहीं दी तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं। हम अब इससे आगे की बातचीत कर रहे थे कि और क्या कारण हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के, जो एनवायरमेंटल इश्यूज में आएंगे।
1: देखिए, फैमिलीज में ये देखा गया है कि पुअर कम्युनिकेशंस है, आपस में लोग इंटरेक्शंस नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरेक्शंस कर भी रहे हैं तो वहाँ जो इंटरेक्शन स्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें क्रिटिसिजम्स है, हॉस्टिलिटी है और एक्सेसिव इमोशनैलिटी है। तो हमें ऐसे जो इंटरेक्शन स्टाइल है बचना चाहिए, और कभी भी जो चाइल्ड की और मदर की जो रिलेशनशिप है या चाइल्ड और पेरेंट्स की रिलेशनशिप है वो बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम आगे चल के उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, जिससे वो मनोरोग और स्ट्रेस से बच सकते हैं। और फैमिलीज़ में हमने ये भी देखा गया है कि जो फैमिलीज़ हैविंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनमें सिजोफीनिया या मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा पाए जाते हैं।
0: ओके। अभी पीछे हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स की बात कर रहे थे। पॉजिटिव सिम्टम्स तो पूरा कवर किया, लेकिन नेगेटिव हमारे बीच में क्वेश्चंस की वजह से रह गया था, तो मैं चाहूंगी एक बार आप उसको वापस कंटिन्यू करें।
1: हाँ, देखिए, पॉजिटिव सिम्टम्स तो हमारे हो गए थे जिसमें हमने डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर बताया था। अब अगर हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं कि जो डिक्रीज नॉर्मल फंक्शनिंग को डिक्रीज करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमने क्या बताया कि वो इंक्रीज करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को, और नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं डिक्रीज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में है कि जिसे सिजोफीनिया है उसमें का जो फेस होगा वो इमोशनल लेस होगा, उसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, कोई भाव नहीं होंगे, कोई आईज कांटेक्ट नहीं देगा, ब्लैंक होगा बिल्कुल, वो किसी व्यक्ति को आईज कांटेक्ट नहीं देना चाहेगा। इसे हम फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है दूसरा, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी ऑफ स्पीच में है अगर आप उससे बोल रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो बड़ा लैप्स दे रहा है, आफ्टर ए लॉन्ग लैप्स वो आपके जवाब देगा, कोई प्रश्न का जवाब देता है और वो भी बहुत बहुत ही छोटा जवाब, और कभी कभी तो जवाब वो देगा ही नहीं, बहुत कम बोलेगा, और जितना भी आप बुलवाने की उसे कोशिश करेंगे उसका हाँ या ना में उत्तर होगा। तो इसे कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच। फिर हम तीसरा इसमें सिम्टम्स है लॉस ऑफ मोटिवेशन, कि लाइफ में कोई मोटिवेशंस नहीं, कोई सेल्फ केयर नहीं, ऑफिस जाना बंद कर देगा, अगर बच्चा है तो वह स्कूल जाना बंद कर देगा, नहाएगा भी नहीं, एक कमरे में पड़ा रहेगा, अपनी जो सेल्फ केयर हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखेगा,
0: उमंग नाम की जीवन में कोई चीज
1: कोई मोटिवेशन ही नहीं रह गया, तो वो अपना सेल्फ केयर भी नहीं करेगा, वो सोशल पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेगा, एक आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा। अब चौथा आता है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर। तो इसमें ये भी देखा गया है कि बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है, एक जगह इंसान पड़ा रहता है और बिल्कुल जो इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस है वो बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल खुश नहीं रहता आदमी, बहुत उदास सा रहेगा, तो उसका जो दृष्टिकोण है सभी चीज़ों के प्रति उदासीन हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपने ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में आती हैं।
0: रंजन लाल साहब की उम्र 50 वर्षीय है, कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ बोलता है तो बात में बहुत गुस्सा आ जाता है और वही बात फिर दिन रात मेरे अंदर चलती रहती है, क्या इसका भी कोई कनेक्शन है किसी मानसिक विकार या बीमारी से?
1: देखिए, इस पे तो आपको एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दो चीजों पे काम करना है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने एंगर मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था, तो ऐसा कोई प्रोफाउंड सीवियर कोई मेंटल इलनेस नहीं है आपको, आप थोड़ा एंगर मैनेजमेंट पे काम कीजिए।
0: हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जाना कि क्या है, क्यों हो सकता है, सिम्टम्स क्या है और अमूमन कारण क्या होते हैं। अब जो मेरा सवाल है वो ये है, क्या इससे उबर

0: आना, इससे ठीक हो जाना, निजात पाना संभव है?
1: देखिए, आज बहुत एडवांसमेंट है और साइकोथेरेपी काउंसलिंग है बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही है। और अगर पेशेंट, अगर जो मरीज है टाइम पर डॉक्टर की सलाह लेता है, डॉक्टर के पास आता है और अपना ट्रीटमेंट कराता है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया में ये देखा गया है कि लोग जैसे इसमें डिल्यूजन वाली स्थिति होती है, हेलुसिनेशंस वाली स्थिति होती है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, लोग इसे विचक्राफ्ट समझने लगते हैं, कोई जादू टोना समझने लगता है। तो आप सब लोगों से विनती है कि चक्कर में ना पड़ें, ये कोई विचक्राफ्ट या जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है। तो आप इसका प्रॉपर टाइम से इसका इलाज कराएं, अगर टाइम से इलाज कराएंगे, हाँ इसका जो इलाज थोड़ा लंबे समय तक चलता है, कई हमने मरीज देखे हैं कि बीच में ही अपना ट्रीटमेंट जो है डिसकॉन्टिन्यू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ट्रीटमेंट आप पूरा करवाएं तो आप देखेंगे कि इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और आप इससे जो है छुटकारा पा सकते हैं।
0: मतलब 100% शत प्रतिशत निजात पाने के चांसेस हैं अगर हम अपना लगातार ढंग से डॉक्टर के कहे अनुसार अपना इलाज कराएं तो।
1: जी बिल्कुल।
0: जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस समय जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए आपके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, क्योंकि इसमें जब हम परिवार की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि परिवार वाले भी कैसी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मरीज को हैंडल करना जो काल्पनिक दुनिया में रहता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वो फैमिली साइकोथेरेपी भी करते हैं और इसमें बताते हैं कि आपको मरीज को कैसे हैंडल्स करना है, उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे टिप्स देते हैं, योगा मेडिटेशंस करवाते हैं और उनका जो संबंध है आपस में, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं, जो आपका इंट्रैक्शन स्टाइल्स है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो टॉलरेंस पावर बहुत कम हो चुकी होती है, तो आप में कोशिश करते हैं कि आपकी टॉलरेंस पावर बढ़े, आपका इंट्रैक्शन स्टाइल बढ़े, आपका और मरीज का जो संवाद है वो एक ऐसे स्तर पर आ जाए ताकि आप दोनों एक दूसरे को भली भांति जाने समझें।
0: स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को क्या अधिकतर दवाइयां दी ही जाती है या केवल काउंसलिंग, ये जैसे आपने कहा कि साइकोटिक थेरेपी से भी फर्क पड़ सकता है?
1: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया में जो टाइप ए स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसमें हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें दवाइयां बहुत जरूरी हैं, कि दवाइयों के साथ काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। तो दवाइयां और काउंसलिंग साइकोथेरेपी साथ साथ चलनी चाहिए, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
0: ये दवाइयां भी क्या लंबे समय तक चलती हैं?
1: जी जी,
0: इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: इंद्रजीत का हमें मैसेज आया है दिल्ली से। उनका एक सवाल है, कहते हैं मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ, मेरी बिटिया 25 वर्षीय है, वो बार बार अपने हाथ धोती है, अपने कमरे में ही रहना पसंद करती है और किसी भी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या क्योर है?
1: देखिए, अगर बार बार हाथ धो रही है तो आप समझिए कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और ये ओसीडी है, ये क्यूरेबल है, तो आप जल्दी किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट को दिखाइए।
0: जैसे अभी यहाँ मुझे लगा थोड़ा डायग्नोसिस का प्रॉब्लम है
1: जी।
0: तो मुझे लगता है आम तौर पे हम घरों में हमें डायग्नोसिस करना नहीं आता
1: जी जी,
0: तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डायग्नोसिस पर आप क्या कहेंगे?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस फील्ड में यही है कि डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो DSM-5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो उसके अनुसार 3 सिम्टम जैसे हमने बताए, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच, अगर 3 सिम्टम्स में से अगर 2 सिम्टम्स इसमें हैं और वो 6 महीने से अगर ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो आप समझिए कि डायग्नोज हो जाता है कि वो सिज़ोफ्रेनिया है। पर ICD भी इसी के बारे में डायग्नोज करता है। ICD होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो ICD-10 के हिसाब से यही 3 सिम्टम्स हैं, 3 सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स ज़रूर होने चाहिए, पर इसमें अवधि का डिफरेंस है। जहाँ DSM-5 जो है ये रिकमेंड करता है कि 6 मंथ्स ये सिम्टम्स चलने चाहिए, वहीं ICD-10 ये कहता है कि अगर 1 महीने भी ये सिम्टम्स चल रहे हैं तो डायग्नोस कर लिया जाता है कि ये सिज़ोफ्रेनिया से व्यक्ति पीड़ित है।
0: तो इस बात से ये अंदाजा क्या हम लगा सकते हैं कि जितना जल्दी अगर इस बीमारी को डायग्नोस कर लिया जाए उतना फास्ट इसका निजात हो सकता है?
1: देखिए, जितना जल्दी जल्दी अगर हम पकड़ लेते हैं सिम्टम्स और डायग्नोस कर लेते हैं, नो डाउट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और ट्रीटमेंट भी इतना लंबा नहीं चलता है।
0: अब हम ट्रीटमेंट की जैसे बात कर रहे थे
1: जी,
0: तो कितने तरह के ट्रीटमेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया में अवेलेबल है?
1: देखिए, मेडिकेशंस के जरिए भी हम इसमें जो है एंटी साइकोटिक मेडिसिंस भी देते हैं, जिसमें जो है क्लोज़ेपाइन आजकल इंडिया में बहुत दी जा रही है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल भी रहा है, और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दी जा रही है। इसमें जो है करंट पास किया जाता है ब्रेन में और ये 8 से 12 बार दी जाती है सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को, और हफ्ते में सिर्फ ये 1 या 2 बार ये ट्रीटमेंट होता है। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और ये उस केस में ज़्यादा है जहाँ कैटेटोनिक स्टूपर है। कैटेटोनिक स्टूपर मतलब कि बिल्कुल जो है इमोबिलिटी है, बिल्कुल इंसान जो है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जैसा एक स्थान पे जहाँ वो बैठा है, खड़ा है, वैसे ही बैठा रहता है, खड़ा रहता है, तो ऐसी कैटाटोनिक स्टूपर।

0: में पोजीशंस हो जाती है, और अगर कैटाटोनिक एक्साइटमेंट फेज में होता है तब भी, उस केस में भी जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज जो है बहुत अच्छी प्रूव हो रही है। और इसके अलावा हमारे पास जो है साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन पे भी हम काम करते हैं कि जो सिजोफीनिया का पेशेंट है हम उसे ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल स्किल सिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसको सेल्फ केयर के बारे में बताते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि वो फॉलो करें, और उसको एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज करवाते हैं जिससे कि उसका मोटिवेशन बढ़े और वो काम करने के लिए तैयार हो जाए।
1: जो अभी आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का बताया, ये जो आपने और तरीके बताए, एक पेशेंट या उसके घर वालों के लिए उसको कैसे पता चले कि इसमें ये दिया जाएगा, या जो सामने डॉक्टर है या जो सामने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये सजेस्ट करा है, क्योंकि पेशेंट को इतनी समझ नहीं और मन में एक वहम एक डर आ सकता है कि इससे कहीं चीज और बिगड़ तो नहीं जाएगी, तो किस लेवल पर आकर ये वाले ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ये कैसे तय हो?
0: देखिए मैं ये बता दूं कि जो आपने पूछा कि इसको भी कैटेगरी सिम्टम्स के हिसाब से सारे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे पैरानॉइड सिजोफीनिया होता है, अगर डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, एक डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफीनिया होता है, अगर डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, जो हम सिम्टम्स में हमने एक्सप्लेन किया है तो उसे डिसऑर्गेनाइज सिजोफीनिया की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। फिर ये आपका आता है रेजिडुअल्स, जो लेफ्ट ओवर सिम्टम्स बच गए हैं, यानी कि जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो रेजिडुअल्स में आ जाते हैं, और एक होता है कैटाटोनिक सिजोफीनिया जिसमें या तो एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती है या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी की स्टेट आ जाती है कि जिसमें जहाँ बंदा बैठा है एक अगर हाथ वो कुर्सी पर अगर पीछे करके बैठा है तो उसी अंदाज में वो काफ़ी उसी पोजीशन में काफ़ी घंटों तक बैठा रहेगा, तो इसे कहते हैं जहाँ भी साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होती है उसे कैटाटोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसे कैटाटोनिक सिजोफीनिया कहते हैं, और ये कैटेगराइज करके सिम्टम्स देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं।
1: योगेश जी, जिस तरह से हम और आप स्किजोफ्रेनिया के बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक और चलते ही रीडर डॉक्टर का प्रोग्राम कर सकते हैं
0: जी।
1: तो इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं से फाइनली क्या कहना चाहेंगे।
0: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल इलनेस है, अगर हम शुरू से कई प्रिवेंटिव मेजर्स लें, अच्छा योगा करें, ध्यान करें और सोशल पार्टिसिपेशंस करें, हॉबी कल्टीवेट करें, तो हम देखते हैं अगर धूप लें, आजकल मैंने ये देखा है कि जो एसी कल्चर हो गया है कि लोग धूप नहीं ले रहे हैं, बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आने लगी हैं। जो मैग्नीशियम्स हैं B12 की बड़ी कमी आ गई, एक रिसर्च के मुताबिक B12 B6 B8 ये सब भी रेस्पॉन्सिबल है, इनकी डेफिशिएंसी भी रेस्पॉन्सिबल है सिजोफीनिया के लिए, तो हम अब देखें हमारे शरीर में इन विटामिन्स की कमी तो नहीं हो गई है, तो ये सुनिश्चित करते रहें कोई विटामिन्स की कमी ना हो, आउटडोर गेम्स खेलें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे विनती करूंगा, और स्मोक ना करें, ड्रिंक ना करें, तो मैं सबसे विनती करूंगा ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, एक सात्विक जो है आप लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं।
1: और एक अच्छा डॉक्टर हमें ये पता कैसे चले कि हाँ ये डॉक्टर हमारे लिए परफेक्ट है, हम एक एज अ पेशेंट या एज अ फैमिली मेम्बर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम डॉक्टर के पास जाएं?
0: देखिए अगर जगह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले तो आप ये देख लिए कि क्वालिफाइड है, क्योंकि कई लोग इतना क्वालिफाइड नहीं है, क्यूब नहीं है कि वो आपका सही ट्रीटमेंट कर सके, तो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज कराएं। और दूसरा ये कि जब आप देखें कि वो अप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज की नॉलेज तो है पर कितना डिलीवर कर पा रहा है, क्या वो शिद्दत के साथ आपकी आपके साथ उसकी संवेदनाएँ जुड़ी हुई हैं, आपको टाइम दे रहा है, और वो भी क्या वो भी उसमें भी मल्टी टैलेंटेड है, वो भी मेडिटेशन आपको सिखा सकता है, योगा सिखा सकता है, उसकी भी अवेयरनेस बीमारी को लेकर कितनी है, तो ये सब अब जब आप जाते हैं, जब आप स्वयं ही आपको थोड़ा पता लगने लग जाता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही डॉक्टर से इलाज कराएं जिसकी संवेदनाएं आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हों, क्वालिफाइड हो।
1: थैंक यू सो मच, मैं और मेरे श्रोता हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप स्टूडियो आए और आपने हमें स्किजोफ्रेनिया जैसी जो एक मेंटल विकार है उसके बारे में इतनी तफ्तीश से बताया और पूरा एक खाका खींचा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।
0: नमस्कार।
1: तो दोस्तों आपने जो

0: जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज किस तरह से संभव है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? इससे संबंधित कोई भी सुझाव या फीडबैक आप हमें दे सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। एक बार फिर से दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इससे संबंधित कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार, आकाशवाणी दिल्ली, 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट

0: से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से एक है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी गई है जाएगी। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय

निर्मला सीतारामन क्वांटम एआई नाम की एक निवेश योजना को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें नागरिकों को 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश के बदले प्रति महीने 3,00,000 रुपए की आमदनी का वादा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, नमे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इस कदर व्यस्त हो कि अपनी सेहत के लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। फलस्वरूप आप आसानी से कोई गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। इन सभी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है योग और मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। इसे करने के कई तरीके हैं, जिसके लिए न तो आपको अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव करना होगा और ना ही कोई खास तैयारी करनी होगी। लम्हे के इस प्रोग्राम में हम आपको मेडिटेशन क्या है, इसके कुछ आसान प्रकार, उपयोग और फायदों के बारे में बताएंगे। साथ ही प्रोग्राम के माध्यम से आपको इसे करने के सही नियम और समय से संबंधित जानकारी भी देंगे। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मेडिटेशन के प्रकार और फायदों के बारे में जानने से पहले जरूरी होगा कि मेडिटेशन करने के तरीके के बारे में अच्छे से जान ले। दोस्तों, ध्यान लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है, लेकिन कई लोगों में मेडिटेशन को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर मेडिटेशन कैसे करें। बता दें, मेडिटेशन करने के तरीके में कुछ खास नियम शामिल हैं। इन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें अपनाकर आप मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैठने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाए। अगर बड़े लोग नीचे नहीं बैठ सकते, एक कुर्सी में आराम से बैठ सकते हैं। बैठने की स्थिति में ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी रहे, ताकि आप सही से सांस ले सके। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को आराम की अवस्था में ले जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, ताकि सभी मांसपेशियों को आराम मिल सके। इस प्रक्रिया को पैरों से शुरू करके अपने चेहरे तक लाए। सुनिश्चित करें कि पूरा शरीर आराम की अवस्था में है। आराम की अवस्था को हासिल करने के बाद अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से सांस लेने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस ले और इसी प्रकार बाहर निकालें। ध्यान के लाभ को हासिल करने के लिए इस क्रिया को पूरे मन से कई बार दोहराएं। तीसरे चरण में अब अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें। इसके लिए आप अपनी आत्मा या अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप 1 से 5 तक गिनती करें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। वही आप किसी ऐसी चीज या विचार पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं जो आपको

सुख का अनुभव देता है। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो संभव है कि आपका मन बार बार अन्य विचारों की ओर जाएगा। इस कारण जरूरी होगा कि मन में संतुलित की अवस्था को बनाने की कोशिश करें कि मन को भटकने से बचाए। अगर मन किसी कारण भटक जाए तो उसे दोबारा केंद्रित करने का प्रयास करें। नींद आना, खुजली का होना, भावनाओं का अनुभव, डे ड्रीमिंग यानी जागते हुए सपने देखना, कई प्रकार के विचारों का लगातार आना और कई प्रकार की अनुभूति होती है जो मेडिटेशन को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए जरूरी होगा कि आप अपने मन को समझिए कि ये केवल आपको विचलित करने वाला कारक है जो आपके मेडिटेशन के रास्ते में पत्थर बन सकते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें और मन को एकाग्र करें। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद ध्यान की चरम सीमा को हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने हथेलियों को रगड़कर आंखों पर लगाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर ध्यान की अवस्था से बाहर आए और अपनी हथेलियों को देखें। मेडिटेशन कैसे करें इस बारे में जानने के बाद लम्हे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम मेडिटेशन के प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। इनमें से कुछ खास के बारे में हम आपको बताने की प्रयास करेंगे इस लम्हे प्रोग्राम में। आध्यात्मिक मेडिटेशन। आध्यात्मिक ध्यान आपको मोह माया से अलग दुनिया को दिखाने में मदद करती है। इसके निरंतर उपयोग से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। इससे विचारों और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नई मानसिक ऊर्जा का आप में संचार होता है। दूसरा है दोस्तों, विपश्यना मेडिटेशन। ध्यान का यह तरीका सबसे प्राचीन माना गया है। बताया जाता है कि ध्यान के इस तरीके को करीब 2500 साल पहले प्रचारित और प्रसारित किया है। मेडिटेशन का यह प्रकार आज व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भीतर झांककर खुद को समझने की कोशिश करता है। इसकी सहायता से मनुष्य अपने विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ सही और गलत में फर्क करने की क्षमता को विस्तार देने में समर्थ होता है। ज़ेन मेडिटेशन एक और तरीका है दोस्तों। मेडिटेशन का यह प्रकार चीनी बौद्ध धर्म द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। बता दें कि ध्यान का यह तरीका माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें दिमाग को एकाग्र करने पर खास ध्यान दिया जाता है। ध्यान की इस मुद्रा में आपको सुखासन मुद्रा में बैठकर और हाथों को आपस में मिलाते हुए बैठना होता है। ध्यान की इस स्थिति में आपको मुख्य रूप से अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। ध्यान का यह प्रकार आपको दिमागी रूप से विकसित और समृद्ध बनाने में सहायक माना जाता है। ये ध्यान आध्यात्मिक ध्यान का ही एक प्रकार है। इसमें आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र बिंदु मानकर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया आपको चेतन मन के परे ले जाकर अपने अचेतन मन में झांकने के लिए प्रेरित करती है। इसे दुनिया को समझना और उसे अनुभव करने के नजरिए में बदलाव महसूस होता है। आगे बढ़ते हुए अब सुनिए दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन के बारे में। राजयोग मेडिटेशन बहुत प्राचीन है। ध्यान का यह प्रकार आपको शांत रहने और खुद का निरीक्षण करने में मदद करता है। इससे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता का भाव पनपता है। इस योग के खत्म बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के मंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। योग की इस प्रक्रिया में आप अपनी आंखें खुली रखकर ध्यान लगा सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। मेडिटेशन के इस प्रकार में मनुष्य अपने भीतर यानी अचेतन मन में झांकने का प्रयास करता है। यह आपको भौतिक बाधाओं जैसे दुख, सुख, खुशी और गम से दूर ले जाकर अपने अस्तित्व का एहसास कराता है, जो आपको ये समझाने में मदद करता है कि भौतिक चीजों का दुनिया में कोई भी मोल नहीं है। तो दोस्तों, कई प्रकार के योग और मेडिटेशन है, इसके बारे में तो हमने बात की। अब इसके बेनिफिट्स भी बहुत है दोस्तों। तनाव में कमी। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है और दिमागी शांति का अनुभव होता है। मेडिटेशन के उपयोग से चिंता और अवसाद से भी छुटकारा पाने से सफलता हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन से दिमागी विकास होता है, दर्द से छुटकारा मिलता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप रोज मेडिटेशन कीजिए। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपके

0: सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow।
2: 4:15, 4 सेकेंड हिना मौज एक बार फिर से आ गई है प्रोग्राम अल्फा जैन के साथ। वादा किया था आपसे कि आज भी कोई न कोई बनेगा रेनबो जीनियस, तो रेनबो जीनियस में शामिल होने के लिए और सवालात के जवाबात देने के लिए जल्दी से हमारे नंबर नोट कर लीजिए जिन पर आपको कॉल करना है। सबसे पहले नंबर है हमारा 01123421084 और दूसरा नंबर है 01123421080 ये नंबर्स हैं हमारे जिस पर आपको करना है कॉल और हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और आपने देने हैं उनके जवाब। और जो देगा 5 सवालों के लगातार सही जवाब वो बनेगा हमारा आज का रेनबो जीनियस। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। हिना मौज है आपके साथ, प्रोग्राम है अल्फा जैन।

0: 4:18, हिना मौज है आपके साथ अल्फा जैन प्रोग्राम में। देखते हैं आज हमारा कौन बनता है रेनबो जीनियस। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सवालात की। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: यज्ञ
0: जी। तो जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि भारत की राजधानी कौन सी है?

0: नई दिल्ली मैम।
1: गुड। राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा?
0: मोर।
1: नो, आपका आंसर रॉन्ग है, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं और अब हम लेंगे दूसरा कॉलर। अपना जी, सेकंड सवाल का जवाब हम दे देते हैं आपको। बंगाल टाइगर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ था 1973 में। और आप जल्दी से आप बताइए, हेलो कौन बोल रहे हैं? लगता है हमारे जी कॉलर जी ड्रॉप हो गए हैं। नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो
2: हेलो, मैं केशव चक्रवर्ती त्रिपुरा से।
1: जी जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दीजिए सर। जनगण मन किसने लिखा था बताइए?
2: हाँ क्या मैडम, क्या प्रश्न है?
1: जनगण मन अधिनायक जया है,
2: रविन्द्रनाथ टैगोर।
1: गुड।
2: फेमस पोएट ऑफ इंडिया।
1: जी, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है?
2: नील ग्रह, ये तो ब्लू अर्थ हमारी पृथ्वी।
1: जी गलत जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए हम दूसरा कॉलर अपना ऐड करें। इससे पहले इसका आंसर हम दे देते हैं कि ये नीला ग्रह पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 71% पानी है। तो जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए और बनने की कोशिश कीजिए आज का रेनबो जीनियस और हमारे दीजिए सवालों के जवाब। देखते हैं कौन कौन आज बनता है रेनबो जीनियस। नंबर है हमारे 011-2342-1084, 011-2342-1080।

0: बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, देखें अगला कॉल किसका है। हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: शंकर बोल रहे हैं कटिहार से मैडम।
0: जी शंकर जी, जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है?
1: हॉकी है मैडम।
0: वेरी गुड। ताजमहल किस शहर में है?
1: क्या मैडम
0: जी, रिकॉर्ड मत कीजिए, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ये बताइए ताजमहल किस शहर में है?
1: आगरा में है।
0: गुड। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
1: क्या गुड बोले मैडम?
0: कंप्यूटर का जनक मतलब कंप्यूटर जो है उसको किसने ईजाद किया था?
1: चार्ल्स डेविड जोल किया था
0: जी।
1: चार्ल्स डेविड जोल किया है
0: जी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
1: 1950 में हुआ है, 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में।
0: वेरी गुड। चार सवालों के जवाब आप दे चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके लिए है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
1: प्रशांत महासागर है मैडम।
0: वेरी गुड, आप तो बन गए हैं हमारे आज के रेनबो जीनियस। और कौन कौन बनता है ये देखते हैं। अगला कॉल हमारे पास किसका है? हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: जी मेरा नाम आकाश है।
0: आकाश जी, ये बताइए कि सूरज किस दिशा से उगता है?
2: सूरज पूर्व दिशा से उगता है।
0: गुड। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
2: दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को माना जाता है, जो हिमालय।
0: वेरी गुड। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है?
2: चीता।

0: पेड़ तोड़ने वाला जानवर चीता माना जाता है
1: जी। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है?
0: 5 जून को आने ही वाला है मैम
1: जी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
0: H2O।
1: जी वेरी गुड। आज तो हमें दो दो मिल गए हैं अपने रेनबो जीनियस। और कौन कौन बनता है देखते हैं
0: जी।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: केशव चक्रवर्ती।
1: केशव जी ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
2: ये मैंगो।
1: गुड। चांद पर चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
2: नील आर्मस्ट्रांग।
1: वेरी गुड। बड़े इंटेलिजेंट लोग हमें सुनते हैं। सबसे लंबी नदी दुनिया की कौन सी है?
2: क्या मैडम क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज।
1: सबसे लंबी नदी दुनिया की कौन सी है? नदी
2: ये तो नदी तो नील ना, ये मिशन नील। हाँ,
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप 3 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं। और चौथा सवाल है, राष्ट्रीय गान गाने में कुल कितना समय लगता है?
2: मैडम थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन।
1: जी, राष्ट्रीय गान गाने में कुल कितना समय लगता है?
2: 50 सेकंड ओनली। जनगण मन कंपोज बाय रवींद्रनाथ टैगोर, इट्स आवर नेशनल एंथम।
1: कितने सेकंड?
2: 52 सेकंड।
1: वेरी गुड। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है?
2: मैडम थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन।
1: देखिए बार बार मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वेटिंग पर हैं। क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है आपकी नजर में?
2: ये तो डिमोनेटाइजेशन थ्रू डिजिटल पेमेंट,
1: डिजिटल रूप से सशक्त बनाना हम लोगों को। जी आप ठीक से नहीं दे पाए। खैर बहरहाल बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम अल्फा जैन और बनने की कोशिश कीजिए आज का रेनबो जीनियस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप। 4:32:32 हिना मौज है आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है एल्फाजेन, और एल्फाजेन में इस वक्त हमारे साथ कौन है? हेलो जी।
3: हेलो, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम निधि है, मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ।
2: निधि, निधि जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब देकर बनिए आज आप रेनबो जीनियस। तो जल्दी से बताइए कि हाल ही में IPL का खिताब किस टीम ने जीता था? 2025 में हुआ था ना?
3: 25 हुआ ही, अभी हो रहा है ना इस।
2: हाल ही में मतलब जो अभी लास्ट गुजरा जी, बताइए।
3: ऑप्शंस
2: मैम? ऑप्शंस नहीं है आपको बताना है, सिर्फ सवाल का जवाब डायरेक्ट। नहीं, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, सॉरी। नो, हेलो
4: हेलो हेलो
2: जी, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार जी।
4: जी, रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, हिसार हरियाणा से।
2: हिसार हरियाणा से जी, बताइए जल्दी से हमारे सवाल का जवाब कि हाल ही में IPL का खिताब किस टीम ने जीता था?
4: अभी तो मैम फाइनल हुआ भी नहीं, इस बार का पूछ रहे?
2: नहीं नहीं, लास्ट जो
4: जीता था।
2: राइट, अब अगला सवाल जो है हमारा वो ये है कि हिंदुस्तान और किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान को और किस नाम से पुकारते हैं?
4: इंडिया, भारतवर्ष।
2: जी, सही कहा आपने। और ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं?
4: तिरंगा।
2: गुड। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है?
4: 15 अगस्त।

0: पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू।
0: वेरी गुड, आपने पांचों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। आपका क्या नाम है?
1: रामधारी अवाना।
0: रामधारी जी, आप बनते हैं हमारे रेनबो जीनियस, तीसरे रेनबो जीनियस। सोचिए, मुझे लग रहा है कि मैंने शायद सवालात जो हैं वो बहुत इजी ले लिए।
1: थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल मैम थोड़ा सा डाउन है।
0: हाँ, मैंने वही सोचा कि शायद हो सकता है कि, लेकिन हमारे काफी इंटेलिजेंट लोग हैं। आमतौर पर क्या होता है ना कि हम लोग आसान सवालों के जवाब जो है वो नहीं याद कर पाते, ना हमें याद रहते ना इतनी इम्पोर्टेंस हम देते हैं। तो आसान अगर किसी चीज को आप जानते हैं तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीजों की नॉलेज रखते हैं।
1: लेकिन ये कहना चाहूंगा कि श्रोताओं की जो कॉल है वो बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है।
0: कोशिश कर रही हूँ जी। थैंक यू। ओके जी, तो जी अगले कॉलर हमारे जो हैं वो अभी हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं देखते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, कौन?
2: जी
0: नमस्कार जी।
2: जी मैं असम गुवाहाटी से अरूप बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं?
2: 32।
0: नहीं, अगला कॉलर देखते हैं कौन है हमारे पास। हेलो, लगता है हमारी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं, कोशिश करती हूँ थोड़े सख्त सवालात पूछे जाएं आप लोगों से। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर, रेनबो जीनियस में।

0: हेलो
1: जी। हेलो, कौन है हमारे साथ?
0: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
1: नमस्कार उमेश जी, जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब देंगे आप?
0: जी
1: बताइए, भारत में कुल कितने राज्य हैं?
0: भारत में टोटल 29 राज्य।
1: एक और आपने जोड़ लिया, वैसे तो 28 हैं। बहरहाल अगला बताइए आप, ये मुझे कि भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है?
0: भारत रत्न।
1: वेरी गुड। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?
0: वटवृक्ष।
1: बरगद का पेड़।
0: जी
1: जी। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? इतना टाइम नहीं दे पाएंगे जी, अगला कॉलर वेटिंग। हेलो जी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके सवालों के जवाब हमने अपने कॉलर से पूछे हैं, और कुछ लोग बता पा रहे हैं और कुछ लोग एक दो बताने के बाद मतलब चार पांच नहीं तक पहुंच पा रहे हैं। बहरहाल अगला जो सवालों का सेशन होगा वो होगा आकाशवाणी से रिलेटेड, क्योंकि 90 साल हम मना रहे हैं आकाशवाणी के, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 90 साल जो आकाशवाणी ने बिताए हैं आप सबके साथ, और हम लोग बहुत धूमधाम के साथ इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं, और उन्हीं से रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे। आकाशवाणी से आप इतनी मोहब्बत करते हैं और आकाशवाणी की मोहब्बत का सबूत जो है वो आपने अब देना है कुछ सवालों के जवाब देते हुए। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, देखें कौन है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैडम, मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ।
1: जी, तो आप हमारे सवालों के जवाब देंगे आकाशवाणी? जैसे कि आपको पता है कि आकाशवाणी के हम 90 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगी। आप लोगों की मोहब्बत के सबूत भी तो चाहिए ना हमें।
2: हाँ मैडम, अच्छा लगता है आकाशवाणी अच्छे कार्यक्रम आते हैं आपके।
1: जी बताइए कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी?
2: भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत
1: इतना
2: तो छह में हुई थी।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग। अब हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़ेंगे उनसे पूछेंगे ये सवाल हम उनसे पूछेंगे, तो तैयार हो जाइए अपने सवालों के लिए। और एक और प्यारा सा ट्रैक सुनाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: हेलो
1: हेलो जी, कौन बोल रहे
0: हेलो,
1: हैं?
0: सुधीर बात कर रहा हूँ मैडम, पूर्णिया से।
1: जी सुधीर जी, जल्दी से बताइए कि आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है?
0: क्या मैडम?
1: आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? आकाशवाणी से आप सब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, और हम 90 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के, तो उस पर सवालात तो बनते हैं। बताइए जल्दी।
0: पहले वाला का जवाब दे, 1927 में हुआ था मैडम।
1: हाँ तो वो तो आपने देख लिया होगा ना, अब सेकंड वाले का जवाब जल्दी से दे दीजिए।
0: आदर्श वाक्य क्या है? सब ये है,
1: आदर्श वाक्य क्या है? नहीं बता पाएंगे। आदर्श वाक्य हमारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
0: महात्मा बुद्ध का ये है मैडम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है।
1: जी जी, मैंने सारी डिटेल आपसे नहीं मांगी थी, सिर्फ आपसे वाक्य पूछा था, आपने नहीं बताया। बहरहाल अगला कॉलर लेते हैं, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो
0: हेलो।
1: जी जी, आप ये जो रेडियो चला रखा है आपने, थोड़ा साइड कर दीजिए क्योंकि आवाज आ रही है उसकी।
2: जी जी, बंद कर दिया है।
1: जी बताइए, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है?
2: जी वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है।
1: वेरी गुड। अब ये बताइए, भारत की खोज किसने की थी?
2: किसका खोज मैडम?
1: भारत की, जहाँ हम रहते हैं।
2: अच्छा, भास्को डा गामा ने।
1: वेरी गुड। अब ये बताइए कि भारत को आजादी कब मिली थी?
2: 1947 में, 15 अगस्त।
1: हाँ, गुड गुड गुड गुड। और ये बताइए कि आप महात्मा गांधी जो हैं, वो राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले?
2: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने?
1: नहीं जी, ड्रॉप कर रहे हैं आपको।
2: अच्छा, आपका अच्छा, नेता सवाल। जाते
1: हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो,
3: आरिफ खान।
1: आरिफ खान जी,
3: हाँ जी
1: जी, तैयार हैं आप सवालों के जवाब देने के लिए?
3: हाँ जी।
1: भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
3: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
1: सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था?
3: मोहनजोदड़ो।
1: अशोक महान किंग वंश के शासक थे, किस वंश के शासक थे अशोक जो थे?
3: गुप्त मौर्य वंश।
1: वेरी गुड, आप लगता गूगल खोल के बैठे हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था?

0: बाल गंगाधर तिलक।
1: ठीक है, आखिरी दे दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
0: परम पूजनीय आचार्य चाणक्य, कौटिल्य वाले।
1: वेरी गुड जी, एक और हमें मिल गए हैं, ये
0: मंगोलपुरी से, दिल्ली से
1: जी, रेनबो जीनियस जी, बहुत शुक्रिया सवालों के जवाब देने के लिए।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने

0: 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: 4:56 हिना मौज के आप सबको खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चला और आप लेकिन कहीं मत जाइएगा, सिटी लाइट्स में रहेंगे राजेश आपके साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आपको देंगे। तो फिलहाल रेनबो जीनियस काफी सारे लोग बने आज और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी। और आकाशवाणी का अल्फा जैन प्रोग्राम बस यहीं पर खत्म होता है। ये आखिरी सॉन्ग इस प्रोग्राम का आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत के शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार

आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी के FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और दोस्तों, ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है, तो शहर के तमाम हलचलों, तमाम गतिविधियों को लेकर हम आप तक पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ वो बातें जो हमारे आज को, हमारे आने वाले कल को भी प्रभावित करती हैं, हम उनकी भी बातें आपसे इस प्रोग्राम के दौरान करेंगे। क्योंकि जब बात करते हैं इस तारीख की, तो आज है 24 मई, यानी कि 2-4 मई, 24 मई, और ये 2-4 हो रहे हैं हम लोग भी गर्मियों से। तो गर्मियों का तो हाल आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सभी लोग इन सभी चीज़ों को बिना बताए ही समझ रहे हैं कि गर्मियां किस तरह से पड़ रही हैं। अगर मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है दिल्ली और उसके आसपास। और अलग अलग हिस्सों में मौसम के हिसाब से, कई बार जगह के हिसाब से भी मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को आ रहा है। तो क्या आने वाले समय में करेगा उसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुने हुए गीत खास तौर पर आपके लिए, और आपका स्वागत करते हैं इस गीत के साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। दोस्तों, मौसम की एक खास बात होती है कि ये बदलता रहता है। अगर गर्मी है तो फिर ये मौसम बदलेगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको गर्मी से राहत भी मिले, यानी कि बरसात हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं और ये मौसम जो है वो खुशनुमा भी हो सकता है। अब गर्मी इतनी पड़ रही है, कम से कम ऐसी बातें करके थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है, तो ऐसी बातें करते रहना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बात ही नहीं है बल्कि मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि दिल्ली के साथ साथ NCR के इलाकों में जो गर्मी पड़ रही है उसमें आज का जो सुबह का तापमान था वो लगभग 28.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। और आज भी दिन में हमने झेला गर्म हवाएं और लू को, और येलो अलर्ट जारी किया गया था। और अगर मौसम विभाग की रिपोर्ट्स को देखें तो 27 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, और इसके बाद दिल्ली NCR के लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली NCR में 3 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम भी देखा जाएगा। ये कब होगा इसके बारे में अगर आपको बताते चले, 3 दिन का तो हमने बताया कि लू चलने की स्थिति रहेगी, क्योंकि ये जो येलो अलर्ट जारी किया गया है वो है कल, परसों और उसके अगले दिन, यानी कि 25, 26 और 27 मई को। और दोपहर के बाद से, यानी कि शाम से, आंधी और थोड़े बादल आ सकते हैं। उसके बाद तीनों दिन, हालांकि इस बीच तेज़ हवाएं चलेंगी जिनकी स्पीड आप जानते हैं, लू में तो स्पीड ना ही बताएं तो ठीक है, क्योंकि कई बार लगता है कि ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन हाँ 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलने की उम्मीद है। और 28 मई से दिल्ली के साथ ही NCR में मौसम बदलने का अनुमान लगाया गया है, और 28, 29 और 30 मई को दिल्ली NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, और इन तीनों ही दिन गरज चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तो ये होता है ना मन में कि अच्छा चलो 3 दिन बाद थोड़ा मौसम बदलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, वो फील होता है। और मौसम बस यूं ही चलता रहेगा क्योंकि गर्मियां हैं, और गर्मी में अगर गर्मी ना पड़े तो भी कई बार कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन हाँ इन गर्मियों में कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है, और वो सबसे ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं उसके बारे में जानना। कुछ एहतियात जो हमें बरतते हैं, हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि गर्मी की तेज़ लू जो है, हीट वेव है, उसका असर हमारी आंखों पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे आंखों में जलन, सूखापन, सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी, ध्यान कम लगना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें बचाव की बहुत ज़रूरत है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, यूँ तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर अच्छी है तो उसको दोहरा लेना और अपनी ज़िंदगी में उसको अपना लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा जो कहते हैं ना कि स्वास्थ्य को जब हम बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम धूप में निकलें तो फिर धूप का चश्मा पहने, और अगर आंखों में जलन या सूखापन हो तो साफ ठंडे पानी से छींटे थोड़े मार लें। बहुत देर तक धूप या गर्म हवा और धूल में रहने से बचना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, पानी जितना पिए आप इस समय उतना ही अच्छा है, और ताकि शरीर में और आँखों में डिहाइड्रेशन ना हो। और अगर थोड़ा गर्मी से आए हैं तो सीधा सीधा एकदम AC या कूलर के सामने ना चले जाएं, सीधे आंखों पर ना लगे उसकी जो हवा है, ये भी ध्यान रखें। और अगर आंखों में ज़्यादा दिक्कत लग रही है, धुंधला दिख रहा है, या फिर तेज़ दर्द है, लालिमा है, तो डॉक्टर से भी, जो आंखों के डॉक्टर हैं उनसे भी मिला जा सकता है। इस बीच कहते हैं ना कि बचाव बहुत ज़रूरी है, तो अगर दोपहर में 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें, एक तो जो भी काम करना है 11 बजे से पहले कर लें, क्योंकि 11 बजे से 4 बजे के बीच की जो धूप होती है वो उसको माना जाता है थोड़ा खतरनाक, और हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनना ज़रूरी है। पानी, चाहे आप बात करें ORS की, नींबू पानी की, छाछ की या नारियल पानी की, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए होती हैं बहुत खास। एक तरह से कह सकते हैं कि गर्मियों का

ये तोहफा है और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखती है। और खाली पेट धूप में बिल्कुल निकलना मना है। सिर को गमछे टोपी या छाते से ढकना जरूरी है। और अगर कमरे में है तो कमरे को ठंडा और हवादार रखें। और बहुत अधिक चाय कॉफी जैसी चीज़ें जो हैं वो डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर स्वास्थ्य जो है हमारा बेहतर होता रहेगा। और बेहतर स्वास्थ्य तो हम सभी चाहते हैं।

0: बिल्कुल कुछ इसी तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने नजर बट्टू की तरह आकाशवाणी को अपने साथ रखा, हमेशा अपने साथ रखते हैं। 24 घंटे हम आपके साथ होते हैं और तरह तरह की जानकारियां, तरह तरह की बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं और ये जो समय है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय प्रसारण इतिहास की। आकाशवाणी ने दशकों से देश की संस्कृति, संगीत, साहित्य, समाचार और जन जागरूकता को घर घर तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रेडियो के माध्यम से जहां हमने दूर दराज के गांवों से लेकर महानगरों तक लोगों को जोड़ा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी आवाज दी। आज डिजिटल युग में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और समृद्ध कार्यक्रमों के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। तो दोस्तों, अब जब इतना खास है ये हमारा और आपका साथ, तो इस साथ पर एक खास बात आपके साथ साझा करते हैं हम।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी H90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज हम जानेंगे रेडियो रूरल फोरम्स के बारे में। 17 नवंबर 1959 को आकाशवाणी ने ग्रामीण भारत में प्रभावी संचार और सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से रेडियो रूरल फोरम्स योजना की शुरुआत की। इन फोरम्स में ग्रामीण एक साथ बैठकर रेडियो कार्यक्रम सुनते थे और उन पर सामूहिक चर्चा करते थे। प्रसारण का मुख्य केंद्र कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके एवं ग्रामीण जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे। फोरम में हुई चर्चाओं के निष्कर्ष, प्रश्न और सुझाव संबंधित आकाशवाणी केंद्रों को भेजे जाते थे, जिसके आधार पर अगले प्रसारण में उनके उत्तर प्रस्तुत किए जाते थे। ये फोरम ग्रामीण श्रोताओं के साथ दो तरफा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी H90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, आगामी त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा रोडवेज जो है उस विभाग ने अपनी कमर एकदम कस ली है। ग्रेटर नोएडा रोडवेज विभाग ने ये बताया है कि इस बार गंगा दशहरा और ईद के मौके पर यात्रियों को जो आवागमन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष बस सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वहां से जाते हैं और गंगा स्नान के लिए हरिद्वार और गढ़ मुक्तेश्वर जाते हैं, तो श्रद्धालुओं की इसी भारी भीड़ को संभालने और उन्हें सुगम सफर मुहैया कराने के लिए नोएडा डिपो से अतिरिक्त बसों का

चालन किया जाएगा। रोडवेज प्रशासन का मुख्य फोकस हरिद्वार मार्ग पर रहेगा ताकि यात्रियों को डिपो या बस स्टॉप पर लंबा इंतजार न करना पड़े। इसके साथ ही ईद के त्यौहार पर भी अपने घरों को जाने वाले लोगों के लिए परिवहन विभाग विशेष मुस्तैदी दिखा रहा है और ईद के दौरान दिल्ली NCR से अपने पैतृक गांव और शहरों की ओर रुख करने वाले मुसाफिरों की संख्या में भारी इजाफा हो जाता है। तो यात्रियों की इस अतिरिक्त संख्या को देखते हुए नोएडा रोडवेज विभाग ने विभिन्न रूटों, खासकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए खासतौर पर बसों की योजना तैयार की है और हमारे बहुत सारे साथी जो सफर करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही काम की पहल है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है सिटी लाइट्स, मैं हूं आपके साथ राजेश। और साथियों, होता क्या है गर्मियों में कुछ चीजें हमें अक्सर लगता है कि ये समस्याएं आती हैं। जैसे गर्मियों में बिजली का जो उत्पादन है और उसकी खपत है, अक्सर इसकी बात होती है क्योंकि बहुत खपत होने लगती है। लोग एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, दूसरे उपकरण जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और इससे कई बार

बिजली की आपूर्ति में भी बाधा आती है और कई जगहों से कुछ इस तरह की भी खबरें आती हैं कि वहां पर जो है बिजली की कटौती की गई और इस तरह की चीजें हुई। लेकिन कुछ चीजों का अगर हम ध्यान दें तो एक तो बिजली की खपत भी कम हो सकती है, दूसरा एक फायदा होगा वो ये कि आपका जो बिजली का बिल है ना वो भी कम होगा। और ये दोनों ही चीजें हमारे काम की हैं, क्योंकि बिजली का बिल जब भरते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें प्लान कर लेना चाहिए था, लेकिन जब गर्मी लगती है तो लगता है कि चलो ठीक है भर देंगे अगली बार। लेकिन इस जो दो स्थितियां हैं ना, इन दोनों के बीच में से हमें रास्ता निकालने की जरूरत है, यानी कि कुछ उपाय हम ऐसे कर सकते हैं जिससे बिजली की भी बचत होगी और हमारा बिल भी कम आएगा। तो रास्ते तो कई हैं, और उन रास्तों की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम चलाते हैं एसी की बात करें, बहुत से घरों में एसी होते हैं और कई जगह तो एक से ज्यादा भी लगे हुए होते हैं, तो उसमें ये हम कोशिश करें कि एसी का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा अधिक रखें, यानी कि 24, 25, 26, कई बार 27 में भी ठीक ठाक फील होता है। तो अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर पर चलाते हैं तो फिर इसमें बिजली कम खर्च होगी और रूम भी है जो वो ठंडा करने के लिए, जो पंखा भी है कम स्पीड में चला सकते हैं, तो ये भी अच्छा रहता है। कूलर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि अगर उसमें हम पानी ठंडा भरें तो जल्दी कमरा ठंडा होता है, बर्फ़ डाल सकते हैं, और ऐसा करने से जो कूलर है कमरे को जल्दी ठंडा करता है। और फिर जब ठंडा हो जाए कमरा तो फिर बंद कर दीजिए, साधारण पंखा चलाकर हम काम चला सकते हैं, और बाद में जब लगे कि हाँ कमरा गर्म होने लगा तो दोबारा भी ये कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब करें तो आपके लिए कई चीज़ें सहूलियतें होंगी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो ये बिजली के उपकरण चलते हैं तो इनसे निकलने वाली जो गैस होती है वो हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। तो पर्यावरण के नज़रिए से भी हम सभी लोगों का इस दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल BLDC पंखों को घर पर लगवा कर भी बिजली की बचत की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि BLDC पंखे क्या है, तो आपको बता दें कि BLDC का मतलब होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। ये एक अत्याधुनिक मोटर तकनीक है जो सामान्य पंखों की तुलना में 65% तक कम बिजली की खपत करती है और बिना किसी आवाज़ या कंपन के बहुत सुचारू रूप से चलती है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा होता है, आपको हवा तो लगती है साथ ही साथ बिजली का बिल भी कम आता है। और हाँ, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो कंडेंसर होता है पंखों में उसको भी अगर सही समय पर हम ध्यान दें बदलते रहें तो इससे स्पीड बेहतर होती है और खपत जो है बिजली की वो भी कम होती है। इसके अलावा फ्रिज की भी अगर हम बात करें तो कई जगह देखा ये जाता है कि लगातार फ्रिज चलता रहता है, तो ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा उस पर सामान रखने की ज़रूरत नहीं है और दीवार से थोड़ा गैप रहे, यानी कि 6 इंच का गैप कम से कम रहे जहाँ आपकी फ्रिज रखी हुई है, तो इससे भी थोड़ी चीज़ें आसान होती हैं। और कई जगह LED लाइट्स जो है अब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बिजली की बचत होती है, यानी कि जो पीले बल्ब होते हैं उनकी जगह LED लाइट्स का इस्तेमाल करके भी हम इस दिशा में काम कर सकते हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे गीजर का इस्तेमाल तभी करें जब हमें ज़रूरत है उसकी, एक्स्ट्रा टाइम के लिए नहीं चलाएं। TV, पंखा, लाइट्स अगर कहीं जहाँ इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है तो क्यों हमें चलाना है, बंद कर देते हैं। इससे फिजूल खर्ची भी बंद होगी और बिजली की खपत भी कम होगी और जो बिजली बचेगी वो देश के विकास में काम आएगी और अच्छी दिशा में हम कदम बढ़ाते जाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाते जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ राजेश और दोस्तों बहुत सारे हमारे साथी हैं जो छुट्टियां अपनी प्लान कर चुके हैं, बच्चों की जो छुट्टियां पड़ गई हैं स्कूलों की, और कुछ की अभी थोड़ी बाकी हैं तो अगले 3-4 दिनों में कुछ और स्कूल्स की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो ये हो सकता है कि अब सभी लोगों के लिए स्थिति लगभग वही है कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो आ चुकी हैं, और इन गर्मी की जो छुट्टियों में क्या करना है, जैसे जिनके गांव हैं, गांव से जिनका अभी भी लगातार आना जाना बना हुआ है, उनके लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है कि बच्चे नई जगह जाते हैं, नई चीज़ें देखते हैं और उस माहौल से बहुत कुछ सीख कर आते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, सोचते हैं कि इस गर्मी में कहाँ जाएं। तो अगर आपने प्लान नहीं किया तो कोई बात नहीं, घर में रहकर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जो आपकी इस गर्मियों की छुट्टियों को खासतौर पर बच्चों के लिए और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही खास हो सकती हैं। तो गर्मी के मौसम में घर के अंदर कई बहुत ही खास चीजें आप कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है और कुछ DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ क्राफ्ट है, ये कर सकते हैं। अगर आपकी लिखने पढ़ने में रुचि है तो आप कुछ लिख सकते हैं, कोई पुरानी यादें, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, या जो बहुत पहले सोचा था कि हाँ कभी समय मिलेगा तो करेंगे, तो अब समय मिला है आप कर सकते हैं वो। और अगर आप किचन की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी बहुत कुछ है, नई रेसिपी आप बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया सीखना अगर आपको पसंद है तो नई भाषा सीख सकते हैं, और कई ऐसे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, किताबें पढ़ना, पहेलियाँ सुलझाना, संगीत सुनना, या फिर कुछ ऐसे कमाल के गेम्स भी हैं जो समय बिताने का अच्छा तरीका। अब चाहे तो अगर आपको चेस नहीं आता तो चेस भी सीख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम आपको सुझा रहे हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में आपके बहुत ही काम आ सकती है। अगर आप थोड़ा एक्टिव रहना चाहते हैं तो घर पर योग कर सकते हैं, डांस वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर फिटनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोस्तों या परिवार के साथ बोर्ड गेम्स जो है वो खेल सकते हैं, मूवी मैराथन कर सकते हैं, कराओके या कुकिंग चैलेंज भी काफ़ी मज़ेदार रहते हैं। तो दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए आप इंडोर कैफे, गेमिंग जोन, म्यूजियम या इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर भी जा सकते हैं, जहाँ ठंडे के साथ साथ मनोरंजन भी अच्छा खासा हो जाता है। और ये जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं इन्हें आप यूं ही ना जाने दें, बल्कि कुछ ऐसी मेमोरीज बनाएं, कुछ ऐसी यादें बनाएं जो अगली जब गर्मियां आए तो आप याद करें कि अरे वाह पिछली बार ये किया था, और इस बार जो करेंगे वो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम अगली गर्मियों में भी बता ही देंगे कि क्या क्या खास चीज़ें हो सकती हैं। और आप चाहें तो आप भी बता सकते हैं कि क्या खास कर रहे हैं आप।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। दोस्तों, ये दूरियां जो है ना, इनकी भी एक अपनी ही कहानी है। एक बहुत पहले फिल्म देखी थी मैंने, मेरा नाम जोकर, राज कपूर साहब की वो फिल्म थी। और उसमें जब वो अपने साथी रशियन कलाकार से पूछते हैं, क्योंकि वो उनका प्रोग्राम हो चुका होता है, वो जाने वाली होती हैं और उनका जाना उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो रशियन कलाकार कहते हैं कि अलग नहीं होंगे तो फिर से कैसे मिलेंगे। कुछ इस अंदाज में हमारे साथ जो दूरियां होती हैं ना, वो भी होती है। और अब इस प्रोग्राम से मैं आपसे अनुमति लूँ, इससे पहले आपको बता दूँ कि आने वाले कुछ घंटों में आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो 6:05 से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। भगवती इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगे। आपके बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं, अपने अपनों तक पहुंचाते हैं। तो भगवती इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगी 6:05 पर। और 7:05 पर होगा हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम जिसका नाम है लाइव वायर, और सुशांत मल्होत्रा इस प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। इसके बाद 8:00 से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम म्यूजिक मस्त

एक बार फिर से भगवती होंगी आपके साथ और 9 बजे से आप सुन पाएंगे द आकाशवाणी पॉडकास्ट और 10:05 पर एक बार फिर से सुशांत मल्होत्रा लेकर आएंगे हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम जिसका नाम है संडे रिक्वेस्ट, जिसमें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने प्रोग्राम की गानों की। और उसके बाद 11:05 पर होगा प्रोग्राम रंगे महफिल, जिसे लेकर आप तक पहुंचेंगी जरीन नाज। तो ये अगले कुछ घंटों के हमारे जो कार्यक्रम है वो है, और आपकी जो बातें हम तक पहुंची हैं उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद कहते हैं। सौरभ अनेजा गाजियाबाद से अपनी बातें लिखकर आपने पहुंचाई, इसके अलावा जयराम खोरवाल जी ने लिखा और इस प्रोग्राम में जो हमने की उनको अच्छी लगी। साथ ही साथ हमारे साथ रहे राजेश भल्ला कंकरखेड़ा मेरठ से, और मुंबई से आकांक्षा ने भी अपनी बातें हम तक लिखकर पहुंचाई। और दोस्तों कुछ और बातें भी आई हैं, कुछ बातें गर्मियों के हिसाब से। पानी के लिए किसी ने लिखा है कि अक्सर हम पानी की एक्सपायरी डेट अपनी सुविधा और सोच के हिसाब से तय कर लेते हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि शहरों में जहां नल का पानी रोज आता है वहां कल का पानी बासी मानकर बहा दिया जाता है। यहां पर एक्सपायरी डेट जो है वो हम तय करते हैं। जहां पानी 2 या 8 दिन में आता है वहां वही जो पानी है वो 8 दिनों तक बिल्कुल ताज़ा रहता है। अगर शादी समारोहों की बात करें तो हाथ में जो बोतल आती है तो आधी बोतल अगर रह जाती तो उसको फेंक दिया जाता है। और रेगिस्तान में यात्रा करते समय पानी की एक एक बूंद तब तक अमृत की समान रहती है, ताज़ी रहती है, जब तक कि अगला जल स्रोत न मिल जाए। और प्रकृति में बांधों और तालाबों का पानी अगले मानसून तक, यानी कि कई बार तो और भी लंबे समय तक बिल्कुल उपयोगी रहता है। और बोरवेल में तो न जाने कितने साल पुराना पानी होता है और वो सेहत के लिए अच्छा भी होता है। यानी कि पानी की जो जब हम बात करते हैं तो पानी का उपयोग जो है हमारी विवेकशीलता, जिम्मेदारी और संयम बहुत मांगता है। तो इसमें ध्यान दें कि पानी खत्म होने से पहले हमें हमारी ये लापरवाही सोच कि हम पानी को जिस तरह से ज़ाया करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है और जल है तो कल है, जल को सुरक्षित रखें। चलिए इसी मैसेज के साथ आप राजेश को दीजिए अनुमति, चलते चलते एक और बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और आपके साथ हूँ मैं, मुझे कहते हैं भगवती। तो बताइए कैसे हैं आप, कैसे हैं बताइए तो। वैसे आप तो जानते ही हैं कि आकाशवाणी 90 सालों के आपके साथ के अपने सफर को अलग अलग तरह से मना रहा है। मनाते मनाते आगे बढ़ रहे हैं हम। अब तो 24/7 आपके साथ होते हैं ना हम, आपकी सेलिब्रेशंस में, आपके अकेलेपन में, संघर्षों के समय, जिंदगी के सफर में साथ हैं हम। किसी लंबी जर्नी में अगर अच्छे से गीत बज रहे हों तो यात्रा भी आसान हो जाती है ना, मज़ेदार हो जाती है, कहें कि यादगार बन जाती है। तो बताइए कोई ऐसा गाना जिसने आपकी किसी जर्नी को बिल्कुल मेमोरेबल बना दिया हो। जब भी आप किसी सफ़र पर जाने की बात सोचते हो तो आपको अपना वो सफ़र याद आ जाता हो, वो जर्नी याद आ जाती हो, साथ में याद आ जाता हो वो गाना। तो कोई ऐसा गाना आप हमें बता सकते हैं। और कई लोग तो ना पढ़ाई भी रेडियो के साथ करते हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं तो बताइए कोई ऐसा गीत जो आपके उस समय आपने जो है उस समय सुना हो, पढ़ते पढ़ते आप सुनना पसंद करते हो जैसे, और वो टफ मोमेंट्स जो है आपको उस गाने की वजह से जो है आसान लगे हों। या कई बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और बहुत मतलब करते करते थक जाते हैं, बोरियत सी होने लगती है, तो मतलब अपने को जगाए रखने के लिए, अपने को जो है पढ़ाई के मूड में बनाए रखने के लिए, जो मोमेंटम है उसे बनाए रखने के लिए भी होता है, हर एक का अपना एक फेवरेट सॉन्ग होता है कि उसे बजा लिया तो बस अच्छा मूड हो जाता है। तो फिर ऐसा कौन सा गाना है आपका, वो आपको बताना है भगवती को। बस यही जानना चाहती हूँ मैं आज आपसे आपके मैसेजेस के जरिए। तो 9868107070 है नंबर, जानती हैं आप, 9868107070 इज द नंबर फॉर योर मैसेजेस एंड भगवती इज वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। तो जल्दी से बताइए हमें अपना वो वाला गाना।

सौरभ ने गाजियाबाद से कहते हैं गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक. गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक. हम भी यही कहते हैं आपसे. ये हैं सोनू बिजनौर से कहते हैं, मेरा फेवरेट सॉन्ग तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना. कोई भी काम करो, अटक रहा हो, इस गीत को सुन लो, सब काम आसान हो जाते हैं. कई बार ऐसा हुआ है कि जो थकान थी ना वो भी नहीं रही, वो भी जाती रही इस सॉन्ग को सुनने के बाद. अच्छा जी, नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से कहते हैं गुड इवनिंग, शुभ संध्या. शुभ संध्या आपको भी. कहते हैं हमारा जो सबसे पसंदीदा सॉन्ग है हर सिचुएशन में वो है मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे. क्या म्यूजिक, और इसके बोल जो है वो एकदम रिलैक्स कर देते हैं. बोर्ड्स के वक्त रात के 2 बजे तक पढ़ते हुए जिंदा सुनता था, नींद भी भाग जाती थी और कॉन्फिडेंस भी आ जाता था. ये है देव फरीदाबाद से. रिया भोपाल से कहती हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के दौरान मैं रात रात भर मैथ्स पढ़ती थी, उस समय अरिजीत सिंह का इलाही गाना बार बार सुनती थी. पता नहीं क्यों वो गाना सुनकर स्ट्रेस कम हो जाता था और पढ़ाई में मन लगने लगता था. वाह रिया, सच में इलाही में ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब है. पढ़ाई का प्रेशर हो या लाइफ का टेंशन, ये गाना मुस्कुराना सिखा देता है. उम्मीद है आपके एग्जाम्स भी जो है शानदार गए होंगे. You are tuned in to Akashwani Rainbow. Program hai Message Masala Mix. Aur main hoon Bhagvati.

कुछ गाने ना सिर्फ गाने नहीं होते, वो यादों के साथी बन जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की वो खामोश रातें, टेबल लैंप की रोशनी और बैकग्राउंड में बजता एक फेवरेट सॉन्ग। बताइए आपका वाला सॉन्ग।

मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से कहते हैं कि मुझे रेडियो सुनते हुए 2 दशकों से भी अधिक समय हो गया है, क्या बात है। कहते हैं वर्ष 2000 से मैं रेडियो का नियमित श्रोता रहा हूं। उस दौर में मैं हॉस्टल में रेडियो रखता था और खास तौर पर कुमार शानू जी के गीत बहुत सुना करता था। आज भी आकाशवाणी के देश भर के रेडियो स्टेशनों पर फरमाइश भेजता हूँ। सफर में जब भी मौका मिलता है रेडियो साथ चलता है। यूं कट जाएगा सफर, साथ चलने से जैसी बातें रेडियो और श्रोताओं के रिश्ते को और खूबसूरत बना देती हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि ये कहते हैं कि इससे जो है ये जताना चाहते हैं इस मैसेज से जो है रेडियो से जुड़ी पुरानी अपनी यादें मतलब ताज़ा हो रही हैं इनकी, कह रहे हैं, और इनका जो लगाव है रेडियो से वो हमेशा बना रहेगा। हम भी ये चाहते हैं जी, हमेशा बना रहे ये लगाव। राजेश कुमार चौहान जालंधर से कहते हैं रेडियो से मेरा बचपन से ही जो है साथ है। अब तो ऑन एयर ऐप से मैं अपनी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के बाकी सभी राज्यों के रेडियो कार्यक्रमों का आनंद भी लेता हूँ। ऐसा लगता है जैसे सारा हिंदुस्तान ऑन एयर ऐप से मेरे पास है। ये एक गाना है जो मुझे आज भी पुरानी यादें मेरी ताज़ा कर देता है और वो है पर्वत के पीछे चंबे का गांव, महबूबा फिल्म का गाना है कहते हैं। और कहते हैं क्योंकि इसमें मेरी मातृभूमि हिमाचल की झलक है इसलिए जो है इन्हें ये गाना बहुत पसंद है। हीरामणि वर्मा दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से कहते हैं कि अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये गीत सफ़र के दौरान सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा रफ़ी, लता, आशा जी, मुकेश, किशोर कुमार जी आदि के पुराने गीत सफ़र के दौरान धीमी आवाज़ में सुनने का मज़ा ही कुछ और है। सफ़र यूं ही कट जाता है। कहते हैं कि कल ही हिल स्टेशन अमरकंटक घूम कर आया हूँ जी, तो कौन सा गाना इस जर्नी में जो है आपके साथ था जो आपको अच्छा लगा, जिसने आपकी जो जर्नी है उसको मज़ेदार बना दिया, वो भी हमारे साथ शेयर करिए। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ कहते हैं सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। फिल्म तीसरी कसम का ये गाना हम किसी भी समय सुन सकते हैं, सफ़र में, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, ये सदाबहार नगमा है जो हमें बहुत ही पसंद है। तो चलिए सुना देते हैं एक बार फिर आपको।

राजेश भल्ला कंकड़केरा मेरठ से कहते हैं कि शुभ संध्या जी, रुक जाना नहीं कहीं, हार के कांटों पर चलकर मिलेंगे साये बहार के। किशोर कुमार का ये गाना जो है पढ़ाई के समय से दिल से जुड़ा हुआ है। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से कहते हैं, सफर में हमें ये गीत याद आता है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, सफर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़ इन्होंने मेंशन किया है। और कहते हैं पढ़ते समय हमें ये गीत बहुत जो है याद आता है, पढ़ते समय का ये गाना कह रहे हैं ये। अच्छा जी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार कर, इम्तिहान फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़। दोनों का मतलब कि गाना एक ही है जो पढ़ते समय इन्हें इंस्पायर करता था, इन्हें मतलब बोर नहीं होने देता था। चलिए सुन लेते हैं ये गाना भी। और आप भी हमें बताते रहिए उन गीतों के बारे में जिन्होंने आपका साथ दिया रात को देर तक जागते हुए, या सुबह जल्दी उठकर कर पढ़ाई जो करते हैं ना पढ़ते हुए, और साथ में किसी अच्छे सफ़र से जुड़ी कोई याद जिससे कोई गाना भी जुड़ा हो, जो रहा हो आपके साथ, उसे भी शेयर कर सकते हैं आप भगवती के साथ। 9 8 4 1 0 7 0 7 0 है नंबर, 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 इज़ द नंबर।

भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली कहते हैं कि जो है एक गाना रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये वो गाना है जो मैं सुनता हूँ, जब सुनता था जब मैं ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर रहा था, और इस गाने ने मुझे सच में बहुत इंस्पायर किया एग्ज़ाम्स में अच्छा करने के लिए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: कुछ लोगों को ना बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर भी पढ़ाई कब और प्लेलिस्ट ज़्यादा याद रहती है, क्या अभी उन लोगों में से है? किसी ने ऑल इज वेल लगा के मैथ्स निकाला तो किसी ने ब्रेकअप सॉन्ग्स जो है सुन के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और सफर में विंडो सीट, चिप्स का पैकेट और एक प्यारा सा गाना, एक प्यारा सा बजता हुआ ट्रैक, क्या चाहिए? और बताइए कौन सा गाना बना आपका लेट नाइट स्टडी पार्टनर या लॉन्ग ड्राइव दोस्त। मैसेज भेजिए और यादें ताज़ा कीजिए मैसेज मसाला मिक्स पर। 9868107070 है नंबर मैसेज भेजने के लिए। भगवती है आज आपके साथ। और एक मैसेज आदित्य जयपुर से कहते हैं, मैं अपने परिवार के साथ पहली बार मनाली रोड ट्रिप पर गया था। सफ़र में यूं ही चला चल गाना बज रहा था, आज भी वो गाना सुनते ही पहाड़ और ठंडी हवा याद आ जाती है। तो फिर सुनी लेते हैं ना।

हमारा तो यही मानना है पढ़ाई यदि मनपसंद कार्यक्रम सुनते हुए की जाए तो उसका अपना अलग ही अनुभव होता है। अच्छा जी, और पढ़ाई क्या, हम तो किसी भी कार्य को रेडियो सुनते हुए करने में अपने आप को बड़ा ही सहज मानते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक कह रहे हैं, पर आपने बताया नहीं कि पढ़ाई करते हुए जो है आप कौन सा गाना सुनते थे, या कोई पर्टिकुलर सॉन्ग से जुड़ी हुई आपकी कोई याद जो कि पढ़ाई के समय आपने सुना हो और जिससे आपकी कुछ बोरियत कम हुई हो या फिर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ा हो, आप मोटिवेट हुए हो। शोभापुर मेरठ से मोहम्मद शौकीन अंसारी कहते हैं, जब हम किसी सफर में होते हैं तो ये गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फिल्म सुहाना सफ़र से टाइटल सॉन्ग। इस गाने को सुनकर सफ़र का मज़ा बढ़ जाता है। मिसबा शमसी फ्रॉम नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से कहती हैं, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं सैड सॉन्ग सुनती हूँ, लेकिन जब मैं खुश होती हूँ या खुद को मोटिवेट करना चाहती हूँ तो मैं यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से सॉन्ग सुनती हूँ। ये सॉन्ग मूवी हम है राही प्यार के का है, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन ना एक चीज़ है, जब सैड होते हैं ना तब सैड सॉन्ग नहीं सुनना चाहिए, तब कुछ ऐसे सॉन्ग सुनने चाहिए जो आपके मूड को लिफ्ट करे ताकि आप सैड ना रहें ना। कहते हैं, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की राय पसंद आ रही है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, कहिए ना। जब मेरा रिश्ता हुआ, शादी पक्की होगी लड़की देख कर आया, तब बस की खिड़की पर बैठा, बस एक ही गाना बज रहा था और बस में तुम जो मिल गए हो जाने न दूंगा, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। ओके जी, भारती फ्रॉम नोएडा कहते हैं, मैं कार से नोएडा से उत्तराखंड जा रही थी, बढ़िया मौसम था और रेडियो पर बज रहा था जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, मज़ा ही आ गया था। किशोरदा की आवाज़ का जादू और गाने का म्यूज़िक, बोथ आर जस्ट अमेजिंग। एक बार फील करके देखते हैं।

अनिल शर्मा सरिता विहार से कहते हैं कि बचपन में नानी के घर छुट्टियों के लिए जाते थे तो खिड़की वाली सीट पर बैठने की जिद करते थे और कई बार मान ली जाती थी। कहते हैं कि गाना रेलगाड़ी चली छुक छुक फिल्म आशीर्वाद का, जो कि 1968 में बनी थी, जिसमें अशोक कुमार पर ये गाना फिल्माया गया था, कहते हैं ये गाना इन्हें तब बहुत पसंद आता था सुनना। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभार इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं। ये गीत मुझे बहुत पसंद है और यात्रा के दौरान कई अनजान लोगों से हमारी मित्रता हुई जो आज भी कायम है। भेरूलाल वाकतरिया धाकर उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं ये। स्नेहा पुणे से कहती हैं कि 12वीं के बोर्ड्स के दौरान मैं रात को कॉफ़ी लेकर पढ़ती थी और बैकग्राउंड में आजमाले गाना चलता रहता था, उस गाने ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं भगवती।

मैं कुकिंग करते हुए सॉन्ग सुनती हूँ, खाने में अच्छी वाइब्स आती हैं, खास कर जब भजन चलते हैं। सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से कह रही हैं, पुरुषोत्तम कुमार भद्रवाह से कहते हैं, जब मैं अकेला तन्हाई में होता हूँ तो गाना सुनता हूँ, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना है महंगाई मार गई, मैं हर रोज़ ये गाना जो है सुनता रहता हूँ। मोहम्मद सलमान हुसैन फ्रॉम पीर पांती बाज़ार भागलपुर बिहार से, आई होप मैंने नाम जगह का जो है सही प्रोनाउंस किया हो, कहते हैं चैनल गाने की फरमाइश भेजी है, कहते हैं प्रोग्राम पसंद आ रहा है जानकर अच्छा लगा, पर गाने की फरमाइश तो नहीं ले रहे हम इस शो में, हम सिर्फ जानना चाह रहे थे कि आपके एग्ज़ाम्स की पढ़ाई के दौरान, आपके संघर्षों के दौरान कोई गाना आपका साथी बना हो, या फिर आप किसी सफ़र पर जा रहे हो और किसी गाने ने आपके सफ़र का मज़ा दोगुना कर दिया हो, ऐसा कोई सॉन्ग हमें हमारे साथ जो है शेयर करें, हमें भेजें। हम ये कह रहे हैं आपसे, पढ़ाई करते समय हमें गीत रुक जाना नहीं तो कहीं हार के बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों को जो है इस गाने ने बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ाई, उनका साथ दिया है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें ज़िंदगी में कहीं भी आगे बढ़ते हुए जो रुकना नहीं है, बढ़ते ही जाना है। किशन वंजनी, नीलम, स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कह रहे हैं ये। रोहन दिल्ली से कहते हैं, मैं ट्रेन से मुंबई जा रहा था, रात के 2 बजे थे, बाहर सिर्फ अंधेरा था और कानों में चन्ना मेरे, उस सफ़र का एहसास जो है मैं आज भी नहीं भूलता। रात का सफ़र और चन्ना मेरे, मतलब पूरा बॉलीवुड वाला फील जो है, कुछ गाने अकेले मन को भी खूबसूरत बना देते हैं ना, मतलब हर एक की अपनी चॉइस है सॉन्ग्स की और हर एक का जो है किसी पर्टिकुलर मूड पे कोई पर्टिकुलर टाइप का गाना हम सुनना पसंद करते हैं। नहीं, काव्या लखनऊ से कहती है, मेरे बोर्ड एग्जाम्स के समय कर हर मैदान फतेह मेरा फेवरेट था, जब भी नींद आती थी ये गाना सुनकर फिर से पढ़ाई शुरू कर देती थी। काव्या, सलाम है आपके जज्बे को, मतलब कि बिल्कुल नींद को भगाने के, मतलब हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं और आपने ये तरीका ढूंढा और ये गाना जो है ना सच में हार न मानने की ताकत देता है। और ऐसे गाने, इस तरह के गाने जो है ना सिर्फ एंटरटेन करते हैं बल्कि इंस्पायर भी करते हैं, हमें मोटिवेट भी करते हैं।

पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक। इनका मैसेज पढ़ा जा चुका था कि नहीं पढ़ा गया। कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान आकाशवाणी से अक्सर अपने मनपसंद कार्यक्रम सुनते थे और कहते हैं यूं तो मनपसंद गीतों की लंबी सूची है, लेकिन एक गीत को अक्सर हम सुनते थे, सफर फिल्म का गाना जीवन से भरी तेरी आंखें, किशोर कुमार की आवाज। बहुत ही प्यारा गाना है। लातूर महाराष्ट्र से मनीषा मगर कहते हैं कि जब भी मैं अकेली होती हूँ, कुछ अच्छा सा ना लगे, तो मैं एक गाना सुनती हूँ जिससे मेरा मूड भी अच्छा होता है। गाना है गोविंदा का गाना है, कह रही एक नया आसमां आ गए दो दिन।

प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं, भक्ति गीतों में बहुत सुकून मिलता है, फिर पढ़ाई कर रहे हो या सफर, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। गुरु धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से कहते हैं, जब मैं पढ़ाई करता था तब शोले पिक्चर का गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे मेरा फेवरेट था, अब भी है, यही सुनता था।

इकबाल राय गुलाटी भगवान नगर कॉलोनी पिपली कुरुक्षेत्र से कहते हैं, जय हिंद जय भारत। जब मेरी 1988 में शादी हुई थी तो गाना बजा था बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, क्या बात है।

दिव्या मौर्य कस्बा जायस गांव नगदयापुर जिला अमेठी यूपी से कहती हैं कि जब मैं 12वीं कक्षा में थी तब ये गाना मोटिवेट करता था। गाना था है कि माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर।

और अब इसी के साथ आपकी दोस्त भगवती लेती है आपसे अनुमति, घंटे भर बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, मिलते हैं जल्दी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने

0: आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में। और पूरी मस्ती के साथ आपके साथ है आपकी अपनी आरजे भगवती।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
9: यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो, सो स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में साथ है आपका और भगवती का।

0: गुस्से में लाल अखियां इज फाइन, गुस्से में पीली अखियां।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कोई भी बहाना नहीं है, ये फैक्ट है, समय हो रहा है, भगवती को जाना पड़ेगा, लेनी पड़ेगी आपसे अनुमति। तो फिर अभी के लिए चलती हूँ, जल्द ही फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, नमस्कार, गुड नाइट।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ

0: आप लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, दी आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें 9 अंक की तो बहुत खास होता है। ये पूर्णता, परोपकार, अध्यात्म और ज्ञान का प्रतीक होता है और ये बताता है कि ये जीवन का ना कई चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का ना 9 अंक से बहुत खास लेना देना है, क्योंकि जो प्रसार भारती है उसका जो रेडियो डिवीजन है वो अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिसने 90 सालों के सफर को या उसके बहुत अहम पहलुओं को करीब से जाना है, समझा है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी मिताली चैटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: आपनी शौक तो क्या बोलते हैं आप बताएं?
3: शुशा को तुम, अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ यूपीआईट।
2: ओ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी, धन्यवाद।
2: आपके करियर से शुरुआत करते हैं।
3: जी,
2: रेडियो हम सब सुनते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो जब आप रेडियो सुनती थी, क्या कभी आपने सोचा था कि आप रेडियो में जाकर काम कर रही होंगी?
3: हाँ, ये बात आपने बहुत पूछी है जो मेरे दिल के काफी करीब है। इनफैक्ट वो दौर ही कुछ और था, 80s का दौर था, और उस समय रेडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था हर एक के जीवन में, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट कुछ भी नहीं था और टीवी भी नहीं था, तो रेडियो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए इट वाज अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट। और एक फैसिनेशन भी होता था, क्योंकि वहां पे द पीपल हु वेर प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स वो लार्जर देन लाइफ होते थे हम लोग के लिए, कि हम लोग एक इमेजिन करते थे। रेडियो में वही पक्ष सबसे मजेदार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जी, कैसे हो रहा होगा पीछे।
2: तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर आकर क्या बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने सोचा था?
3: देखिए, एक शुरुआती में जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन माय टीन्स।
2: ओके।
3: और मैंने बतौर एक क्लासिकल सिंगर युववाणी में एग्जाम दिया था एंड आई गॉट थ्रू इट, तो वो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। और मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे यहीं पे काम करने को मिलेगा एज एन इंजीनियर।
2: उतने लंबे समय में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, आपने शायद बताया कि 33 सालों तक आपने काम किया, 3 दशक से भी ज्यादा। क्या उस समय से लेकर अब तक एक ट्रेडिशनल वे में जब हम काम करते थे और आज इंटरनेट के दौर में और डिजिटल एरा में क्या फर्क आया है, क्या एवोल्यूशन आपने देखा है?
3: एक तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने वो पुराने दौर से लेके डिजिटल एरा तक का सफर पूरा अपनी आंखों से देखा है।
2: बिल्कुल।
3: अपनी सर्विस के दौरान, और मैंने हर एक पल को जिया भी है बहुत नजदीकी से।
2: डेफिनेटली।
3: एंड सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना AIR, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन कहाँ चला गया, क्या है, लेकिन उस समय इसका एक ओहदा ही कुछ और हुआ करता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था 1997 के आसपास, AIR वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेडियो ऑन इंटरनेट की शुरुआत की थी, और वहां पे हम लोग के पास इतने प्रोग्राम मतलब इतने ईमेल्स आया करते थे, और हम लोगों ने R&D रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग के पास सैकड़ों की तादाद में आया करते थे, क्योंकि फॉरेन में उस समय इस तरह के भारतीय प्रोग्राम्स का कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय DTH शुरू नहीं हुआ था।
2: बिल्कुल।
3: तो वो एक दौर था कि उस समय डिजिटल 1998 में रेडियो ऑन इंटरनेट शुरू हुआ
2: जी,
3: तो वो एक बहुत ही यादगार समय है। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय तो FM इट स्टार्टेड
2: जी,
3: तो वो भी एक हमने देखा था कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था काम करके।
2: बिल्कुल। डिजिटल एरा में आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, किस तरफ जा रहे हैं हम?
3: देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आदमी की ह्यूमन एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए होता है
2: जी,
3: और उसको उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी भी है एक प्रोग्रेस के लिए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसका एक डाउनसाइड ये है कि जब टेक्नोलॉजी ही हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है। मैं इसका एक जस्ट एग्जाम्पल दूंगी, इससे रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि पहले ड्राइवर्स जो थे उनको पूरे रोड्स दिल्ली में मालूम होते थे, आज के डेट में कोई भी ड्राइवर लेके गूगल मैप पहले ऑन करता है उसके बाद गाड़ी चलाता है।

0: वो तो
1: बिल्कुल
0: फर्क, बहुत फर्क है, लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल माध्यम ज्यादा सशक्त है, लेकिन जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको सामने ही सब कुछ दिखता है कि जो आदमी एक्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन रेडियो में एक वो तिलिस्म, या आप कह सकते हैं कि
1: जादुई दुनिया,
0: एक जादुई दुनिया, और आप जिनकी आवाज सुन रहे हैं, यू यू आर फ्री टू इमेजिन द पर्सन
1: बिल्कुल
0: बिहाइंड दैट.
1: बिल्कुल
0: आई फील दैट वे AIR हैज़ द एडवांटेज, क्योंकि जब हम लोग हवा महल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, शायद वही जो आर्टिस्ट है पीछे वही कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब भी उनकी बातों को सुनते हैं या उसके हिसाब से हम उसको इमेजिन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है.
1: राइट राइट
0: जी
1: अगले 10-20 सालों में आपको क्या लगता है रेडियो कहाँ पहुंचेगा, या क्या AI का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा जैसा कि डर बना हुआ है, जिस तरह से टेलीविजन के क्षेत्र में भी जो है AI आ चुका है, और रेडियो में क्या किस तरह की चीजें हो रही हैं?
0: देखिए, AI जो है आज के दिन में सब जगह पेनिट्रेट कर चुका है, और मुझे लगता है कि जब तकनीक अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना भी वाजिब है. लेकिन वही है कि AI को इस्तेमाल करते करते हम अपनी RI को ना भूल जाएं, रियल
1: जी
0: इंटेलिजेंस, विच इज़ अ ह्यूमन एसेट. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि AIR के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी इसकी ताकत है, आप लोग के प्रोग्रामिंग स्टाफ का, क्योंकि इनको इतने अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, दे आर कमिंग फ्रॉम UPSC, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि कम से कम हम लोग ग्रास रूट लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि आज का जमाना देखिए, इट इज नॉट वॉर्स आर द रियलिटी टुडे. वी नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में वॉर्स होंगे,
1: जी.
0: लेकिन और एक चीज और है कि इसमें संचार माध्यम या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जैसा आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है,
1: जी, मैं वही बात कर रही हूँ
0: वो
1: कि
0: बहुत जरूरी
1: ग्रामीण
0: है.
1: इलाकों में, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते भी
0: जी
1: नहीं हैं, और उनको अक्सर ठगा जाता है,
0: बिल्कुल
1: ये होता है,
0: बिल्कुल
1: तो ये नहीं होना चाहिए.
0: बिल्कुल, ये बहुत
1: चलिए,
0: डेंजरस है.
1: अभी तो हमने बात करी कैसे एवोल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ RJ को जानते हैं या अनाउंसर को जानते हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है. जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी एक टीम है यहाँ पर काम कर रही है,
0: जी
1: उसके बिना ये पॉडकास्ट लाइव नहीं हो सकता है.
0: बिल्कुल.
1: तो उसी तरह से रेडियो में भी है, किस तरह से पूरी जर्नी होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो जो पकी पकाई खीर है लोगों तक पहुंचती है, उसको टेबल तक पहुंचाने का काम करने वाले लोगों का नाम भी आना चाहिए सामने, क्या रहता है वो पूरा प्रोसीजर?
0: देखिए, वाकई में तो ये सारा का सारा फिजिक्स एंड साइंस की करामात है,
1: जी
0: जो हम लोग इतने दूर बैठे भी सबकी बातें या देख सकते हैं, तो उसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है तकनीकी. पहली बात तो हम आप जहाँ पे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस कमरे से दूसरे कमरे में जाके ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है. तो ये एक, यहाँ पे डिजिटल में तो इनकोडिंग की प्रोसेस भी होती है उसके बैंडविड्थ को कम करने के लिए, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर से हमारी वॉइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं,
1: ओके, तो
0: जो
1: क्या
0: आप
1: क्वालिटी
0: माइक्रोफोन से.
1: में चेंजेस आते हैं या वैसे ही रहती है?
0: नहीं, इट डिपेंड्स. से डिजिटल में तो आज के डेट में क्वालिटी, इनफैक्ट आप जो सुनते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, यू कैन इम्प्रूव इट रादर,
1: राइट
0: कि
1: राइट,
0: आपने कहीं पे गलत बोल दिया या
1: वेरी
0: आपकी
1: ट्रू.
0: आवाज में खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन नहीं, इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक है, आज के डेट में AIR प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है सारे, तो उसमें उस तरह की डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है. और बाकी जो है हमारे तकनीकी जो सहायक हैं, वो लोग भी काफी अच्छे से अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई डिटरेशन है.
1: राइट.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: अब बात करते हैं कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स काम करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आकाशवाणी का जो है वो एक अलग अंदाज रहा है जिसे लोग याद करते हैं, और
0: जी
1: बहुत ही सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है आकाशवाणी, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायम है. ऐसा नहीं है कि हम भाषा अच्छे इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. अभी इस फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में किस तरह से बाकी रेडियो चैनल्स जब बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं, तो कैसे पब्लिक

0: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारी जो है वो अपने आप को सहज बना पाती है या उस तरह से प्रस्तुत कर पाती है लोगों के सामने?
1: देखिए, बहुत ही एक कठिन सवाल आपने पूछा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ठीक है, एक समाज के हिसाब से जो बने थे उस समय जैसे भी बने हैं, तो उसके दायरे में रखकर सारी चीज़ों को करना मुश्किल होता है प्रोग्राम, क्योंकि आज के दुनिया में जो चीज़ें पहले शायद वो कहते हैं ना नियो नॉर्मल, तो पहले जो चीज़ें शायद स्वाभाविक नहीं थी, आज के डेट में वही चीज़ें आज के डेट में स्वाभाविक हैं। तो आप अगर उसको कुछ चीज़ें कर्टेल करते हो तो स्वाभाविक है आप यंगर जनरेशन के बीच में आप थोड़े से ऑकवर्ड लगोगे। तो वो तो एक कहीं पे है, और इसमें इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को आपने सैक रेस वाला ड्रेस पहना दिया और उसको बोला गया जाए कि मैराथन दौड़ो।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो कठिन है। यस
0: राइट।
1: लेकिन साथ में आकाशवाणी का ये एक बहुत अच्छी भी बात है कि इसकी एक अलग पहचान है। इसको आप सारे परिवार के साथ आप सुन के बैठ के देख सकते हो, प्लस उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और बहुत सारी प्रोग्राम मुझे लगता है जेंजी भी सुनती। मैं अभी देख रही थी, इंटरनेट पे मैं चेक कर रही थी, करीब 50% लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो आप जानती हैं गाड़ी में ट्रैवल करना कितना लंबा और डिफिकल्ट होता है, तो लोग रेडियो सुनते हैं कि दैट्स द ओनली वे दैट दे गेट एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगता है वहाँ पे AIR का ऐसा भी नहीं, लोग सुनते हैं, मैं तो सुनती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुनते हैं स्पेशली अच्छे वाले प्रोग्राम,
0: और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: इतना लंबा समय जो आपने बताया यहाँ पर आकाशवाणी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे वर्क कल्चर में या पर्सनल, या फिर क्या आपके टेक अवेज यहाँ से रहे?
1: देखिए, उस हिसाब से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वर्क कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और इसमें चाहे आपके सीनियर्स हो चाहे आपके कलीग्स हो, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे गिव यू द स्पेस। और शुरू में मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मेरे हम लोग थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आए थे डायरेक्टली क्लास 10 सर्विस में, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुंचे तो नेचुरली एक फ्रेश रिक्रूट को कुछ भी पता नहीं होता है कैसे, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड कैसे उसको बिहेव करना है। तो माय बॉस कॉल्ड मी वन डे, वी वर गिवन अ रूम, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दिस, और उस समय काफी लोग रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा। तो सर आए मेरे कमरे में, ही सेड कि लिसन, यू आर जस्ट गॉट एंट्री टू दिस सर्विस, आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है, गो टू द फील्ड्स।
0: ओह माय गॉड।
1: सो हम लोग जाते थे, और फील्ड्स में उस समय जैसे एंटीना ट्यूनिंग यूनिट वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे, कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे, तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड लेकिन अच्छा लगता था, मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में, और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल। तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी, मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद।
0: जी, आपने भी बीच में बात करी थी रिस्पेक्ट की, तो मैं इस बात पे आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर इंजीनियर इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे, तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है, क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
1: देखिए, उस समय की तो बात ही अलग थी, मे बी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक। उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज्यादा नहीं आते थे, हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वेर देयर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वेर बॉयज, एंड घर से भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी फिर ये है, उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर हु स्टूड बाई मी एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया, लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई, तो एग्जाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, रिजल्ट नहीं निकले थे मेरे, तो मुझे उन्होंने शादी हो गई मेरी, शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द AIR इलाहाबाद, नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती। एंड इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात मैं उस समय की मैं बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, माई फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड वन सेंटेंस, ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉइनिंग टू AIR इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे so that you become

0: इंडिस्पेंसिबल फॉर पीपल, और वो बात तो मैंने गांठ बांध ली और
1: क्वाइट अ सपोर्ट,
0: बिल्कुल. और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती.
1: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो, जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद, कोई ऐसा दिन रहा हो. मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे, बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट.
0: देखिए बहुत सारे इंसिडेंट आज के जमाने में फनी लगती है, लेकिन उस समय तो जान पे आई रहती है. एंड I especially remember one incident. हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे. एंड हम लोग को समझिए आज के जमाने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेकडाउन होता था. दैट वॉज टेकन एज अ मेजर ब्रेकडाउन एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेकडाउन, और बेबी इट विल गो टू योर CR ऑल्सो.
1: बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे.
0: तो एक बार हमारे, और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करने पर, एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, एक गायक आए थे रात के टाइम में, करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का, बाहर एक ऑडिटोरियम में सारे लोग बैठे हुए थे. अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी, मुझे गरम दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे. हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गरम दूध मिलेगा, बिल्कुल, बिकॉज ऑडियंस वॉज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम. सो उस समय जान सांसठ में आई होती है.
1: ड्यूरिंग द प्रोग्राम?
0: यस, इट वॉज ड्यूरिंग, यस.
1: 90 ईयर्स हमारे आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं, होने वाले हैं जल्दी ही. तो इन 90 ईयर्स का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: देखिए मैं तो यही बोलूंगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहां से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है
1: जी.
0: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है, और आज की डेट में जहां पे कम्युनिकेशन आज बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है, तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: एक सवाल मेरा और है आपसे, यहाँ पर जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास कॉम इतना पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट, एज अ करियर?
0: अगर सच बताऊं, वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है.
1: बिल्कुल.
0: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज, इलाहाबाद, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन दे.
1: ट्रू,
0: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और
1: नेचर से जुड़े हुए हैं.
0: हाँ, नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कंपटीशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल. तो और मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माई इन लॉज देवर इन टू दैट फील्ड, तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का. तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे आप
1: रमता गया,
0: आप जानते गए. प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको मतलब कहते हैं ना कि ईंटे से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता है,
1: मल्टीटास्क. मैं वही आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैको फॉल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार. तो वो सारी चीजें, मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली, या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
0: नहीं, पहले से तो नहीं पता होता.

0: किसी को भी फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज. तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर बना दिया. हमारे झूसी में एक हाई पावर ट्रांसमीटर इंस्टॉल हो रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है. तो माई
1: जी
0: बॉस टॉट मी, और बहुत डांट के सिखाते थे
1: जी
0: कि ईंटों को समझना सीखो, ये
1: जी
0: ऑरेंज वाली ईंटें होती है और कच्ची ईंटें होती है, वो नहीं
1: जी
0: लगनी चाहिए.
1: आजकल
0: और
1: स्कूल्स में भी डांट बंद हो गई है. ऑल्दो डांटना
0: नहीं, उस
1: वाज वेरी
0: समय
1: गुड, थोड़ा हम
0: बहुत
1: डरकर
0: चीजें,
1: सीख लेते थे वो
0: बहुत
1: अच्छी
0: चीजें
1: बात थी,
0: जानने
1: थोड़ा
0: को
1: डर होना
0: मिलती थी.
1: जरूरी है. बिल्कुल. अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, मैं एक चीज और पूछ लूं फिर हम आखिरी आपसे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसीजर के दौरान क्या कभी आपको ऑन एयर जाने का भी मौका मिला? कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग में वो भी शामिल है.
0: जी हाँ, मुझे कई बार मिला है. बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन इंजीनियर इन दूरदर्शन शिमला. तो वहाँ पे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि गुवाहाटी या इवन शिमला में भी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का तो बहुत लोग सुनते थे और
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: उसमें
1: जी
0: चार्म था लोगों का. तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते थे कि कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. तो टेक्निकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ों में हमारे
1: जी
0: स्टेशन डायरेक्टर और मुझे कई बार वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग को बैठना
1: कैसे,
0: पड़ता
1: मुझे
0: था.
1: थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहां पर बताइए प्लीज.
0: ऐसे तो रैंडम कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा, क्योंकि आप बैठे हैं जनता के सामने और जनता पूछ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल
1: अलर्ट.
0: और अलर्ट ऑल्सो. जैसे हमारे यहाँ पे वो जनरेटर चलता था, एंड यू नो जनरेटर टू ट्रांसमीटर तक ऑन करने में थोड़ा सा गैप चला जाता है. इट टेक्स टाइम बिकॉज एक के बाद एक चीज़ें ऑन होती हैं. और उसी तरह से तो आम लोगों को नेचुरली ये समझ में नहीं आता है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम ये प्रोग्राम देख रहे थे और बीच में से ये कट गया और इतना सारा मेरा मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया. तो उनका गुस्सा भी वाजिब है,
1: जी
0: हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन वहाँ पे ये भी फैक्ट है कि टेक्निकली अगर मान लीजिए लाइट गई है, जनरेटर आपका तुरंत ही ऑन हुआ है, लेकिन
1: थोड़ा
0: सारे
1: सा
0: सिस्टम को ऑन
1: गैप
0: होने
1: तो
0: में देर
1: होगा
0: वुड बी अ
1: जी.
0: डीले. तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था अच्छे से कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, ये
1: बिल्कुल.
0: इनेविटेबल है.
1: हमारे पास अभी समय की कमी है तो
0: जी
1: हमको अब जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि हमने सिक्के के एक पहलू की बात करी है, हमने आपकी ड्यूटीज की बात कर ली है. अब दूसरा पहलू आता है, हमने सुना है आप बहुत मधुर आवाज की मल्लिका हैं और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेन्ड हैं, तो दो लाइन जो भी आपको पसंद हो जाए.
0: मुझे ऐसे ही रैंडमली कुछ याद आ रहा है. एक बहुत पहले मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल मैंने ये सीखा था, एक भजन है

0: कुंवर
1: क्या बात है आपकी इस गायकी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ना दिन में ही चार चांद लगा दिया. ऑल्दो हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन इसने जो रोशनी बिखेरी है उसके क्या ही कहने हैं.
0: ये कुछ ज्यादा नहीं
1: हो गया. थैंक यू सो मच.
0: कोई चलिए, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच टू यू टू, बिकॉज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका.
0: और आकाशवाणी अपने 90 साल

0: संपूर्ण करने जा रहा है। उस बारे में आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे लिए तो आकाशवाणी हमेशा से ही दिल के करीब रहा है, और आशा करती हूँ कि ये उत्तरोत्तर और प्रगति करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत धन्यवाद।
1: आज के लिए हम इजाजत देते हैं आपसे।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू सो मच।
1: और साथ के साथ हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं हम, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है। शालिनी चाहती है आपसे इजाजत। नमस्कार।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं जरीन। प्रोग्राम आपका अपना, आपकी याद आती रही लेकर। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन कहीं और भागता रहता है? भीड़ में भी अकेलापन और खामोशी में भी एक शोर सुनाई देती है। ये मन ना बड़ा अजीब है दोस्तों, ये वहीं जाना चाहता है जहां शायद उसे सुकून ने बस अधूरी बातें मिलती हैं। दुनिया बदल जाए, मौसम बदल जाए, लेकिन मन का भटकना आसान नहीं होता।

कभी कभी आपने सुना है मन क्या कहता है, कहता है रुक जा, थोड़ा खुद को सुन, और फिर वही मन हर जवाब से दूर भागने भी लगता है। जिंदगी की सबसे लंबी यात्रा शायद दिल से दिमाग तक पहुंचने की होती है। बहरहाल हमें कहाँ पहुंचना है, हमें तो मधुर मधुर संगीत आप तक पहुंचाना है, ताकि आपका मन अगर बोझिल हो तो इन धुनों से, इन अल्फाजों से, इन आवाजों से आप मदमस्त हो जाएं।

बरसे। एग्जैक्टली नैना अगर बोले ना तो दिल की कहानी समझ में आ जाती है। प्यार हो, इंतजार हो या फिर हो शिकायत, सब कुछ इन आंखों में ही तो छुपा होता है जनाब। तेरे नैनों की क्या तारीफ करूं, ये तो समंदर है जिनमें डूब जाने को जी चाहता है। हमारी आंखें हमें इस खूबसूरत दुनिया दिखाने का एक मौका देती हैं बेहतरीन रंग, रोशनी, खूबसूरत दिलकश चेहरे, नेचर्स, सब कुछ तो हम इन आंखों के जरिए ही महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। आपको पता है हमारी आंखें लगभग 1 करोड़ रंगों की पहचान कर सकती हैं, और ये सतरंगी रंग यानी कि हमारे FM रेनबो इंडिया के रंग जो दिल से दिल तक कनेक्टेड है और जहां हम आप तक पहुंचाते हैं एक से बढ़कर एक गाने। अगला ट्रैक मोहित चौहान की आवाज में, जब वी मेट फिल्म का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का

साक्षी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही FM रेनबो पर रात 9 बजे।

इसी वादे के साथ हम जा रहे हैं कि आपसे 11 बजे रंग महफिल में गजलों के प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। और ये कहते हैं आपसे हम अक्सर कि ना आप दूर जाइए ना हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती हम दोनों निभाएंगे। बेशक दोस्त से फासला हो जाए कुछ पल के लिए, मगर उसकी दोस्ती से कभी फासला मत कीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्ती हो जाए रूह से तो उसका रुतबा किसी मोहब्बत से कुछ कम नहीं होता। तो हमारा और आपका जो थोड़ा सा दूरी का वक्फा है वो बहुत मुख्तसर है। एक घंटे बाद आपसे मिलेंगे ना दोबारा, तब तक इस आखिरी गाने के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा पार्टी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शेराली गांव के लगभग 14 लोग सिप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण लू का प्रकोप जारी है और आज दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली NCR के विभिन्न इलाकों में आज अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आयानगर और रिज आज सबसे गर्म स्थान रहे, जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड पर 43.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि पालम और सफदरजंग में 43.7 और 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजोदबेक खालियम्बो एव को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

come here and I suck it in the one time. You move me. Look out.

0: Highway Star by Deep Purple. Time is 2 o'clock, 39 and a half minutes past 8 p.m. Time for me to take a short and sweet break, but do not, and I repeat that, do not touch that dial. I'll be right back after these messages.
1: कोयल से तेरी बोली
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

होगी शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को

त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रंगी महफिल की शुरुआत हो चुकी है। आपके साथ मैं इस वक्त जर्री। ये शहर, ये गलियां जब जब मेरे सामने आए, किसी नए इश्क की तरह तुम बड़ी शिद्दत से याद आए।

आप सुन रहे रंगी महफिल, आपके साथ इस वक्त मैं जर्रीन। मोहब्बत हमेशा मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा खूबसूरत एहसास छोड़ जाती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस मौसम की तरह आते हैं, थोड़ी धूप, थोड़ी बारिश और ढेर सारी यादें देकर चले जाते हैं। वैसे एक बात मानिए, कुछ रिश्ते उम्र भर साथ नहीं चलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेमकसद हैं। तो अगर कोई रिश्ता आज आपके साथ है तो उसकी मौजूदगी को महसूस कीजिए, हर मुस्कुराहट, हर बात, हर पल को जी लीजिए, क्योंकि ये जो आती जाती मोहब्बत है ना, जो पूरी हो नहीं पाई, उससे खूबसूरत चीज कुछ नहीं होती। क्योंकि मोहब्बत की असली खूबसूरती शायद इसी में है कि वो हमेशा नहीं रह पाती, लेकिन जब तलक रहती है ना, दिल के बेहद करीब रहती है। कुछ कुछ इस गजल की तरह।

आसपास हर जगह बेशुमार आदमी है, भीड़ इतनी कि चेहरों का हिसाब रखना मुश्किल है। लेकिन यह अजीब बात है ना कि इसी भीड़ के बीच इंसान सबसे ज्यादा अकेला है। किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के कानों में ईयरफोन, किसी की जिंदगी ऑनलाइन है, लेकिन दिल फिर भी खाली खाली सा है।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने FM रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नहीं आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: कभी आपने भी महसूस किया होगा कि जो रिश्ता बहुत खास होता है वही सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। अक्सर डूब जाते हैं इस खूबसूरत गजल के एहसास में और महसूस करते हैं उन लम्हों को जो शायद आज भी कहीं दिल के किसी कोने में जिंदा है। कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं और एहसास खुद ब खुद आंखों में उतर आते हैं। ये अगली गजल आप तक हम पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई याद इसके मार्फत ताजा हो जाए।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: 11:50 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरी के संग। अब एक ऐसी गजल जो दिल की गहराइयों को छू जाती है, मोहब्बत जुदाई और अधूरे वादों की कहानी बयां करती है ये गजल। साहब, कभी कभी ये रिश्ते जो होते हैं ना, उसमें कुछ वादे किए जाते हैं, कुछ एहसास छिपे होते हैं जो वक्त के साथ कहीं खो जाते हैं और बस रह जाती है तो उनकी यादें। आज की गजल भी कुछ ऐसा ही एहसास लिए हुए हैं, वो जो हम में तुम में करार था। ये गजल उन अधूरी बातों की है, उन खामोशियों की है जो कभी लफ्जों में ढल नहीं पाए। उस्ताद अहमद हुसैन साहब की आवाज में ये गजल आप तक पहुंचा रही हूं रंगे महफिल में।

कह सकते हैं कि सुकून कोई बड़ी चीज नहीं होती इस दुनिया में, छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। जैसे माँ के हाथ का खाना, पुरानी यादों की खुशबू, या फिर बारिश की पहली बूंद। कभी कभी हमें बस रुकना होता है, खुद को वक्त देना होता है। और रुक रही हूँ मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो चुका है। इसी वादे के साथ जा रही हूँ कि अगली दफ़ा किसी खूबसूरत मोड़ पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने और दुनिया को अधिक विकल्प प्रदान करने में दोनों देशों का साझा हित है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटी

ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल यही प्यार है, और इंतज़ार से शुरू होने वाला प्यार वाकई प्यार होता है। आप किसी के इंतज़ार में हैं, कुछ घड़ियां आप गिन रहे हैं कि किसी से मिलना है, इतनी शिद्दत से मिलना है। सिर्फ प्रेम संबंधों से ही हटके भी अगर बात करें तो दुनिया में भी आप प्रैक्टिकल लाइफ भी जब कैरी ऑन कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, उस समय भी इंतज़ार के ना अपने मायने होते हैं, उसकी अपनी एक हैसियत होती है खुद की। हर इंतज़ार शुभ और लाभ, और लाभ और हानि के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता, उसका संदर्भ भी अलग अलग होता है। तो इंतज़ार के अपने मायने, और इंतज़ार से शुरू होने वाली हर डील, हर मोहब्बत, हर प्रेम संबंध कामयाब होता है, क्योंकि उसमें सब्र की इंतहा आप जांच पाते हैं, अपनी भी और सामने वाले की भी। और यहाँ भी इंतहा हम जाँच पाते हैं किस शिद्दत के साथ आप हमारे हर प्रोग्राम, हर शो का इंतज़ार करते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। और इसीलिए इंतज़ार शब्द से आज शुरू करने का सोचा। जीरो और शो हो चुका है शुरू, दिन का पहला प्रोग्राम आज के दिन का, आज हो गई अब 25 मई 2026 की, इसका ये सबसे पहला शो है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर, आपकी जानी मानी फ्रीक्वेंसी, हिंदुस्तान की सबसे पहली एफएम फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा आकाशवाणी की ऐप पर भी हम अवेलेबल हैं, जिसे हम न्यूज़ ऑन एयर कहते हैं। अगर आप जुड़ चुके हैं तो आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो अग्रिम स्वागत, क्योंकि

0: जाएंगे, आप जल्द ही जुड़ जाएंगे। भाई ये महफिल ही हम इस तरह की कोशिश करते हैं कि बस ये महफिल आपको बांध के रखें, आपके अपनेपन का ख्याल हमारे साथ जुड़ा रहे, आपके अपनेपन की सादगी, अपनेपन की जो जो कहना चाहिए जुम्बिश है वो हमारे साथ जुड़ी रहे हमेशा, और साथ साथ चलते रहें घड़ी की इन सुइयों की तरह जैसे कि अब ये चल रही हैं। 12:14 लगभग और कुछ सेकंड्स हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जीरो आर शो मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6, साथ ही साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप सभी का स्वागत करते हुए मैं इस प्रोग्राम में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार श्राली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव में की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम यानी सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान में औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर

शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 2:11 और नया सफर एक बार फिर से शुरू। आज के दिन का ये तीसरा प्रोग्राम और आप जुड़े हैं मेरे यानी रजत के साथ इन फ्रीक्वेंसीज पर जो बताया मैंने, और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। करना बस ये है, आपने अगर इसे डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर में और वहाँ खोज कीजिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 नहीं, आकाशवाणी रेनबो दिल्ली। यहां से आपको मिलेगा हमारा पता जो आपको ले जाएगा देश और दुनिया के हर हिस्से से, हर कोने से जुड़ने के लिए एक सुलभ और सुगम मार्ग पर। वैसे आप दिल्ली और एनसीआर में हमें फ्रीक्वेंसी से सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर दूर हैं या बहुत ज्यादा दूर हैं तो आपको इस ऐप के जरिए हम से मुलाकात करनी होगी, और कर ही दीजिए क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सभी का स्नेह, आप सभी के प्यार को सलाम, और इस खूबसूरत बेला को भी सलाम जो हमसे कहती है कि भाई खूबसूरत गानों का जो दौर है, जो हर दौर के हम सफ़र गाने रहे हैं, अब उन्हें प्ले करने का फिर से वक्त आ गया है। तो आपके साथ जुड़ चुके हैं हम इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भुलाएं ना बने, ऐसे प्रोग्राम जो हर दौर में, हर समय में, हर समय अंतराल में हमारे साथ रहे, जिंदा हैं, आज भी गुनगुनाए जाते हैं। कोशिश करेंगे ऐसे गानों को चुन चुन कर पहुँचाया जाए आप तक, आपके रेडियो सेट्स तक, आपके मोबाइल फोन्स तक, जहाँ से भी, जिस तरह से भी, जिस जरिए से भी आप हमसे जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत भुलाएं ना बने कार्यक्रम में। मैं हूँ रजत, आप सभी का बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा अभिनंदन करते हुए।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 से 5 तक।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 से 2 तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को यह संदेश दिया था कि ये देश उनका है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर तक पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिड नाइट मेलोडीज का, तो यही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाश।

आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आकाश वाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थीं। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से भी दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सारेगामा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर सुबह के 4:12 और तेजी से हम बढ़ रहे हैं सुप्रभात की ओर, एक अच्छे दिन की ओर, एक शुभ दिन की ओर और एक सफल दिन की कामना हेतु एक और नए उजाले की ओर। कुछ ही देर में या यूं कहें कि कुछ मिनटों बाद सूरज की पहली किरण जब धरती पर आएगी अपना सलाम लेकर, अपना नमस्कार लेकर, तब हम कामना कर रहे होंगे कि हम सभी के लिए, पूरे विश्व, पूरे देश और समाज के लिए आने वाली यह सुबह और इसके बाद आने वाले दिन, दोपहरी, सब शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ करते हैं सारेगामा की शुरुआत मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता

0: और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में भारत और अमेरिका के संबंधों का महत्व उजागर करती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की सतत भागीदारी और मजबूत करने की दिशा तय कर दी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने यह भी बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को दोपहर के सबसे गर्म घंटों में घरों के अंदर ही रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है और बाहरी गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबू चैनल के साथ। समय हो चला है प्रातः के 5:06। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।